हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की नवी तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।

गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में, IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM पर। सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या को त्याग देना चाहिए और विद्या अर्जन करने वाले को सुख को त्याग देना चाहिए, क्योंकि सुखार्थी को कहां से विद्या प्राप्त होगी और विद्यार्थी को कहां से सुख प्राप्त होगा।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर में 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान भाग 204। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। आज इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी सुनिएगा। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हमें राही प्यार के। सुबह 8:15 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक। 9:30 सुबह सुनिएगा आज के फनकार। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता परेश

रावल पर। सुबह 10 बजे से आपको सुनवाएंगे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। इसके अंतर्गत सुनेगा विधई जैन की लिखी कहानी रिश्ते, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

11 बजे और रात्रि 11 बजे से चित्रपट संगीत, सुबह 11:30 और रात्रि 11:30 से मैटनी शो। इसके अंतर्गत तंबाकू के सेवन से छुटकारा कैसे पाएं, इस विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल CMO वेस्ट मुंबई से जयंत पात्रिकर की बातचीत सुनेगा प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। दिन में 12:05 से यादों की महफिल सुरीला सफर सुनेगा दोपहर दो बजे से त्रिवेणी। सदाबहार नग में दोपहर 2:30 से दोपहर 3 बजे से मनचाहे गीत, दोपहर 3:30 से आप सुनवाएंगे नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक अग्नि चक्र का पहला भाग, मूल मलयालम लेखक CL जोस, हिंदी नाट्य रूपांतर PG वसुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनेगा अभिनेत्री साधना सिंह से विथी जैन की बातचीत प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनर्प्रसारण सुनेगा। तराने नए पुराने शाम 5:30 से झरोखा, शाम 6:30 से सुनेगा, 6:35 से संध्या रंजन। विशेष जयमाला इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अभिनेता पंकज कपूर, इसकी रिकॉर्डिंग आप सुनेगा शाम 7 बजे से। इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा शाम 7:45 से। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा सुनो कहानी, इसके अंतर्गत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी प्रेम का मूल्य सुनेगा, वाचन अमरकांत दुबे का, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। रात 8:15 से चित्रलोक, रात 9:30 से आपको सुनाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक KK पर। रात 10 बजे से सुनेगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर रेणु बंसल का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से सुनिएगा ढलती जाए रात।

किंतु भरत का प्रभाव देख देवराज इंद्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भ्रातृप्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाएं और इस तरह पनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है।

भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जीव जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा की जा रही है। आज प्रस्तुत है राग भैरवी।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं महाराजा स्वाति तिरुनाल के हिंदी रचनाओं के बारे में कहती आती रही हूँ। आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी है और इसका समापन मैं राग भैरवी में एक बंदिश से करूं।

बहुत ही उचित होगा। कल भी मैंने भैरवी में महाराजा स्वाति त्रिनाल की एक रचना सुनाई थी जो भजन के रूप में था। आज जो भैरवी कृति सुना रही हूँ वो दादरा ताल में है और ज्यादा प्रचलित है। मैंने पिछले अंक में कहा था कि श्री पद्मनाभ अर्थात विष्णु महाराजा स्वाति त्रिनाल के कुल देवता माने जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वे शिव पूजा से दूर रहते थे। ये जो कृति मैं गाने जा रही हूँ न केवल काशी विश्वनाथ जी के बारे में है। स्वाति त्रिनाल कहते हैं, चलो मन तुम काशी, जहाँ सुंदर और पवित्र गंगा नदी बहती है, पंडित और साधु लोग पूजा पाठ में मग्न रहते हैं, और जहाँ त्रिभुवन पालक श्री विश्वनाथ जी विराजमान हैं। विष्णु भक्त हो या शिव भक्त, स्वाति त्रिनाल कहते हैं, भजले इन दो स्वरूप, रहिए अविनाशी। तो श्रोताओं सुनिए महाराजा स्वाति त्रिनाल की भैरवी राग में रचना विश्वेश्वर दर्शन का।

श्रोताओं, अब मैं भैरवी के दो स्वरूप दिखाती हूँ आपको, एक कर्नाटक शैली में और उसके बाद हिंदुस्तानी शैली में। तो सुनिए पहले कर्नाटक शैली में भैरवी।

श्रोताओं, पिछली कड़ियों में मैं आपको कर्नाटक रागों के बारे में और स्वाति तिरुनाल महाराजा की कृतियों के बारे में कुछ बातें बताती आई हूं। तो इस श्रृंखला का समापन यहां करते हुए मैं आपसे विनती करती हूं कि ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, जरूर लिख के बताइएगा। अब सुनिए एक फिल्म संगीत

0: ना मारो ना मारो।
1: राग भैरवी पर आधारित ये गीत था। फिल्म दूज का चांद से आवाज थी मन्ना डे की। स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग भैरवी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाजों में। पंचायत फिल्म के गाने के साथ शकील नोमानी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं इकबाल कुरैशी।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए।

0: अपने पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में बड़ा भाई फिल्म का गाना, गीतकार थे एहसान रिजवी और संगीतकार थे नाशाद। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और एस डी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं आशा भोसले और साथियों की, फिल्म का नाम लाजवंती।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM पर। आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से बस कुछ देर बाद यानी कि 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। अमृत कलश का समय होगा प्रातः 7:30। प्रातः 8:00 का समय होगा समाचार प्रभात का। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संगम। प्रातः 8:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें आज की बात के अंतर्गत आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस विषय पर चर्चा। इसी कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता भी सुनेंगे। अभिनेता धर्मेंद्र के प्रशंसक बेंगलुरु से अयोध्या आए श्री शशिकांत शर्मा द्वारा बिताए गए अभिनेता धर्मेंद्र के साथ विभिन्न संस्मरणों पर आधारित बातचीत, इनसे बातचीत करेंगे सदक हुसैन। प्रातः 9:00 से आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 पर आप सुनेंगे बातें आसपास की, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे बचपन के देसी खिलौने। 12:30 पर आप सुनेंगे अवधि

0: गीतों का कार्यक्रम लोक रंग सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या आप सुनेंगे दोपहर 1 बजे। फेसबुक श्रोताओं के साथ 1:30 पे आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होगा गीतांजलि, 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 का समय होगा कार्यक्रम नारी जगत का, जिसमें आज होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली, जिसमें विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस विषय पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाड़ी शाम 5 बजे, जिसमें चर्चा का विषय होगा गोवा राज्य स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर कार्यक्रम। कार्यक्रम में हमारी धरोहर के अंतर्गत आप सुनेंगे गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। इसी कार्यक्रम में आर्थिक जगत के अंतर्गत आप सुनेंगे मानव विकास सूचकांक। शाम 5:30 पर कार्यक्रम होगा लोक संगीत। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 का समय होगा संस्कृत में समाचार का। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव का समय होगा 6:30। 6:45 पे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाड़ी, जिसके अंतर्गत चर्चा का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण के उपाय। इसी कार्यक्रम में आप एक भेंटवार्ता सुनेंगे, खरीफ की सब्जी उत्पादन की तैयारी जानकारी देंगे डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सब्जी विज्ञान विभाग कुमारगंज अयोध्या। 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आप सुनेंगे आशा भोसले को। समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। 9:15 पर महफिल ए गजल। 9:30 पर सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए TET पास करने की समय सीमा 1 वर्ष और बढ़ी। कल 2 पालियों में आयोजित की जाएगी BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
1: मऊ जनपद फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
0: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
2: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के समय प्रयास है और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गांव विकसित होंगे।
0: सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कल कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। उन्होंने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने TET को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को कल खारिज करते हुए कहा कि TET केवल औपचारिक परीक्षा नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में TET पास करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दिया है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 72 जिलों में 1011 केंद्र

0: बनाए गए हैं जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के अनुसार परीक्षा को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
1: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें।
0: इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस कोरोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है। प्रदेश में बीते गुरुवार की रात से मौसम में आए परिवर्तन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से कई जिलों में जनधन की हानि हुई है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए, जबकि गुरुवार देर रात शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शाकंभरी देवी मंदिर प्रबंधन ने कल तक मंदिर में दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए हैं। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के बीच बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने की अध्ययन समय सीमा 1 वर्ष और बढ़ी। कल 2 पालियों में आयोजित की जाएगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM पर प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत कलश।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों

0: और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
4: कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भजन।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें अयोध्या आकाशवाणी @gmail.com पर।
0: AYODHYA AK

0: shubhvani@gmail.com शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कार्यक्रम का अगला भजन बबला मेहता की आवाज में।

0: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
1: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
0: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
1: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
0: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
1: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
0: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
1: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत कलश, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM पर। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: घर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनक लता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
5: Regarding the efforts of the government to keep the price stable,

0: भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की. सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल. वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स आल्सो. ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज विद देम एंड दे आर वर्किंग ऑन इट. एंड सिमिलरली फॉर क्रूड आल्सो वी आर वर्किंग.
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है. उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है.
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है. इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें. बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें.
1: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं. श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारी पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है. इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है. उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है. श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6वें चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए. इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है. सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं. सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है. सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं. सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है. इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है. सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है. म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे. उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा. राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी. गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे. वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे. वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे. म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है. सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे. कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है.
3: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे. इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे. इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा. ये एक आधिकारिक यात्रा है.
4: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार.
1: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है. श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन

0: बुलेटिन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
1: बीएसएफ के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम दे रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराध्य की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
2: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों के उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग

0: की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने सीबीएसई की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, डीके शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 169 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संगम।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
0: कार्यक्रम सुरसंगम की शुरुआत करते हैं पंकज उदास के गाए इस गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर संगम 101.9 FM पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर बोल रहे हैं।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें। कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
3: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें। आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
2: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
3: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
2: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
3: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
4: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।

0: मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी

0: बजे से फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
5: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज, आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
4: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
5: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
6: श्रोताओं, प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में आइए हम सुनते हैं भेंट वार्ता। अभिनेता धर्मेंद्र के प्रशंसक बेंगलुरु से अयोध्या आई श्री शशिकांत शर्मा द्वारा अभिनेता धर्मेंद्र के साथ बिताए गए विभिन्न संस्मरणों पर आधारित बातचीत। इनसे बातचीत की है सदक हुसैन ने।
7: हिंदी सिनेमा का वो नाम जिसने ताकत, मोहब्बत और सादगी तीनों को पर्दे पर जिया, एक ऐसा अभिनेता जिसने गाँव की मिट्टी से निकल कर देश के दिल पर राज किया। एक्शन में शेर, रोमांस में शायर और जिंदगी में बिल्कुल अपने जैसे धर्म पाजी, जिन्हें हम प्यार से धर्मेंद्र के नाम से जानते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे शख्स जिनके लिए फैन शब्द छोटा पड़ जाता है। बेंगलुरु से आए हैं शशिकांत शर्मा जी, आप चलाते हैं धर्मेंद्र अनमोल रतन इंटरनेशनल फैंस क्लब। धर्मेंद्र जी की फिल्म समाधि से शुरू हुआ ये सफर जो आगे चलकर जुनू, आज हम सुनेंगे फैन से फैमिली बनने की ये अनमोल कहानी। बहुत स्वागत है शशिकांत जी आपका आकाशवाणी अयोध्या के स्टूडियो में।
8: जी नमस्कार।
7: सबसे पहले बताइए कि धर्मेंद्र जी की कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसने आपके दिल में उनके फैन होने का दीप जलाया?
8: मैंने उनकी फिल्म देखी थी 1972 में, प्रकाश मेहरा साहब के डायरेक्शन पे, समाधि फिल्म थी
7: जी।
8: जब मैं अपने बड़े भाई साहब के साथ वो फिल्म देखने गया था, दीपक टाकीज थी एक, और उसमें कुछ ऐसे सीन थे जिसमें धर्म जी का एक 15 मिनट का सीन है जो मेरे सोच को बदल दिया था। वो सीन था कि जब धर्म जी एक बच्चे को किडनैप करके लेके जाते हैं, वो बच्चा हाथ से छूट जाता है, बच्चा मर जाता है, उसी समाधि कर बनाते हैं। समाधि बनाने के बाद जब वो घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया, उनका छोटा बच्चा बाहर रोता है, तो अंदर जाते हैं, कमरे में अंधेरा रहता है, फिर जब देखते हो कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया, उस समय 35mm के पर्दे हुआ करते थे
7: जी,
8: उस पूरे पर्दे में धर्म जी एक सीन में गुस्सा करते हैं जब वो अपने बीबी को बुलाते हैं चंपा बोल के, तो चंपा वो चेहरा था वो पूरे 35mm में दिखाया गया था
7: जी।
8: उस समय वो डर भी गया था, बहुत इंप्रेस भी हुआ था, उनकी आंखें, उनमें आंख में खून उबलता हुआ जो था। तो फिर उनके पति ध्यान तो जाता, पत्नी की चिता जलाते हैं वो, बस वो एक पर्दा।
7: उस पहली फिल्म की जहां से आपकी दीवानगी शुरू होती है, आपका फैन होना शुरू होता है
8: जी।
7: और फिर आपसे उनकी मुलाकात में करीब 40 साल का वक्त लग गया।
8: वो जी का जी, तो कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि धर्म जी का एक बहुत बड़ा फैन, उनसे मिला जाए, इस प्रोग्राम को और बड़े तरीके से किया जाए। वो मेरे पास आए तो मैंने वहीं पर उस बात को रोक दिया था, हमें करना क्या है बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ। बोले टिकटें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए
7: जी।
8: चलो ठीक है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि 40 साल बाद मैं अपने भगवान को देखने जा रहा हूँ, है कि नहीं है, अभी भी मैं डाउट में था। तो मुझे याद है वो दिन रिट्स कार्टन होटल था बैंगलोर में
7: जी।
8: वो बैंगलोर उतरे थे, बैंगलोर से वो रेडियो FM गए थे, उस प्रोग्राम के बारे में 10 मिनट की कोई स्पीच थी। जब मैं रिट्स कार्टन के गेट लिफ्ट के सामने खड़ा हूं तो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है, तो उसमें से धर्म जी का पांव नीचे आता है, पांव रखते हैं बाहर, तो बोलते ना कि जैसे हमने देवताओं के पांव देखते हैं, हम लोग माता पिता के पांव देखते हैं, सबसे पहले जब मैंने उनका पांव को देखा तो मुझे तभी भी यकीन नहीं हुआ क्या ये धर्म जी का पांव है क्या। वो एक जो बेचैनी थी वो इतने आसानी से बयान करना बहुत मुश्किल है। थोड़े सेकंड में उनका एक फिगर बाहर आता है, मेरे आंखों के सामने 40 साल का सपना पूरा होते हुए अपनी देख रहा हूं मैं, और सामने धर्म जी। बस एक इंसान की जिंदगी में, एक इंसान एक चीज जिंदगी में कुछ जरूर चाहता है, मैं वो जो चाह रहा था मुझे सामने दिखाई दे रहा था। वो फासला था 60 से 70 मीटर का, वो आगे आते गए, मैं खड़ा खड़ा परेशान होता गया। और मैं इमोशनल होता गया,

0: और वो मेरे नजदीक आ गए। अब मैं एकदम सामने खड़ा था, मैं नीचे उनके चरणों के सामने दंडवत हुआ। तो तब तक मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो झुक के, उनका आपने हाथ देखा होगा, शेर के पंजे की तरह उनका हाथ है, उन्होंने दोनों हाथों से मुझे लपेट लिया था, लपेट के उठाया और मेरे सामने फेस टू फेस उन्होंने कहा कि क्यों रो रहा है। उनका सबसे पहला शब्द था ये, क्यों रो रहा है। हमने गुरुदेव 40 साल हो गए मुझे आपको देखते हैं। तो मैंने उनको लपेट लिया और मैं रोने लग गया। और धर्म जी एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत इमोशनल है, आपको रोते हुए देख के वो रोना शुरू कर देते हैं। फिर रोने लग गया तो फिर उन्होंने मुझे अपनी छाती से अलग किया, बोला हट तू मुझे भी रुलाएगा। तो मैं अलग हुआ, बोला तू यही रुक मैं आ रहा हूं। एक इतना बड़ा स्टार, फैंस बहुत मिलते बहुत जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने कहा कि तू यही रुक मैं आ रहा हूं। 1.5 घंटे के बाद वो आए और वो जब आ रहे थे ब्लैक पैंट ब्लैक शूज ब्लैक ग्लास ब्लैक शर्ट, मुझे तुरंत वो शेठ नजर आया, यादव की बारात का शंकर का कैरेक्टर, क्योंकि इतना खूबसूरत शरीर में काले कपड़े बहुत अच्छे जमते हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला तू सामने वाली ऑडी में बैठेगा और मैं फॉर्च्यून में बैठ रहा हूँ, तू आगे चल मैं पीछे चल रहा हूँ। वहां से मेरा जर्नी शुरू होता है। 24 नवंबर को जर्नी मेरी खत्म होती है, लोगों की नजर में खत्म हुआ कि तो आज भी वो मेरे साथ है, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो मेरे साथ वो कहीं ना कहीं बैठे हैं।
1: बिल्कुल, ऐसी पर्सनालिटी कभी हमारे बीच से अलग हो ही नहीं सकती, वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा है। और जब आप ये बातें कह रहे हैं मैं आपके इमोशंस देख पा रहा हूँ। शशिकांत जी, धर्म जी ने आपको अपने घर बुलाया, उसके बाद उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था जब इन्विटेशन मिला घर आने का?
0: देखिए मैं कुछ पूरे वक्त से गुजर रहा था
1: जी,
0: व्यापारी हूँ छोटा, तो कहीं से मालूम पड़ा कि शशि परेशान है। तो उन्होंने अपने पीए से कहा, उनके पीए का नाम है जयराज ओझा
1: जी,
0: 30 साल से उनके साथ काम कर रहा है। तो बोला शशि को बुलाओ, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तू एक काम कर लोनावला आ जा। उस समय साहब लोनावला में थे, तो बैंगलोर से पुणे की फ्लाइट ली मैंने। और मेरे घर में जब मैंने कहा कि मुझे धर्म जी ने बुलाया है, तो हमारे यहाँ जैसे दिवाली मनाई जाती है, इससे बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं था मेरे लिए कि भगवान ने मुझे बुलाया है कि आ जा। तो मैं गया, तुरंत भाग दौड़ करके टिकट बनाई, अपना पुणे गया। पुणे से फिर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक लोनावला है। तब तक उन्होंने कई बार अपने पीए से कहा कि पता लगाओ कहाँ है वो, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। और लगातार उनका जो मैनेजर था मुझे फोन कर रहा था कहाँ पहुंचे। मैंने मेरे से ज्यादा व्याकुल बेचैन वो थे कि बुलाऊं उसको। अब मैं पहुंचा, पहुंचने के बाद पूछे कहाँ है वो, बुला गया, बोले उसको तुरंत अंदर बुला। उन्होंने अपने पर्सनल बेडरूम में मुझे बुलाया, जहाँ वो सोते हैं रहते हैं
1: जी,
0: बुलाया। और बुलाने के बाद झूठ कहा मुझसे कि कुछ काम है, ये काम तुझे करना है
1: जी।
0: वो मेरी हेल्प करना चाहते थे कि शशि दुखी है, किसी के थ्रू मालूम पड़ा था कि वही परेशान है बच्चा मेरा वो। तब उन्होंने किसी जरिए से मुझे झूठ कह के बुलाया कि उसको बुलाओ कुछ काम है, दे बेटा ये करना वो करना वो करना, करने के लिए कुछ भी नहीं था, बहाना था
1: जी।
0: तब उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि एडवांस पेमेंट करो उसको। तो मैं वो राशि तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि नहीं, उन्होंने चेक लिखा
1: जी।
0: चेक लिख के मेरे नाम दिया, ब्लड बेटा ठीक से रख और जब मैं बताऊंगा क्या ये करना है वो सप्लाई कर देना। वो सप्लाई आज भी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सप्लाई क्या है
1: जी।
0: उन्होंने दूसरे तरीके से मेरा हेल्प किया, मैं आज भी नहीं भूल सकता क्योंकि मेरा बुरा वक्त था। और 2012 में जब मैंने अपने पिताजी को खोया, तब जो मेरा दर्द मेरे पिताजी समझते थे, उसके बाद अगर किसी ने मेरा दर्द समझा तो वो धर्म जी थे।
1: अच्छा, उस मुलाकात के बाद जैसा आप कह ही रहे हैं कि पापा के बाद अगर किसी ने मेरा दर्द समझा, उस तरह से पिता वाला भाव आपको उनके अंदर देखने को मिला, और आपको उस मुलाकात के बाद ही लगा कि ये रिश्ता फैन का नहीं, उससे आगे निकल चुका है।
0: एकदम, सबसे ही कहते थे ये मेरा बेटा बन गया है, ये मेरा चेला है, ये मेरा बेटा है, यही बोल के परिचय दिया। कभी ये नहीं कहा कि मेरा फैन है, चाहे बॉबी सर भी सामने आते हो या सनी देओल भी सामने आते थे, तो सनी देओल सर सब यही बोलते थे देख मेरा बेटा है, ये चेला है, ये खास चेला है
1: जी।
0: कभी फैन नहीं बोला, ये इस तरह से मुझे याद करते थे वो।
1: उन्होंने आपको फैन नहीं बोला, बेटे की तरह प्यार दिया, तो फैन क्लब बनाने का विचार आपके मन में कैसे और कब आ गया?
0: देखिए धर्मेंद्र एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको पूरी दुनिया प्यार करती है
1: जी।
0: मुझे लगता है कि वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री में इनसे खूबसूरत इतना चाहने वाला शायद कोई आदमी है
1: जी, जी।
0: कोई भी नहीं, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे सैंडलवुड हो। तो इनके चाहने वाले मेरे दोस्त नामिक अजरबैजान में है
1: जी,
0: नैरोबी में हरीश है,

0: और भी बहुत सारे दोस्त, इटली में अनिल है, पाकिस्तान में है, पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश में है। तो हमने सोचा कि खाली हम देश के ही लोग क्यों मिले, इन सबको जोड़े जो किसी न किसी तरीके से धर्म जी से जुड़ सके, धर्म जी उनको वापस या पहचान सके।
1: बिल्कुल।
0: तो हमने एक नाम रखा था, तो हमने ये नाम जब धर्म जी के सामने रखा कि गुरुदेव हमने ये नाम रखना चाह रहे हैं, धर्मेंद्र अनमोल रतन इंटरनेशनल फैंस क्लब
1: जी,
0: तो कई नाम रखे, तो धर्म जी ने बोला बेटा ये नाम ठीक है।
1: मतलब वो अपने फैंस को अनमोल रतन कह रहे हैं।
0: एकदम, वो अनमोल रतन थे, वो बोलते थे तुम लोग मेरे लिए अनमोल रतन हो। वो अनमोल रतन नहीं कि मैं लोग पीछे के दरवाजे से मुझे कभी अवार्ड जीतने का शौक नहीं रहा ना मुझे वो, ठीक है, मेरे लिए तुम लोग अवार्ड हो जो कि खरीदे नहीं जाते, बनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा, ये इंटरनेशनल लेवल पर फैंस क्लब बनाना और लोगों को जोड़ना कितना आसान या कितना मुश्किल था आपके लिए?
0: नहीं, धर्म जी के नाम से बहुत आसान था, क्योंकि जब भी मालूम पड़ता था कि एक फैंस क्लब इंडिया में, तो लोग कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट करके नंबर लेके बात करते थे, हमें भी जोड़िए, हमें भी जोड़िए, हमें भी जोड़िए। आस्ते आस्ते ये फैंस क्लब बहुत बड़ा बनता गया और आज इंटरनेशनल लेवल पे है।
1: जी हाँ। कितने लोग होंगे सर इसमें?
0: इसमें 350 लोग हैं।
1: अच्छी बात है, बड़ा क्लब है, बहुत बड़ा क्लब है। जब उनके 60 साल पूरे हुए धर्मेंद्र जी के, तो आपने उनको एक ग्लास पैलेस जैसा तोहफा दिया।
0: जी हाँ, कोविड का सीजन चला था जब 60 साल पूरे हुए, 2020 में ये मैंने ग्लास हाउस बनाया था। तो मेरा प्लान था कि मैं अपने गुरु को शीश महल दूं। उसको बनाने के लिए मुझे 7 महीने लगे थे, क्योंकि डिजाइन मेरा था। मेरा एक दोस्त है अली अफसर, जिसकी ग्लास की फैक्ट्री थी, मैंने उनसे कहा, बोला शर्मा जी कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए क्या करना है। तो उनका एक बेडरूम बनाया था जिसमें उनके माता पिता की फोटो थी, एक बेडरूम बनाया था जिसमें दिलीप कुमार साहब की फोटो थी, एक स्विमिंग पूल बनाया था जो ऊपर था, एक कॉफी गार्डन बनाया था जहां पर दोस्तों के साथ 4 टेबल बना के कॉफी पी सके, ठीक है ना, उनके लिए बाहर भी बनाया था, कार पार्किंग भी थी, और जितनी सीढ़ियां बनी थी उन सीढ़ियों में हम उन सभी पिक्चरों के नाम हमने प्रिंट करवाए थे, जिन जिन पिक्चरों के साथ, वो मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा था। और बैंगलोर से हमने ये भेजा था, और कोविड का टाइम था तो कोई जाने वाला नहीं था, बैंगलोर से इसको जब भेजा तब धर्म जी ने जब इसको देखा तब एक मुझे स्पेशल वीडियो बनाया था, लुकी इतना परेशान हो जाते हैं।
1: फैंस को तोहफा दिया
0: जी,
1: ग्लास पैलेस बनाकर।
0: सही
1: में आपका जाना होता है
0: जी, हाँ।
1: आप बेंगलुरु में रहते हैं
0: जी, हाँ।
1: तो वहां से जाते हैं, क्या मायने रखता आपकी जिंदगी में 8 दिसंबर वाला दिन?
0: तो है, इतना बड़ा ही सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं, तन मन धन से,
1: सभी फैंस भी आते हैं,
0: सभी सभी सभी सभी जो नहीं आ पाते हैं वो अपने शहर में करते हैं। गरीबों का खाना खिलाना हुआ, गरीबों के कपड़े हुए, गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग। जैसे धर्म जी का एक पसंदीदा जगह थी बैंगलोर से 40 किलोमीटर दूर रामनगर, जहाँ उन्होंने कई खूबसूरत फिल्मों का शूटिंग की है, आग याग, शोले
1: जी जी,
0: लोहा, बेताब, बहुत सारी फिल्म, शालीमार,
1: वो रामगढ़ रामनगर में ही
0: है। हाँ, वो रामगढ़ फिल्मों में बनाया गया था, जगह का नाम है रामनगर। वहां हम लोग जाते हैं उस बस्ती में, बच्चों के लिए स्कूल की किताबें देना, कंबल बांटना, खाना वगैरह, मिठाई वगैरह, चॉकलेट वगैरह, ये सब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 7 साल से मैं धर्म जी का जो सेलिब्रेट कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर, धर्मेंद्र अनमोल रतन फैंस क्लब के जितने भी फैंस क्लब के साथ, उनकी उम्र के हिसाब से हम लोग उतने किलो का केक बनाते थे, 87 किलो, 88 किलो, 89 किलो, 90 अधूरा रह गया हम लोग का। और 15 दिन अगर रुक गए होते तो एक इतिहास और हम लोग बनाने की तरफ जा रहे थे, नहीं बना पाए, खैर कोई बात नहीं।
1: हाँ, ये नंबर्स होते हैं,
0: ये नंबर्स
1: हमारे साथ,
0: ठीक है ना, आज जी है
1: जी। कोई ऐसा जन्मदिन इन साथ जो स्पेशल आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया उनके लिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा यादगार बन गया हो?
0: पहला
1: पहला क्या था उसमें खास?
0: पहला जन्मदिन जब मैं केक बना के उनको लेके गया था, तो उन्होंने कहा था
1: जी
0: कि क्यों अब केक वैसा ही बनेगा जैसा अब बनता आया, अब इसके साथ साथ एक एक चीज बढ़ता ही रहेगा। तो जब वो केक काट रहे थे तो मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे बगल में सनी सर खड़े थे, धर्म जी के दाहिने हाथ पे सनी सर थे, बाएं हाथ पे मैं था। तो जब केक काट रहे थे, काटने के

0: केक बना के उनको लेके गया था, तो उन्होंने कहा था कि क्यों अब केक वैसा ही बनेगा जैसा अब बनता आया, अब इसके साथ साथ एक एक चीज बढ़ता ही रहेगा। तो जब वो केक काट रहे थे तो मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे बगल में सनी सर खड़े थे, धर्म जी के दाहिने हाथ पे धनी सर थे, बाएं हाथ पे मैं था। तो जब केक काट रहे थे, काटने के बाद वो केक का जो पहला बाइट जो मेरे मुंह में गया था, इतना बड़ा अचीवमेंट, जिस आदमी को मैंने 72 में पर्दों पे देखा था, जिसके लिए मैं पागल रहा हूं, हम नहीं हजारों फैंस जो पागल रहे पर्दे पे देखने वाला, और आज मुझे केक खिला रहे, क्या ये संभव है? तभी भी मुझे यकीन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कई बार अपनी फोटोज को देखा, वीडियोज को देखा, तब लगा कि वाकई में आज भगवान ने मुझे अपने हाथों से, जैसे कृष्ण सुदामा को खिलाते थे।
1: जी जी, जिस तरह से उनका ब्रिंगिंग है धर्म जी की, एक उनके फादर सामान्य से टीचर, किसान परिवार से वो आते हैं
0: जी।
1: मुझे भी एक बार अवसर मिला है बॉबी सर के साथ काम करने का एक फिल्म में
0: जी।
1: सर की वो भी बड़े ही डिसेंट है, ये पूरा अपब्रिंगिंग, पूरी फैमिली ही एक बड़ी डिसेंट सी फैमिली है, बड़ी डाउन टू अर्थ है। क्या कुछ आपने देखा उनके परिवार में ये चीज?
0: देखिए, बाबू जी टीचर थे, किसान परिवार से थे, सानेवाल उनका गांव था। धर्म जी ने भी बचपन में किसानी जिंदगी देखी, फिर मुंबई आए, स्टार बने और बहुत बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे बड़े स्टार है। उनका आपने फार्म हाउस देखा होगा, फार्म हाउस पे अक्सर वो अपने बतखों के साथ, चिड़ियों के साथ, कबूतरों के साथ, कुत्तों के साथ, गायों के साथ खेला करते थे। कोविड में उन्होंने 36 तरह की सब्जियां उपाई थी, आलू और बैगन और पत्ता गोभी और फलाने पालक वगैरह। उस सब्जियों को आटा दाल चावल में वो गांव में बांट दिया करते थे, लोनावला में
1: जी।
0: मट्टी से इतना प्यार था इनको, और जब तक वो नहीं सोते थे तब तक वो अपने खेत में ही रहते थे।
1: अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे उनके दुर्लभ किस्से भी सुनाए हैं धर्म जी के, और आपका रिश्ता जो है फैंस या फैमिली का बन गया। कौन सा ऐसा सबसे खास किस्सा है जो आपको याद आता है?
0: धर्म जी को मटन चिकन खाने का बहुत शौक था
1: जी।
0: अक्सर बैंगलोर में काफी शूटिंग की उन्होंने, बहुत समय बैंगलोर में बिताया
1: जी।
0: और बैंगलोर को वो दूसरा घर मानते थे, क्योंकि वहां का मौसम बहुत खूबसूरत था और बैंगलोर के लोगों ने बहुत प्यार दिया है। खास करके फिल्मों की शूटिंग के टाइम पे जब वो रहते थे तब वो फैंस से मिलते थे
1: जी जी।
0: मुझे याद है कि एक मुसलमान लड़का था, नाम तो मुझे याद नहीं है। धर्म जी को पता चला कि एक लड़का मटन बनाता, चिकन बनाता है, उसे संपर्क किए, तो वो लड़का रोज उनके लिए मटन लेके जाया करता था, एक बार दो बार। वो पैसा नहीं लिया क्योंकि फैन था, कैसे मैं पैसा ले लूं अपने गुरु से। धर्म जी ने कहा अगले बार तो मटन लेके नहीं आएगा, पैसा लेगा तो लेके आना, ठीक है? वो लेके गया तो धर्म जी उसके टिफिन में पैसे रख दिया करते थे। प्रकाश एक और फैन था, तोतला था, प्रकाश सिंधी लड़का था, वो बहुत जिद्दी था।
1: अच्छा,
0: एक रफ एंड टफ जो फैन होता है, रफ एंड टफ, वो गया धर्म जी के पास अपने भाई की शादी का कार्ड लेके। उस समय बैंगलोर में 5-star होटल एक ही था, अशोका होटल, टॉप फ्लोर में रहना पसंद करते थे, व्यू अच्छी लगे। वो आया, शादी का कार्ड दिया धर्म जी को, बोले साहब मेरे भाई की शादी आना है। आ गया कि शूटिंग चल रही थी, चंकी पांडे के साथ कमरे में बैठे थे वो, पता जा यार रूम में
1: जी।
0: तो बोलता नहीं आओगे तो मैं खुद जाऊंगा। धर्म जी ने बोला खुद जा। धर्म जी का खुद जा, तो वो जब कूदने गया तो एक पांव बाहर निकाल लिया था उसने।
1: अरे बाबा,
0: तो धर्म जी को मालूम है लड़का कूद जाएगा, धर्म जी कॉन्फिडेंस कूद जाएगा, सुनते कहा अबे पागल इधर आ। वो वापस जब डेथ किया उसको एक दिन पहले, लोग मिलने गए कैसी तेरी तबीयत है प्रकाश से, तो प्रकाश ने बोला चिंता मत कर मैं ठीक हूँ, देख मेरे साथ कौन है। तो उन्होंने अपने तकिए के नीचे से धर्म जी की फोटो निकाली
1: जी।
0: उसे 24 घंटे बाद लड़का चला गया। चले जाने के बाद धर्म जी को जब मालूम पड़ा, धर्म जी ने उनके परिवार से संपर्क किया, पता लगा उसके परिवार कैसे है। तब वो VCR आता था, उसकी दुकान उनके परिवार को धर्म जी ने खोल के दी थी हजारों। आपसे मैंने कहा कि जब मैं तकलीफ में था तो मालूम नहीं कैसे मालूम पड़ा,
1: उनको कैसे पता चला। बहुत सारे डायलॉग्स धर्म जी ने अपनी फिल्मों में दिए हैं।
0: धर्म जी इम्तियाज को, अजीत साहब का बेटा रहता है, उसका नाम था रुपेश। अजीत साहब का कैरेक्टर रहता है शाकाल, कम ऑन शंकर, कम ऑन किल मी शंकर यू बास्टर्ड, नहीं शाकाल मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। वो देख कुत्ते, वो देख मौत तो आ रही है, याद कर मेरा मजबूर बाप था और तेरे हाथ में रिवॉल्वर था, जो मौत का मंजर मैंने देखा आज वो तेरा बेटा देखेगा। वो जो डायलॉग था वो बहुत खूबसूरत डायलॉग,
1: कमाल
0: था।
1: के एक्टर ही मैन कहे जाने वाले, और उतना ही खूबसूरती से वो रोमांस और सादगी भरे
0: एकदम
1: जो अदाकारी थी वो भी उतनी ही खूबसूरती से वो किया करते थे।
0: कौन चाहता, मैंने शोले देख लिए।
1: जब हम लोग कभी फिल्मों में काम करते हैं तो यूनिट्स के जितने लोग होते हैं उसमें काम करने वाले, उनका एक कार्ड बनता है और कार्ड से एंट्री होती, कार्ड से ही उनको सारा राशन पानी वहां मिलता है।
0: लोग होते थे शोले की, उस समय मेन दरवाजा था जिससे लोग अंदर ना जाए, शूटिंग को डिस्टर्ब ना करें।
1: बिल्कुल,
0: धर्म जी की एक आदत थी, लोगों के साथ बैठना पसंद करते थे, चिकन बना सके, मटन बना सके।
1: बिल्कुल,
0: एक गरीब गांव था,
1: पुराना दौर,
0: और 2 साल तक उस गांव में चूल्हे नहीं जले थे, पूरे गांव के लोग वहां यूनिट मांगे, खाना खाते थे, छोटे छोटे काम भी करते थे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि 500-600 आदमी का एक सेटअप था, कोई रसोई कर रहा है, कोई गोबर उठा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई पत्थर उठा रहा है।

0: तरह का होते थे, उसमें से बीच में से बच्चों को बुला लेते थे, 5 रुपया 10 रुपया देना। आपने शोले में एक सीन देखा होगा जब गांव में होली वाला गाना खत्म होता है, बच्ची चलती है, बच्ची कहीं घोड़े के पांव के नीचे नहीं आ जाए क्योंकि कोई बेकार में कुछ अगर इंसिडेंट हो जाता है, बच्ची को रोल करके रेशमा पठान सिवा से काम,
1: अच्छा
0: बोरम्मा उसका एक कजन ब्रदर था, काम करते करते वहां की एक गांव की लड़की उससे उसके प्यार हो गया था। जब धरम जी को मालूम पड़ा, लड़के का नाम था शंकर जो ट्रक चलाता था, सामान लाता था, कहीं पत्थर लाना वो लाना, धरम जी को जब मालूम पड़ा कि शंकर का और इसका कुछ लफड़ा चल रहा है गांव की लड़की का, तो लोगों ने आके बोला धरम जी को, साहब ऐसा ऐसा है कहीं गांव वाले झगड़ा ना कर ले, बोला कुछ नहीं होगा बुलाओ इनको, तो धरम जी ने उनकी शादी करवाई थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है
1: जिस पर वो कहते हैं कूद जाऊंगा
0: जाऊंगा फांस जाऊंगा, मौसी जी अगर बसंती शादी, ये सब आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बहुत है ना सबसे बड़ी नौटंकी, सबसे हिट नौटंकी। वहां जाता हूँ, वहीं बैठता हूँ दोस्तों के साथ, डगी के नीचे बैठता हूँ, चेयर लगाता हूँ, चाय कॉफी पीता हूँ, गांव के लोगों से मिलता हूँ, जो धर्म जी की परंपरा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सदक जी आपने ये कहा कि उनके घर के नौकर, उन्होंने कभी अपने घर में काम करने वाले को नौकर नहीं समझा
1: जी,
0: उस परिवार का एक हिस्सा है। जैसे आज भी अगर परिवार में कोई दुख तकलीफ होता है तो मालूम ही नहीं पड़ता कि दाएं हाथ से उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प की, बाएं को भी नहीं मालूम पड़ता है।
1: धर्म
0: जो दिया वो दे दिया, वापस नहीं मांग, और अपने नौकरों को इतना प्यार करते हैं साहब कि कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होने के बाद नौकर है बेचारा, सेल्फी लेता हूँ बैठे बैठे सेल्फी ले लेते,
1: एक अच्छे इंसान का ये तरीका।
0: क्या बात करते हैं साहब, 35-35 साल पुराने लोग आज भी उस घर बंगले में है, और सनी देओल, बॉबी देओल, करण, राजवीर, आर्यमन, धर्म, ये 6 लोग जो है, जैसे धर्म जी का बेटा सनी सर, सनी का बेटा करण, राजवीर, बॉबी का बेटा आर्यमन, धर्म, एक छत के नीचे धर्म जी, धर्म जी की पत्नी, और 22 लोग जो उनके साथ काम करते हैं, 6 लोग परिवार भी एक साथ रहते होंगे।
1: बिल्कुल सही बात,
0: अगर आपको बेटा पन्ना है तो धर्म जी को जाने।
1: बिल्कुल ठीक बात है। फैन क्लब जो आपने बना रखा है उसका अगला स्टेप क्या है?
0: हम चाहते हैं उनके लिए, हम उन्होंने रामनगर को एक तरह से अडॉप्ट किया है,
1: अच्छा
0: वहां की सारी स्कूल की किताबें दिए देना, बाकी कोई त्योहार होता तो हम लोग जाते हैं इसको और बड़े तरीके से, क्योंकि धर्म जी की यादें बहुत जुड़ी है रामनगर से।
1: हमें लगता है कि शशिकांत जी अगर हम इस यादों के सिलसिलों की बातचीत इस तरह से करेंगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, और इतनी बड़ी व्यक्तित्व को किसी भी समय सीमा में कैद करना नामुमकिन सा है।
0: राइट,
1: तो दोस्तों आप थे शशिकांत शर्मा जी, एक ऐसा नाम जो बताता है कि फैन होना सिर्फ तालियां बजाना नहीं, किसी को दिल में बसाकर उम्र भर निभाना होता है
0: जी।
1: आप आकाशवाणी अयोध्या के स्टूडियो में आए और आपने धर्मेंद्र जी के जीवन यात्रा को करीब से देखने का हम सबको अवसर दिया। आपको पूरे आकाशवाणी अयोध्या परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं अभी आपने सुना भेंट वार्ता। अभिनेता धर्मेंद्र के प्रशंसक बेंगलुरु से अयोध्या आए श्री शशिकांत शर्मा द्वारा अभिनेता धर्मेंद्र के साथ बिताए गए विभिन्न संस्मरणों पर आधारित बातचीत।
1: वृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
1: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
1: कॉल करें 6386907006।
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
3: प्रणाम अयोध्या।
0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 FM पर। प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। आपके संदेश आपके गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त लक्ष्मी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले हमने फरमाइश ली है ग्राम गुदनूपुर पोस्ट जगदीशपुर जिला बस्ती से। अजिता रावत, जय रावत, अभय, आशीष, अकुल और इनके मम्मी पापा, तो इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म दिल का रिश्ता। फिल्म से

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमने ली है बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से ज्योति वर्मा निखिल वर्मा निधि बालकरण वर्मा अंजलि संजय अंशु वर्मा राजिम और रजमत वर्मा इन्होंने सुनना चाहे फिल्म चलते चलते का ये प्यारा सा गीत

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है माऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार और आर्यन स्वर्णकार इनके साथ ही सुनना चाहे कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने इन्होंने सुनना चाहे फिल्म साजन का ये प्यारा सा गीत

0: हरि आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरि आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम सहसपुरा लोहारा दनिया खुर्द जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से। गुनीराम राजपूत, संतोषी राजपूत, हेम प्रभा राजपूत, पुष्पराज, सूरज, संतोष और गौरव राजपूत, इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म बेटा का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र 101.9 FM से। श्रोताओं अगर आप भी चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम ASAG यानी आपके संदेश आपके गीत का हिस्सा बनना तो देर किस बात की, अपने नाम और पता के साथ अपनी फरमाइश हमें लिख दीजिए, हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 8303219911। नंबर एक बार पुनः सुने 8083032199911। कार्यक्रम में अगली और अंतिम फरमाइश हमने ली है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा शबिश्ता, मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी का। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म मेरा साया का ये गीत।

इसी गीत के साथ अपनी दोस्त लक्ष्मी को तिथि अनुमति कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत से और गीत का आनंद लेते रहें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
5: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
6: आरबीआई कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 एफएम पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें आसपास की।

0: रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
1: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
1: कॉल करें 6386907006।
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम बातें आसपास की में आज हम बात करेंगे बचपन के देसी खिलौने। जी हाँ, एक ऐसा विषय जो सुनते ही

को पीछे कई वर्षों ले जाता है उस दौर में जब ना मोबाइल थे, ना वीडियो गेम, ना ही महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट। फिर भी बचपन खुशियों से भरा होता था क्योंकि उस समय हमारे पास थे मिट्टी की खुशबू वाले, लकड़ी की गर्माहट के लिए और अपने मन से भरे देसी खिलौने। आज का बच्चा बैटरी से चलने वाले खिलौनों से खेलता है, लेकिन हमारे समय में तो खिलौनों से दिल धड़कता था। उनमें माँ बाप का स्नेह, गाँव की मिट्टी, दोस्ती की हंसी और ढेर सारी खुशियाँ, दोस्ती, सब कुछ होती थी। दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए वो दिन जब मेले से लौटते समय हाथ में लकड़ी की तलवार, मिट्टी की गुड़िया या रंग बिरंगी सीटी जरूर ली होगी। गांव के कुम्हार द्वारा बनाई गई छोटी छोटी मिट्टी की हांडी, चूल्हा और बर्तन लड़कियों की पहली रसोई और पहली पसंद हुआ करती थी। वहीं लड़के गिल्ली डंडा, लट्टू और कंचों की दुनिया में खो जाते थे।

गिल्ली डंडा वह क्या खेल था। एक छोटी सी लकड़ी की गिल्ली और लंबा डंडा, न कोई नियमों की मोटी किताब, न कोई महंगा सामान, बस खुला मैदान और दोस्तों की टोली। इस खेल में ताकत भी थी, हुनर भी और दोस्ती की मिठास भी। और लट्टू धागे में लपेट कर जब उसे जमीन पर घुमाया जाता था तो लगता था जैसे कोई जादू हो गया। बच्चे घंटों इस प्रतियोगिता करते कि किसका लट्टू सबसे ज्यादा देर तक घूमेगा। दोस्तों उस समय खिलौने केवल मनोरंजन के साधन नहीं थे बल्कि जीवन के शिक्षक भी थे। कंचे खेलते हुए बच्चों का निशाना लगाना सीखते थे, पतंग उड़ाते समय धैर्य और संतुलन सीखते थे, गुड़िया गुड़िया खेलते खेलते रिश्तों की समझ विकसित होती थी। और पतंगबाजी, अरे मकर संक्रांति और बसंत पंचमी का नाम आते ही आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता था। वो काटा वो काटा वो मारा की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती थी। पतंग सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, वह उत्साह, प्रतिस्पर्धा और आजादी की प्रतीक थी। दोस्तों देसी खिलौनों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वे प्रकृति के करीब होते हैं।

0: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
1: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
0: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
1: और साथ में अपना नाम, पता
0: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
2: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
3: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
4: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
5: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
4: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर,
5: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
6: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
7: लकड़ी, मिट्टी, कपड़े, बांस और कागज के ये खिलौने प्राकृतिक और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। आज प्लास्टिक के खिलौनों का ढेर है, लेकिन उनमें वो आत्मीयता नहीं है जो मिट्टी और घोड़े या कपड़े की गुड़िया में हुआ करती थी। पहले बच्चे खिलौने कम और ज़्यादा बनाते थे। बरसात के दिनों में कागज की नाव बनाना, पेड़ की टहनियों से धनुष पार तैयार करना, पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाना, यही तो असली रचनात्मकता थी। इन खिलौनों ने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया, कल्पना शक्ति बढ़ाई और जीवन को सरल तरीके से जीना सिखाया।
8: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर

दोस्तों समय बदला, तकनीक आई और धीरे धीरे देसी खिलौने पीछे छूटते चले गए। अब बच्चों के हाथ में मोबाइल है, लेकिन बचपन शायद कहीं खो गया है। पहले बच्चे मिट्टी के खिलौने और मिट्टी से खेलकर खुश होते थे, अब स्क्रीन पर गेम जीतकर मुस्कुराते हैं, लेकिन उस मुस्कान में शायद वो सच्चाई नहीं।

जो कभी कंचे जीतने पर हुआ करती थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि आज फिर से देसी खिलौनों की ओर लोगों का ध्यान बढ़ रहा है। सरकार और कई संस्थाएं भी भारतीय पारंपरिक खिलौनों को बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि ये खिलौने सिर्फ खेल नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। कर्नाटक की लकड़ी का चन्नपटना खिलौने, वाराणसी की मिट्टी की कलाकृतियाँ, राजस्थान की कठपुतलियाँ, ये सब भारतीय कला और लोक जीवन

दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को इन देसी खिलौनों से परिचित कराएं, उन्हें बताएं कि खेल सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि असली आनंद, असली मजा तो दोस्तों के साथ मैदान में दौड़ने, पतंग उड़ाने और मिट्टी से रिश्ता जोड़ने में है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें आसपास की। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें आसपास की। FM 101.9 MHz पर ही आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। जी हां, आपका अपना FM आकाशवाणी अयोध्या। कार्यक्रमों को आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए न्यूज ऑन एयर ऐप और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी सुन रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं, आइए आपको ले चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, जहां से अब से लेकर दोपहर 12:30 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है, कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई, जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाएं।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

0: अब आए कदम चूम लूं या
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गाँव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आई। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद

0: उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये पहला जो गीत है अब्दुल्ला फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है मन चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवाते हैं एग्रीमेंट फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलशन बावरा के बोल, संगीत है बप्पी लाहिरी का।

0: नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना पिया करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: दोस्तों नमस्कार, आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व तंबाकू दिवस पर आइए सुनते हैं बीईएसटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के मैटिनी शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं 31 मई ये जो दिन है, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। और तंबाकू विरोध क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है बीईएसटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जी को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लत है तंबाकू की, ये जो नशा होता है, ये लत के अलावा भी तंबाकू का कोई इस्तेमाल होता है, वो किस तरह से होता है?
3: जी एक्चुअली ह्यूमन ने तंबाकू का जो सेवन करने से पहले उसको कोई अलग तरीके से यूज करते थे। हाँ
2: हाँ।
3: जैसे कि हमारा देश खेती प्रधान देश है
2: जी, जी।
3: तो वहाँ पे खेती हमारा पूरा डिपेंडेंसी रहता है।
2: हाँ।
3: तो खेती को जो दो तीन चीजें से जो खतरा है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स
2: हाँ।
3: या बड़े जानवर वगैरह, उनसे खतरा रहता था, तो उनके खेती के जो बॉर्डर पे तंबाकू के प्लांट्स लगाए जाते थे।
2: अच्छा।
3: और उनकी वो स्मेल से जो वाइल्ड एनिमल्स वो दूर चले जाते थे। दूसरा था कि खेती को दूसरा जो प्रॉब्लम था वो चूहे से, तो चूहे खेती खराब कर देते थे। तो अभी आज भी की तारीख में भी जो तंबाकू के जो लीव्स रहते हैं
2: जी जी,
3: वो जो बड़े रहते थे वो सूखने के बाद उसको गर्म करके,
2: अच्छा गर्म करके
3: उसको आग लगा के उसको चूहे के जो अंडरग्राउंड जो उनके
2: बिल होते
3: हैं उसमें डाल देते, चूहे भाग जाते या मर जाते थे। आज की तारीख में भी हमारे जो गाड़ी
2: है ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है,
3: इवन सिटी में भी जो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन चूहे गाड़ी के जो वायर
2: को उतर जाते हैं
3: कांच का, तो उसको
2: जी,
3: रोकने के लिए भी तंबाकू डाल देते थे उससे। तो उसके अलावा जो तंबाकू का जो पान रहते हैं उसको सूखने के बाद उसका पाउडर करते, उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करके भी यूज होता था। जैसे इंसेक्ट्स है जो खेत को या धान को खराब न कर दे। सो ये कुछ तरीके थे जो अदर देन सेवन हम इंसान इसको यूज करते थे। तो ये मुझे यहाँ पे कहना है कि तंबाकू से किसी को भी सेफ नहीं है, सब खतरे में। अगर वो जीव छोटा है तो जल्दी मरेगा, अगर बड़ा है स्लोली लेकिन मरेगा जरूर। तो तंबाकू के लिए कहा जाता है कि तंबाकू के जो सेवन करने वाले में से 50% लोग को तंबाकू मारी डालता है। तो ये मैं श्रोताओं को मैं चाहता हूँ कि बात ध्यान से सुने और अपने दिमाग में इसको हमेशा के लिए स्थापित कर दे।
2: जी जी जी, ये तो बस एक पेस्टिसाइड की तरह इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल उतनी बात अच्छी है तंबाकू की, ये कह सकते हैं बस,
3: बाकी
2: कुछ नहीं। चलिए एक और आपसे बात जाननी थी कि आप बीएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और 2014 से आपने एक मुहिम चलाई थी तंबाकू विरोधी, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जितने लोग काम करते हैं, खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं बस के और ट्रकों के ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों में ज्यादा लत होती है तंबाकू।
3: यस,
2: तो आपने जो मुहिम चलाई है इसके विरोध में, तो उसके 12 साल हो गए, क्या फायदे आपको नजर आए?
3: तो मैं श्रोताओं को बताऊं कि तंबाकू में 7000 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं।
2: ओ,
3: रसायन, 7000
2: रसायन।
3: जब कोई भी उसको कंज्यूम करता है तो वो शरीर में जाके अलग अलग बीमारियां करते हैं, जैसे कि सिंपल हार्ट बीट्स बढ़ जाती है
2: जी,
3: ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक आ सकता है, देन लकवा मार सकता है, अपने जो

0: कौन सा है वो ठीक हो जाते हैं, और तंबाकू खाने वाले लोगों को बैक पेन या शोल्डर पेन या फ्रैक्चर के भी प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। उसके अलावा तंबाकू की वजह से टीबी शरीर की बीमारियां होती है, और सबसे डेंजर जैसे कि कैंसर, पर्टिकुलरली मुंह का कैंसर। तो ये सब बीमारी की वजह से हमारे पास हमारे एम्प्लॉइज कर्मचारी उसकी लत की वजह से पीड़ित थे, और उसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो रहा था, बिकॉज बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो हमने ये सब चीज को देख के हमने 2014 में तंबाकू मुक्त बेस्ट ये अभियान शुरू किया,
1: और हमने मुक्त बेस्ट
0: अच्छा, और आज तक उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो 12 साल के आज ये अभियान को हो गए, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 12 साल में 5,000 हमारे कर्मचारी ने तंबाकू की व्यसन परमानेंटली छोड़ दिया है।
1: वाह।
0: उसके अलावा एक जो सर्वे है उसको हम गेट्स बोलते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे।
1: अच्छा।
0: उसके मुताबिक कि सरकार अगर 100 रुपीज टैक्स लेती है तंबाकू के ऊपर, तो सामने 816 रुपया का हमें अतिरिक्त भार हमें भुगतना पड़ता है। वो जो भार है मेनली तंबाकू की वजह से जो बीमारियां होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो बीमारी की वजह से लोग काम पे नहीं जाते या प्रोडक्टिविटी लॉस के हिसाब से ये नुकसान। तो 12 साल में हमने देखा है कि बीमारियां कम हो गई, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई, इसलिए सिकनेस एब्सेंटिज्म भी हमारे कम हो गया, और इसके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया, और साथ साथ में बीमारियां कम हुई है तो जो उसकी वजह से मोर्टेलिटी थी जो डेथ वो भी हमारे इधर कम हो गई है, कैंसर के प्रमाण हमारे इधर कम हो गए। तो लोगों में एक अच्छी भावनाएं तैयार हुई है तंबाकू के विरुद्ध में। तो ये बीमारियां कम होने से ये जो लोग ठीक हो रहे हैं या जो बीमार कम पड़ रहे हैं, तो ये नोटिफाई किया गया और हमारी जो अभियान को नेशनली और इंटरनेशनल भी रिकॉग्निशन मिला है, एक्नॉलेज किया गया, अवार्ड भी मिला है।
1: क्या बात।
0: तो ये मैं चाहता हूँ कि पूरी भारत में ऐसे अभियान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में चलाया जाए, जो लोग अच्छे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारी।
1: रूप से आप सभी, आप और आपकी पूरी टीम जो ये मुहिम चला रही है, अभियान चला रहे हैं, आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। पुरस्कार भी आपको मिल चुका है और काफी उपलब्धियां रही इस अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं तंबाकू, क्या होता होगा, ये नशे की शुरुआत कैसी होती है, और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं।
0: बेसिकली वो तंबाकू खुद से तो कोई खाता नहीं है
1: जी,
0: मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि पीयर प्रेशर, स्कूल कॉलेज के जमाने से दोस्त खा रहा है, कलीग खा रहा है, ले लेना,
1: अच्छा
0: ले लेना, तो छोटी छोटी शुरुआत छोटे से होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीजन ऐसा है, जब तंबाकू का सेवन किया जाता है
1: जी,
0: आइदर स्मोक से या स्मोकलेस से, तो अपने ब्रेन में एक केमिकल्स जो है
1: जी,
0: वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। वो केमिकल का नाम है डोपामिन, और डोपामिन जो कहते हैं इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं। वो जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो लोग स्ट्रेस भी महसूस फील करते हैं, उसको खुशी महसूस करते हैं, और सिंपल भाषा में बोले तो किक आती है उनको। और किक के वजह से लोग ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स ये किक के वजह से ये तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये जो देन शुरुआत में बहुत कम मात्रा में तंबाकू की सेवन, बहुत कम मात्रा में डोपामिन लेवल बढ़ता है।
1: अच्छा।
0: लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आगे ये लत बढ़ती है, तब वो डोपामिन लेवल बढ़ता है, तब तंबाकू का लेवल कंजम्पशन की मात्रा भी बढ़ जाती है।
1: अच्छा।
0: उसको कहते हैं कि निकोटिन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर्स, वो जो है वो रेजिस्ट हो जाते हैं, तब थोड़ा भी डोपामिन बढ़ने के लिए ज्यादा मात्रा तंबाकू की कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष साइकिल तैयार होती है,
1: यानी पहले 1 ग्राम खाने पर भी जो खुशी मिलती थी, वो 10 ग्राम खाने के बाद भी नहीं मिलती है।
0: आगे
1: फिर वो मात्रा बढ़ती जाती
0: है, बढ़ते बाद इसलिए वो उसकी लत लगती जाती है, और पेशेंट उसके पूरी अधीन हो जाता है, उसकी पूरे डिपेंडेंस तैयार हो जाती है, देन वो बीमारियां शुरू होती है।
1: अच्छा, फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार लत लग जाए तो फिर वो कौन कौन सी बीमारियां, बहुत लंबी लिस्ट है।
0: यस, बहुत बड़ी लिस्ट है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि कैंसर ठीक है, होता है, 100% होता है वो, लेकिन उसको टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले जो होते हैं कि मैंने पहले बताया कि पहला तो जब तंबाकू खाते हैं तो पहला हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, और कोई नोटिस नहीं करता है। हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, देन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है. देन ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन डेफिनेटली वो हार्ट पे उसकी असर होने लगती है. तो देन हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाती है. देन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरालिसिस उसके भी. जब तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो खाने की जो पाचन शक्ति है वो पुअर हो जाती है और उसके वजह से लोग उनको अपाचन समस्या रहती है.

0: कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की दिक्कत होती है. जब एक अपचन होता है तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन या कैल्शियम मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और उसके वजह से पर्टिकुलरली कैल्शियम जो बोलते हैं.
1: डॉक्टर साहब आप तो बता रहे हैं तंबाकू खाने का ये असर है,
0: ये
1: साइड देखा गया है कि जब तक वो तंबाकू नहीं खा लेते सुबह सुबह चाय पीने के बाद या सिगरेट नहीं पी लेते तब तक उन्हें हाजत नहीं आती और वो टॉयलेट नहीं जाते.
0: वो एक मिथ है, वो ऐसा कुछ नहीं है. अपचन होता है तो कैल्शियम, सबसे बड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम शुरू होता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसलिए वजह से बेसिकली हड्डियां और मसल्स में कैल्शियम की बहुत नीड रहती है, जरूरत रहती है. तो ये मसल्स एंड हड्डियां भी वीक हो जाती है और
1: ऐसे लोग डेंसिटी कम हो जाती
0: है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है. तो ऐसे जो तंबाकू जो खाने वाले लोगों में बैक पेन, मसल्स पेन और फ्रैक्चर की मात्रा भी ज्यादा रहती है. देन तंबाकू खाने की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है इम्यूनिटी बोलते हैं
1: जी,
0: वो
1: जी.
0: कम हो जाती है. और उससे अलावा लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो लंच या डिनर या स्किप करने के लिए भी लोग तंबाकू खाते हैं. तो ये सब की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है. उसके वजह से जैसे कि जो क्षय रोग या टीबी शरीर की बीमारी का उनको ज्यादा खतरा रहता है
1: जी.
0: और ऑफकोर्स लास्ट बट नॉट द एंड या नॉट द लीस्ट ये कैंसर की बीमारी
1: जी.
0: अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तंबाकू को सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है और भारत देश पूरे विश्व में
1: जी
0: तंबाकू की वजह से होने वाले
1: कैंसर के
0: मुंह के कैंसर के प्रथम नंबर पे आता है. और ये कलेक्टिवली जो भी मैंने बीमारियां बोली उसके वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोग की मृत्यु होती है. तो ये श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है.
1: ये बहुत दर्दनाक
0: चीज है,
1: मगर सत्य है.
0: लेकिन ये सत्य है
1: जी,
0: और
1: जी,
0: ये
1: जी.
0: मैं नहीं बोल रहा हूँ ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे की रिपोर्ट में लिखा है
1: जी, जी, जी. हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि तंबाकू खाने से डायबिटीज होता है, मधुमेह.
0: यस, इस पे थोड़ा बाहर दूंगा
1: जी जी.
0: कि पहला तो हम समझ लेते कि पूरी दुनिया भर में दो देश में सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूम भी होता है. वो है, एक है चीन और दूसरा नंबर पे हमारा भारत देश है.
1: अच्छा,
0: और दोनों देश में ही सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट है.
1: अच्छा.
0: तो ये इनडायरेक्टली कोरिलेशन है कि तंबाकू वजह से डायबिटीज हो सकती है. आज की तारीख में देखें तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं. पहले दो साल पहले चाइना में था, अभी भारत में हो गया, और दोनों में ज्यादा ही कंजम्पशन होता है. जैसे मैंने बताया कि तंबाकू में 7,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहते हैं, वो कंज्यूम करने के बाद हमारा जो डायबिटीज का जो मेन जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इंसुलिन
1: जी, जी.
0: ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन को फंक्शन को ये तंबाकू अल्टर करता है.
1: अच्छा,
0: और बहुत सारे रीजंस है, और इसके वजह से शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है.
1: अच्छा.
0: अगर आप WHO की साइट पे जाओगे और डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगोगे तो उसके जो पांच प्रमुख कारण है उसमें पांचवा कारण है तंबाकू का व्यसन.
1: अच्छा,
0: तो लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि तंबाकू वजह डायबिटीज भी होती है.
1: मगर जरूरी नहीं कि डायबिटीज है तो उसको तंबाकू की लत होगी,
0: नॉट नेसेसरी, बट तंबाकू खाने वालों को रिस्क ज्यादा रहती है,
1: इसकी रिस्क है, डायबिटीज हो सकता है.
0: यस, हो सकता है. और वो डायबिटीज मतलब बहुत कड़वी बीमारी है.
1: जी जी जी. तंबाकू अगर कोई किसी को अगर उसका नशा है, लत है और वो छोड़ना चाहे तो निश्चित रूप से बहुत उसके फायदे उसको मिलेंगे.
0: yes,
1: yes. और उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते होंगे.
0: yes.
1: तो हमें दोनों बातें बताइए.
0: yeah.
1: छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और एक बार वो छोड़ दे, निश्चय कर ले, अपना निर्धार पक्का हो जाए उसका कि छोड़ना है, तो उसके क्या क्या फायदे उसे होने वाले.
0: तो पहला हम उसके फायदे के बारे में बोलेंगे.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: जब तंबाकू अगर सपोज वो उसे हर एक घंटे में खाता है या किसी बहुत बार तो वो जब नींद से सुबह में उठता है तो अब कितने समय में उसको तंबाकू की जरूरत पड़ती है, वो एक भी बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है.
1: अच्छा.
0: उसकी उसकी लत के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि उठने के बाद कितने समय के बाद उसको तंबाकू खाने की जरूरत पड़ती है. तो जब तंबाकू उस समय पे नहीं खाया तो पहला तो उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती है.
1: अच्छा.
0: वो बहुत जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए,
1: बेशक
0: हृदय की स्वास्थ्य के लिए उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है. तो वो नॉर्मल रहने लगती है. देन उसके बाद ब्लड प्रेशर जो, इसलिए हम जब भी एज अ डॉक्टर हम जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तब उसको पूछते हैं अगर तंबाकू आप एडिक्ट हो तो आधे घंटे के बाद ही हम आपका बीपी चेक करेगा अगर आपने, क्योंकि हमें मालूम है वो ज्यादा ही दिखाने वाला है.
1: अच्छा.
0: तो इसलिए तो इनडायरेक्टली जब तंबाकू का लत या एडिक्शन छोड़ते हो तो बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है.
1: अरे वाह.
0: तो ये दोनों

0: हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता तो छोटा का हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाती
1: है। जी।
0: देन मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है, हमारी जो पाचन शक्ति है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमारे हड्डियाँ हमारे मसल्स वो स्ट्रांग होने लगते हैं। देन आगे जाके छोटा का तंबाकू के जो खाने वाले जो सबसे डेंजर प्रॉब्लम है वो है कैंसर, उसकी भी रिस्क कम हो जाती है। देन डायबिटीज में हमारे पास लोग है जिन्हें तंबाकू छोड़ दी है, उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बन हो गई क्योंकि शुगर भी नॉर्मल होने लगी है इसकी।
1: अच्छा,
0: ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट है कि तंबाकू लत छोड़ने के बाद उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बन हो गई है।
1: क्या बात।
0: तो ये सब उसके फायदे है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके क्या फायदे है छोड़ने के बाद। तब यस ये जरूरी है कि जब तंबाकू में जो 7000 केमिकल है उसमें से एक केमिकल का नाम है निकोटीन, और निकोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है और उसकी वजह से उसकी लत लगती है।
1: अच्छा।
0: तो जब तंबाकू सडनली आप छोड़ देते हो, लोग कहते हैं कि हम आज मैं अगर 5 बार खाता हूँ तो कल 4 बार खाऊंगा, तीन, तो ऐसा कभी नहीं होता, उसको झटके से ही छोड़ना है।
1: अच्छा।
0: तो ही फायदा होगा, तो ही उसकी लत छूटेगी। तो जब झटके से छोड़ते हो तब आपको निकोटीन का विड्रॉल सिम्टम 100% महसूस होगा,
1: शरीर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है,
0: वो महसूस होगा ही। वो जो विड्रॉल सिम्टम जैसे कि वो वीकनेस आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, पर्टिकुलर ड्राइवर कंट्रोल को ये बहुत होता था हमारे पास। तो ये लेकिन यहाँ पे जरूरी है कितना टाइम तक ये विड्रॉल सिम्टम रहता है।
1: अच्छा।
0: वो 2 दिन से ज्यादा 2 हफ्ते चलता है, उसके बाद अपनी बॉडी खुद को एडजस्ट करने लगती है।
1: जी,
0: उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: तो पूरा शरीर अपने जो है सामान्य स्थिति में आ जाता है
0: बस,
1: जैसा तंबाकू खाने से पहले
0: था वैसा। बस थोड़े दिन के लिए अपने को सहन करना है, और वो समय अगर निकाल डाला तो वापस कभी तंबाकू खाता नहीं।
1: कितनी जरूरी बात है।
0: यस,
1: हमारे श्रोताओं को उनमें से किसी को अगर ये लत है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें,
0: झटके से छोड़ना है,
1: झटके से एक साथ, और उसके बाद
0: 2 हफ्ते
1: ये लक्षण रहेंगे,
0: विड्रॉल
1: सिम्टम, और उसके बाद वो सामान्य
0: हो जाएगा, अपनी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है।
1: वाह वाह। तो फायदे हमने जान लिए। हम तंबाकू की बातें जब होती है तो एक एक्ट है, एक ऐसा नियम है, कुछ वो कानून है, कोप्टा एक्ट कुछ ऐसा कहते हैं।
0: यस।
1: ये क्या होता है, क्या कोप्टा एक्ट क्या है?
0: सी, जैसे तंबाकू की वजह से हमारे पास जैसे सबसे ज्यादा मौतें होती है, खर्चा होता है।
1: जी।
0: 100 रुपए के टैक्स के सामने 816 रुपए का हमें खर्चा हो रहा है। तो ये उसको और कम करने के लिए कुछ कानून बनाया है, उसको कोप्टा एक्ट बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। उसके अंतर्गत आपको पब्लिक प्लेस में तंबाकू का कोई भी प्रकार का सेवन प्रतिबंध है, इज अ पनिशेबल ऑफेंस। देन खाके पब्लिक प्लेस में थूकना भी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। देन उसके एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो भी अलाउड नहीं है आपको कोई भी प्रकार के। सो ये एक एक्ट इसलिए लाया है कि लोग एक दूसरे को देख के जो खाते है वो ना खाए और उसकी लत और उसको कम करते जाए हम लोग। उसका फायदा हुआ है, कम हुई है, जो लोग खाने वाले परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जो उसे और हमें आगे लेके जाना है उसको एक्ट और अभी कुछ सरकार ने उसको कड़क किया है कि उसके अंतर्गत वो सरोगेसी एड बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: उसको भी बैन किया है कि कुछ नाम सेम रखते हैं लेकिन कुछ अलग प्रोडक्ट रहता है। एक्स तंबाकू का जो प्रोडक्ट था पहले उसको खाली नाम सेम रखते हैं और प्रोडक्ट कुछ अलग रखते,
1: होता तंबाकू ही है मगर उसको कुछ एक नया नाम और नया रूप दे देते,
0: या तो फिर उसका प्रोडक्ट वो अलग कर देते हैं।
1: अच्छा।
0: जो पहले वो नाम तंबाकू के वजह से के यूज होता था, वो तंबाकू के वजह से नहीं होते, कुछ अलग प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग खाते पीते उसके लिए, तो सरोगेट बोलते हैं, उसको भी बैन किया है।
1: जी,
0: ये इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाए, उसकी वजह से जो बीमारियां है कम हो जाए और खर्चे भी कम हो जाए।
1: तंबाकू तो नहीं मगर तंबाकू जैसे और तंबाकू इस्तेमाल करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसी की अभी बात कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग सीधे सीधे तंबाकू तो नहीं खाते मगर ऐसे प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्टली जिससे तंबाकू उनके शरीर में जाता है।
0: जैसे अभी बहुत कुछ आ गया है, इन्हेलेशन आ गया है।
1: हाँ
0: भले सिगरेट नहीं पीते लेकिन कुछ इनहेलेशन तरीका सिगरेट आ गई है, उसको भी अलाउ नहीं है, वो भी हानिकारक है।
1: जी जी,
0: उसमें हानिकारक।
1: हाँ, तो ये जो तंबाकू ना खाके अगर ये ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी उतना ही दो।
0: यस यस,
1: उतना ही रिस्क।
0: यस यस,
1: जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता वो गलती से उसके शरीर में तंबाकू चला जाए तो पहला रिएक्शन बॉडी का तो ये होता है।

0: जैसे कभी पान खाते हुए पान में किसी ने हल्का सा तंबाकू डाल दिया और वो हमने खा लिया, तुरंत उल्टियां होने लगती।
1: यस यस यस। और बहुत बार तो जैसे
0: और लेकिन जिनको लत लगती है उनको पहली बार ऐसा नहीं होता,
1: उनको नहीं होता। ये जो आपने बताया वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, पैसिव स्मोकिंग बोलते उसको।
0: हाँ,
1: कि अगर हस्बैंड स्मोक करता है
0: जी जी,
1: उसके वाइफ है या उसके बच्चे है,
0: हाँ,
1: तो उसमें भी वो धुआं जाता है ना।
0: बिल्कुल, हाँ,
1: वो धुआं जाता है। देन या घर में कोई तंबाकू खाता है तो उसको देख के बच्चे भी उसके खाने लगते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये बहुत जरूरी है। तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे कोई एक फैमिली में एक हस्बैंड स्मोक करता है
0: जी,
1: और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसके वो धुआं उसको जाए तो उसके बच्चे को भी खतरा है
0: जी,
1: जो अभी तक दुनिया में आया नहीं है, उसको भी खतरा है,
0: उस पर भी असर हो रहा है,
1: बहुत खतरा है उसके लिए, सबसे ज्यादा खतरा है उसको तो
0: जी।
1: द पैसिव स्मोकिंग बोलते उसको।
0: हाँ,
1: ये सिर्फ चीजें लोगों को आई डोंट नो मालूम है या उसको इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, आई डोंट नो, बट लोगों को मालूम होना जरूरी है ये बातें।
0: अच्छा, हमने सुना है कि कुछ दवाइयों के तरीके में कुछ तरह के मेडिसिन है, उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है?
1: नहीं, आई डोंट थिंक सो।
0: अच्छा,
1: आई डोंट थिंक सो।
0: या कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो फलां डॉक्टर साहब ने कहा है कि पान में थोड़ा तंबाकू खा लिया करो ताकि आपका पेट अच्छा रहे।
1: नहीं, ये सब मिथ्स है, मिथ्स।
0: अच्छा,
1: है, मिथ्स है।
0: ऐसा कुछ
1: सी तंबाकू इतनी क्वांटिटी इज नॉट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी।
0: बस वो
1: बस उसको छोड़ना ही है ना, उसको नजदीक जाना ही नहीं उसके। बस
0: हाँ,
1: बस
0: हाँ,
1: जैसे मैं शुरुआत में बताया, छोटा जीव है तो जल्दी मरेगा, बड़ा है तो बाद में मरेगा।
0: हाँ, मरेगा जरूर,
1: मरेगा जरूर।
0: ओ, तो इस कठोर सत्य को, इस कटु सत्य को जो हमें जान लेना
1: चाहिए, एक्सेप्ट करना है, हमें
0: एक्सेप्ट करना है। कोई जादुई मिक्स आपने बनाया?
1: यस, उसको हमने,
0: ये कैसे हुआ?
1: यस,
0: कब हुआ?
1: या,
0: और इसका क्या आपको परिणाम कैसा देखने को मिला?
1: उसको हमने नाम दिया मैजिक मिक्स।
0: अच्छा,
1: या मैजिक चूरन,
0: जादुई चूरन,
1: जादुई चूरन। जैसे अभी तंबाकू की जो एडिक्ट लोग में दो प्रकार की एडिक्शन है, एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो 90% लोगों में, 10% लोग में फिजिकल डिपेंडेंसी है।
0: अच्छा,
1: तो 90% लोग बस उसको वो कलर का चूरन मांगता है और उसको हाथों में घसना है और खाना है, और उसका जो कैनिस्टर है या डब्बी बोल रहे हैं जो महाराष्ट्र में, तो वो उसको दिख गई तो उसको लगता है मैंने तंबाकू खा लिया।
0: अच्छा,
1: तो हमने वो बेस को ध्यान में रखते हमने चूरण बनाया है जिसमें दालचीनी, अजवाइन, जीरा, बड़ी शोप और लवंग का इस्तेमाल किया है। जब उसको आप ग्राइंड करोगे तो हुबहू तंबाकू सरीका ही लगेगा।
0: अच्छा,
1: और जो चूने की जगह पे हमने राइस पाउडर यूज करते हैं उसमें।
0: अच्छा,
1: तो जब आप उसको हाथ में लेके घिसोगे तो फील सेम ही आएगा कि आप तंबाकू के घिस रहे हो।
0: जो लोग तंबाकू मल के खाते
1: हैं तो उसको कलर भी वैसे ही है इसका ना। उसमें साइंस ऐसा है कि जो दालचीनी है इसकी प्रॉपर्टी है कि जो निकोटीन के विड्रोल को और कम करती है। तो साइंस भी है उसके पीछे।
0: क्या बात।
1: तो इसके वजह से हमने चूरन बनाया, उसका नाम रखा मैजिक मिक्स।
0: मैजिक मिक्स,
1: मैजिक मिक्स।
0: वाह वाह वाह।
1: और वो मैजिक ने सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैजिक किया है।
0: हाँ।
1: और वो खा के बहुत सारे लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है।
0: वाह वाह।
1: तो मैं लोगों को बोलूंगा कि इसकी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में।
0: अच्छा।
1: मैजिक मिक्स मेरा नाम डाल के आपको मिल जाए कैसे बनाना है।
0: हाँ।
1: हमने उसको कॉपीराइट किया है, आप कोई भी घर पे बना सकता है।
0: अच्छा।
1: और उसको यूज करे और अपनी जब भी तलब लगे तंबाकू की जगह उसको खाए।
0: मतलब ये मैजिक मिक्स कोई कमर्शियल प्रोडक्ट?
1: नो, इट इज नॉट कमर्शियल प्रोडक्ट।
0: ये सबके लिए है, सबके फायदे,
1: सबके फायदे के लिए। हमने खाली कॉपीराइट किया कि उसको कमर्शियल यूज कोई ना करे उसको।
0: अच्छा,
1: तो आपके लिए ये, आप खाओ, खुद बनाओ,
0: सबके लिए ये मुफ्त है,
1: फ्री
0: है,
1: खुद बनाइए घर पर खाइए।
0: तो ये फार्मूला जो है वो यूट्यूब पे देख करके बनाया जा सकता है।
1: और मेन बात उसको खा के थूकना भी नहीं है। तो स्वच्छ भारत अभियान को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उससे।
0: क्या बात है। वाह वाह।
1: उसके खाने के बाद वो निगलना ही है क्योंकि वो निगलने के बाद बहुत सारे बेनिफिट देता है।
0: बिल्कुल,
1: सब ये अपने गर्म मसाले फायदेकारक ही है अपने बॉडी को,
0: हमारे सुनने वालों के बेनिफिट के लिए।
1: यस,
0: हम इस मैजिक मिक्स का जो फॉर्मूला है उसे एक बार दोहराते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपने डाली?
1: दालचीनी,
0: दालचीनी,
1: अजवाइन,
0: अजवाइन,
1: जीरा,
0: जीरा,
1: बड़ी सौंप,
0: सौंफ,
1: सौंफ, और एक आध
0: लौंग। अच्छा,
1: उसको मिक्स करके,
0: लौंग तो एक ही ले रहे हैं, बाकी जितनी
1: बाकी इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी,
0: इक्वल क्वांटिटी,
1: इक्वल वन। उसको ग्राइंड करना है मिक्सचर में, मिक्सचर होगा वो बहुत तंबाकू सरीका लगेगा।
0: अच्छा,
1: लेकिन उसमें तंबाकू नहीं है, चूने की जगह पे राइस पाउडर यूज करने का, वो भी चावल का आटा।
0: अच्छा,
1: तो ये आप करके उसको सेम कनेक्टर में,
0: तंबाकू मलने की आदत है,
1: वैसे ही मल के खाओ,
0: मल के जो है अपना पूरा एक्शन कंप्लीट करें,
1: एक्शन कंप्लीट,
0: और उसके बाद चाहे तो उसको होठों में दबा ले थोड़ी देर,
1: दिया दबा लो,
0: उसका जो जूस निकलेगा
1: वो
0: आपके शरीर के लिए फायदेमंद
1: है। उसको थूकना भी नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत ही जादुई बात है ये तंबाकू के बारे में, इस लत को छोड़ने के लिए जो है

0: कारगर सिद्ध होगी। तो डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम के आखिर में कुछ तंबाकू छोड़ने के बारे में कुछ पते की बात हो जाए, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौके पे?
1: मैं भारत के वासियों को बताना चाहता हूँ कि तंबाकू कभी भी हमें फायदा नहीं करता है, उससे सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान ही होता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक भी नुकसान होता है।
0: जी जी,
1: वो लोगों को मालूम नहीं है, ऐसा सर्वे हुआ है।

0: के वासियों को बताना चाहता हूँ कि तंबाकू कभी भी हमें फायदा नहीं करता है, उससे सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान ही होता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक भी नुकसान होता है।
1: जी जी, जी।
0: वो लोगों को मालूम नहीं है, ऐसा सर्वे हुआ है कि अगर आपने तंबाकू की लत छोड़ दी तो आपका जो एक इंडिविजुअल घर की जो आर्थिक परिस्थिति 10% इम्प्रूव हो जाती है।
1: क्या बात है। मुझे एक और बात याद आई कि मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था और वो कृषि बैकग्राउंड से था, उसके घर वाले जो है खेती करते थे, तो वो कहता वो तंबाकू खाया करता था बहुत नियमित रूप से, और वो कहता है मुझे सांप ने अगर काट लिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ेगा। ये कितना बड़ा मिथ है, आप जरा
0: मिथ है, बहुत गलत फहमी है। ये तंबाकू छोड़ना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: वो सिर्फ वो इंडिविजुअल को नहीं खाता है, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है। जैसे हमने देखे, आप किसी को अगर देखना है तो टाटा हॉस्पिटल में जाके एक बार चक्कर मार के आए, बस खाली समझ जाएंगे ये तंबाकू से क्या गड़बड़ होती है। लोगों को जिंदा है लेकिन मुंह में खाना नहीं खा सकते, नाक में नलीट से खाना खाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली को, अपने देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
1: जी,
0: उसको मजबूत करने के लिए, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक मजबूत करने के लिए हमें तंबाकू की लत को छोड़ना ही है।
1: और कोई भी फॉर्म हो तंबाकू का,
0: कोई भी फॉर्म,
1: या तो कच्चा तंबाकू है या वो उसकी पाउडर नसवार
0: नसवाली है,
1: स्मोकिंग है,
0: कोई भी प्रकार का,
1: किसी भी तरह से,
0: बस उसको छोड़ दो, बस खत्म करो, अपनी फैमिली और अपने देश के लिए उसको छोड़ दो।
1: बहुत ही अच्छी बात है, आज तंबाकू विरोध जो है इसके बारे में आपने बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी।
0: धन्यवाद। तंबाकू की वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु होती है। तंबाकू की वजह से मनुष्य उसकी शारीरिक मानसिक और आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाती है, और उसके वजह से उनकी फैमिली बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं आज तंबाकू विरुद्ध दिवस के निमित्त श्रोताओं को अपील करूँगा कि तंबाकू की व्यसन को पूरी तरह छोड़ दे, और झटके से छोड़ दे, और अपने फैमिली को और हमारे देश को मजबूत बनाए। धन्यवाद।

विश्व तंबाकू दिवस पर अभी आप सुन रहे थे बीईएसटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। आज का मैटिनी शो बस यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निकम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंचे अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न

0: केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है। बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम उन्हें और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजेन की आवाजों में, समीर के बोल संगीत प्रीतम का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाजों में, नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का ओ माय गॉड, इस फिल्म का गाना है कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रमों को आप सुन रहे हैं एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए न्यूज ऑन एयर ऐप और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आरजू रखे।
0: कार्यक्रम लोक संगीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लोकरंग के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं शंकर यादव और साथियों के स्वर में ये गीत।
5: आरजू रखे।

0: ka kana wa ho
1: भैया तिलक बरछा के
2: बाबा बाबा
1: तिलक बरछा वाली अरे खून अलीला

0: अरे तिलक बरछा वाली भैया फूल लगनिया
1: आउरे
0: अरे इनहू
1: हाय हाय।

से अंगनवा हो। अरे झुर के बसंती पवनवा हो, रंग बरसे अंगनवा झुर के।

0: अरे चाचो के
1: आए हाय
0: फागुन है ना, अरे चाचो के अरे चाचो के डोली गईल मनवा हो रंग भरते अंगना हा।

0: गोरकी भी भीजे, समर की भीजे। अरे साड़ी सलवार रूपट्टा भीजी गई ले, साड़ी सलवार रूपट्टा भीजी गई ले, साड़ी सलवार रूपट्टा भीजी गई ले। हमारे राजा
1: आए हाय,
0: हमारे राजा

भाई कहते हैं कि गाने नए मौसम तैयार कर देते हैं। देखिए ना कैसे इस गीत ने बसंती मौसम बनाया, और चलिए बारिश का मौसम बनाते हैं गीत से। सरला सिन्हा और सखियों का स्वर है इस गाने में।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: हेलो
7: हेलो सुनो, टेलीफोन नंबर,
8: माय नंबर इज
9: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
10: जी हाँ भाई, भूलिएगा नहीं, अभी इसी प्रोग्राम के ठीक बाद ये लाइव फोन इन प्रोग्राम आपके साथ होगा, आपकी पसंद का गाना सुनाने के लिए, आपकी दिलचस्प बातों को सब तक पहुंचाने के लिए हम करेंगे आपका इंतजार ठीक 1 बजे से 1:30 तक। कार्यक्रम हेलो अयोध्या में 7376804090 नंबर आपको डायल करना होता है, पता है आपको। अवधराज मौर्या की आवाज में आइए एक और नए मौसम

को एंजॉय करते हैं। जी हाँ, सावन का इसमें आनंद हम लेंगे। तो भाई आज आपका ये दोस्त गर्मी के मौसम में अलग अलग मौसमों का मजा इन लोक गीतों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगा है। चलिए सुनते हैं ये गाना सावन पर।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम लोक गीतों का लोक रंग, एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। दिन के एक बज गए हैं और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा सजीला प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो अयोध्या। हेलो अयोध्या में आप सभी का स्वागत कर रहा है आपका रेडियो दोस्त सदक, और इंतजार है आप सभी की फोन कॉल्स का 7376804090 पर। तो चलिए जुड़िए, करिए हमसे दिलचस्प बातें और अपनी पसंद का गाना सुनिए। ख्याल ये रखिए कि जिन लोगों की कॉल्स अभी इधर लगी हों, इस महीने लगी हों, तो कोशिश करें इस महीने वो फोन न करें। चलिए अपने श्रोता से बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते, कौन बोल रही है? खुशबू ने कहां से फोन लगाया है? अयोध्या से। खुशबू जी हमसे बात कर रही है, क्या करती है खुशबू आप? पढ़ाई करती हैं? कौन सी कक्षा में पहुंच गई हैं? दस पढ़ लिया कि दस में गए हो? वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और आपकी संजीदगी से लग रहा है कि आप गंभीर होकर पढ़ाई करती हैं। कौन सी फिल्म का गाना सुनेंगी खुशबू आज? हेलो, किस फिल्म का गाना है? तो हम कैसे गाना निकालेंगे आपका? फिल्म का नाम तो आपको बताना पड़ेगा, है ना? और नहीं बता पाएंगे तो हम अपनी पसंद का गाना बजा देंगे। चलिए हम अपनी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं, अगर आपको नहीं याद आ रहा है, ठीक है?
1: दूसरा बता दे रहे हैं।
0: फिल्म का नाम बताइए, कोई भी बताइए।
1: गदर 2 का सुना दीजिए।
0: बिल्कुल सुना देंगे मैम। गदर 2 का गाना कौन सा? गदर 2 में सुनेंगे बताइए। गदर 2 में चल तेरे इश्क में मर जाते हैं, बढ़िया गाना ना, सुनाते हैं इसको आपको, ठीक है? चलिए एक हम पहला कमर्शियल ब्रेक लेते हुए ये पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: भाई एक प्यारे से गाने से आगाज हो गया आज के प्रोग्राम हेलो अयोध्या का, और देखते हैं हमारे दूसरे श्रोता कौन है और कौन सा प्यारा गीत लेकर आ रहे हैं। हेलो हेलो
1: हेलो सर जी नमस्कार, मैं जबलपुर के अशोक सिंह बात कर रहा हूँ।
0: मध्य प्रदेश के श्रोता हमें लगातार हमारे प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, अशोक सिंह जी का बहुत स्वागत है। कल भी हमारे पास मध्य प्रदेश से,
1: कैसे हैं आप? मैं आकाशवाणी टीम अयोध्या के लोग,
0: हम सब बहुत अच्छे हैं सर, अशोक सर, और आपसे बात करके और अच्छे हो जा रहे हैं। आप कैसे हैं बताएं?
1: यहाँ भी ठीक है, मगर यहाँ तो अभी गर्मी है, अभी यहाँ पानी यानी नहीं बरसा, उधर साइड आपकी तरफ पानी बरसा होगा।
0: हाँ, हमारे तरफ मौसम थोड़ा सा सुहावना हुआ है,
1: थोड़ा तापमान कम हो गया, 40 के अंदर है अभी।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल नीचे आ गया है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो
1: आनंद ले रहे हैं सर।
0: हाँ, तो गाना कौन सा सुनवा रहे हैं अशोक जी आज सबको? गाना कौन सा सुनवा रहे हैं सबको?
1: जख्म पिक्चर का अलका याग्निक की आवाज में
0: गली में आज, मेरा फेवरेट भी है अशोक जी, मैं बता दूं ये गाना।
1: आज गली में चांद निकला,
0: बहुत ही प्यारी फिल्म है और बहुत अच्छा गाना भी है, ये बहुत अच्छा गाना है वाकई। मैं कह सकता हूँ कि अलका जी के जो सबसे अच्छे गाने हैं,
1: बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी तारीफ करे कम है।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं अशोक सर आप?
1: मैं रिटायरमेंट हूँ, शाहजहानपुर का ही रहने वाला हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए फिर एंजॉय करिए, रेडियो से अपना रिश्ता यूं ही बनाए रखिए सर। 90 वर्ष आकाशवाणी के पूरे हो रहे हैं, हम चाहेंगे आपके साथ 100 वर्ष भी हम पूरे करें। बहुत शुक्रिया
1: जी सर,
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।

0: हेलो भैया
1: जी, कौन बोल रहे हैं सर?
0: पहले तो सदा जी आपको मेरे बहुत बहुत आदाब।
1: बहुत शुक्रिया, आपको भी आदाब। कौन सा बोल रहे हैं?
0: और मैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, मंसूरी रेडियो डिस्ट्रिक्ट क्लब बाजार रोड मुंगेर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी बोल रहा
1: हूं। बराबर आप लोग जुड़ते रहते हैं और तमाम प्रोग्रामों में आपकी जो उपस्थिति है वो हमें दिखाई पड़ती है, बहुत शुक्रिया।
0: मैं आकाशवाणी फैजाबाद का बहुत ही पुराना डिस्ट्रिक्ट हूँ।
1: जी जी जी।
0: और मुझे आकाशवाणी फैजाबाद आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो रहे।
1: जी जी जी। अच्छा, आप आ चुके हैं यहाँ?
0: जी जी, मैं आ चुका हूँ और ये बात आप अमरजीत भाई जानते हैं, उनके ही साथ में गया था।
1: अच्छा, उनसे मुलाकात आपकी। चलिए बहुत बढ़िया, आप हमारे सीनियर अनाउंसर से मिल चुके हैं। अमरजीत भाई तो हमारे स्टेशन की शान है भाई। तो क्या करते हैं आप मंसूरी जी?
0: बस अपनी शॉप है, शॉप पे बैठा था। मैंने कहा चलिए बहुत दिन हो गए फोन नहीं लगाए।
1: अच्छा अच्छा,
0: फोन लगाया जाए।
1: किस चीज की शॉप है?
0: बस ये बच्चों के आइटम रखे हुए हैं।
1: वहाँ बच्चों के लिए खिलौने बेचते हैं आप?
0: हाँ, बच्चों के खिलौने, टॉफी, कम्पैक्ट, पान मसाला वगैरह, गुस्सा वगैरह।
1: आज भाई 9:30 से 10 के बीच में जो प्रोग्राम हुआ था बातें आसपास की, उसमें भी बड़ी अच्छी चर्चा हमारी कंपेयर साथी ने किया था, अनाउंसर ने, खिलौनों के बारे में।
0: तो बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं आज,
1: उसमें खिलौने पर ही आज बात हुई थी। अगर आपने जाकिर साहब सुना हो तो खिलौनों पर ही बात।
0: मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं अच्छा प्रोग्राम सुन नहीं सका।
1: कोई बात नहीं, तो मुझे याद आ गया, आपने खिलौनों का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि आज सवेरे इस पर कार्यक्रम भी हुआ है। तो बड़ा प्यारा गाना आपने चुना, नसीब फिल्म का, चल चल मेरे भाई। लेकिन
0: बहुत अच्छा गाना है, गाने के बोल और दोनों भाइयों का अंदाज बड़ा अच्छा है इस गाने में। अमिताभ बच्चन साहब का
1: बिल्कुल
0: अंदाज बड़ा निराला है, एक रूट जाता है एक मनाता है और दूसरा रूट तो दूसरा मनाता है।
1: वाह, यही होना चाहिए जिंदगी में भी, है कि नहीं?
0: सुना दीजिए और मेरा परिवार इसमें शामिल होना चाहता है।
1: बहुत शुक्रिया।
0: मेरी बेगम साहिबा कमर निशा मंसूरी
1: जी,
0: बेटा यश मंसूरी, बेटी शविस्ता, लुगना पलक और अयान बाबू।
1: चलिए बहुत शुक्रिया, लीजिए सुनिए।
0: बहुत शुक्रिया।

भाई बैक टू बैक दो बढ़िया गाने बज गए इस प्रोग्राम में हमारे प्यारे श्रोताओं की पसंद पर, और 10 मिनट का वक्त हमने अभी बिताया इस प्रोग्राम में। हमारे तीसरे कॉलर आ रहे हैं लाइन पर। हेलो,

रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलीथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।

0: चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक, तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गड़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com। भाई, प्रोग्राम में 16 मिनट बीत चुके हैं और अभी लगभग आधा सफर यानी 14 मिनट का सफर इस प्रोग्राम में है बाकी। हमारे और श्रोता जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में। हेलो अयोध्या, सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहा है। 7376804090 नंबर डायल कीजिए, अपनी दिलचस्प बातों के साथ जुड़िए, अपनी पसंद का गाना अभी के अभी सुनिए अपने इस दोस्त के साथ। हेलो, सबसे पहले अपना रेडियो दूर करिए सर, जिसने भी फोन लगाया है रेडियो अपना दूर कर लीजिए बिल्कुल, तब आपसे बात हो पाएगी।
1: हेलो,
0: अभी भी आपने रेडियो दूर नहीं किया है, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। रेडियो दूर करें सर, वरना आपकी आवाज गूंजेगी।
1: हाँ सर।
0: हाँ, अब ठीक, फिर से आप रेडियो चला लेते हैं। इस बार आप रेडियो चलाएंगे तो आपका फोन काट दिया जाएगा सर।
1: दूर हो ही गया सर।
0: हाँ, फिर हम बात ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि बात हो ही नहीं पाएगी ना। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम डॉक्टर बंगाली है, उसे मनोज कुमार नाम है, गोंडा जिला कुल्लैया।
0: हाँ हाँ, हमारी डॉक्टर बंगाली से बात हो रही है। अच्छा, ये तो आपके दवा खाना का नाम चांदसी दवा खाना है क्या?
1: चांदसी दवा खाना।
0: हाँ, ये जरा मुझे बताइए कि जो हमारे बंगाली डॉक्टर्स होते हैं सर, इनके दवा खानों का नाम चांदसी दवा खाना ही क्यों होता है? मैंने कई जगह देखा है।
1: ये अपने आपको हर प्रकार के दवा के बारे में जानकारी है, थोड़ा चमड़ा के ज्यादा विशेषज्ञ है।
0: जी जी जी, नहीं मैं ये जानना चाह रहा था कि चांदसी जो ये नाम आया है दवा खाने का।
1: हाँ, ये एक मां मनसा, मतलब जो सांप होता है, सांप।
0: अच्छा,
1: उसका एक कोड भाषा है।
0: ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करके। तो दिन भर में कितने मरीज आपके पास आते हैं सर, जान सकते हैं?
1: मरीज हो जाता है 2,000-3,000 के प्रैक्टिस हो जाता है। एक छोटा सा दुकान किराना का भी है।
0: जी जी जी जी, चलिए तो कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आज? अच्छा, आपने मेरी पसंद से कहा है सुनने को, तो मैं धुरंधर फिल्म का आपको गाना सुनाऊंगा, नया गाना, नया गाना सुनवाएंगे आपको, ठीक है डॉक्टर साहब? चलिए, आपने हमें फोन किया, बहुत खुशी हुई। अगली बार जब फोन कीजिएगा थोड़ा समय लेकर और रेडियो को दूर करके, जितने भी श्रोता हमें कॉल करें रेडियो की आवाज बंद करके ही बात करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गाना सुनिए।

0: तो श्रोताओं, ये प्रोग्राम चल रहा है हेलो अयोध्या, सजीव फोन इन कार्यक्रम है, जहां लाइव फोन इन प्रोग्राम है। 7376 8040 90 नंबर को आप डायल कर रहे हैं। हमारे अगले श्रोता लाइन पर आ रहे हैं। हेलो।
1: हेलो। हाँ सर,
0: नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मनोज कुमार शर्मा मदहा चौराहा से बोल रहे हैं सर।
0: मनोज कुमार शर्मा जी, मदहा चौराहा, जहाँ पर नया ओवर ब्रिज बन गया है ना?
1: हाँ सर, सब्जी की दुकान है अपनी वहाँ।
0: हमने कहा एक नया पुल भी तो बन गया आपके ऊपर, ओवर ब्रिज रास्ता।
1: हाँ सर, बन गया।
0: तो दोनों वाला चालू हो गया कि एक ही चल रहा है अभी?
1: एक ही चल रहा है।
0: अच्छा, दूसरा वाला कब तक चालू हो जाएगा? तैयारी चल रही उसकी भी?
1: तैयारी चल रही सर, एक महीना लगेगा।
0: एक महीना लगेगा, चलिए बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई। उधर जाने वालों को बड़ी तकलीफ होती थी, जब क्रॉसिंग बंद हो जाती थी तो सब जाम लग जाता था एकदम से, है कि नहीं? तो अभी उसके बनने से बड़ा आराम है। तो सब्जी की दुकान में क्या क्या आज आपने लगा रखा है अपनी सब्जी की दुकान, हम देखना चाहते हैं।
1: पूरी सब्जी है, भिंडी, लौकी, तरोई, करेला, परवल, मशरूम, पूरी सब्जी है, टमाटर, गोभी, बैगन।
0: तो एकदम लोकेशन बता दिए ताकि इसमें किसी कुछ लेना हो तो पहुंच जाए आपके पास।
1: पूरी सब्जी है सर, कुछ पूरी सब्जी है।
0: हम समझ गए, पूरी सब्जी है, उसके इसके साथ पूरी सब्जी भी बन जाएगा लोगों का। हम ये कह रहे थे ना, जैसे बढ़िया आपने बता दिया, तो जिनको आज जरूरत होगी इन सब्जियों की, आपके पास पहुंचेंगे, अभी तो दोपहर है, शाम आम तक लोग जाएंगे आपके पास ज्यादा। तो गाना कौन सा सुन रहे हैं आप मनोज भाई? कनवा कौन सा सुनेंगे गाना?
1: नदिया के पास सर, कौन दिशा में लेके चला रे बटोरिया,
0: ये देखिए बजा दिया हमने। तो ये पिक्चर बड़ी शानदार है और इसकी फरमाइश भी खूब आती है। हम देखते हैं लगभग सारे प्रोग्राम में कोई ना कोई नदिया के पार का गाना सुनता है।
1: चलिए, बहुत अच्छा गाना है।
0: है ही है, बिल्कुल है, हम लोग की जमीन से जुड़ा हुआ गाना, इसलिए और ही पसंद किया जाता है कि नहीं?
1: जी सर।
0: चलिए, बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आपने फोन किया, फिर फोन कीजिएगा। पहली बार फोन लगा था कि इससे पहले कभी जुड़े हैं आप?
1: नहीं, पहली बार फोन लगा था, रेडियो हम सुन रहे हैं सन 2002 से।
0: वाह भाई, हमारे पुराने श्रोता लेकिन आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ पाए हैं, बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके हमें बड़ी खुशी हुई और आपका गाना बजाने में भी हमको उतनी खुशी हो रही है, शुक्रिया।
1: रेडियो सर, तीन बैंड का है, उसी से सुनते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, रेडियो पर ज्यादातर लोग मोबाइल पे सुनते हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हम एक गुजारिश करेंगे आपसे शर्मा जी कि अपनी सब्जी की दुकान पर इस रेडियो को तेज बजा के छोड़ दिया करिए, तो जो लोग और आते हैं ना उन्हें भी मजा आएगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।

0: अरे भाई क्या गाना है और रोज बजने वाला ये प्यारा सा गीत है। हमारे आखिरी श्रोता जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में। हेलो।
1: हाँ सर
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर
1: चंद्र कुमार पांडे बोल रहे हैं। सर
0: चंद्र कुमार पांडे जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: गोसाईगंज।
0: गोसाईगंज से आप जुड़े हैं? नगहरा। अरे मैं देख रहा हूँ, नगहरा भी देख रहा हूँ, गोसाईगंज भी देख रहा हूँ, क्या बात है।
1: हाँ सर।
0: तो ये बताइए, आपने गाना चुना है इसका मोहरा का गाना है ना?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: नगहरा से बात कर रहे हैं और मोहरा का गाना सुनेंगे आप?
1: हाँ सर। हाँ
0: क्या करते हैं आप? हाँ मैं बजा दूंगा, तू चीज ले, लगा दे रहा हूँ, आपको कोई शक ना रह जाए, मैं इस गाने को चला दे रहा हूँ तुरंत के तुरंत।
1: ठीक है सर।
0: तो क्या करते हैं आप? सर
1: सर मैं साइकिल का पंचर बनाता हूँ गोसाईगंज में, सरकारी अस्पताल के सामने।
0: अच्छा, वही जो गोसाईगंज वाला सरकारी अस्पताल उसी के सामने?
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, गोरे लाल के यहाँ।
0: तो मैं आपको एक बात बता दूँ, किसी से बताइएगा नहीं, लेकिन
1: नहीं बताएंगे साहब।
0: जिस अस्पताल के सामने आप पंचर बनाते हैं उसी अस्पताल में मेरा जन्म हुआ है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: बहुत शुक्रिया। वही मेरी पैदाइश है जी, उसी अस्पताल में जन्म हुआ हमारा जी।
1: चलिए
0: जी जी, जो
1: सामने बनाता हूँ।
0: हाँ सरकारी जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद।
1: वाला है ना,
0: अब बहुत दिन हो गया मेरा उधर जाना, मैं जान नहीं पाऊंगा वहाँ क्या क्या चीजें हैं, लेकिन मेरी पैदाइश उसी अस्पताल की है, सरकारी अस्पताल की है ना सर? चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपका गाना पहुँचा रहे हैं आखिरी श्रोता के रूप में।

भाई इस तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गीत के साथ ही ये मस्त प्रोग्राम यहीं पर खत्म हो रहा है और आपका रेडियो दोस्त सदक चाहता है इस कार्यक्रम से आपसे इजाजत और इसके बाद अगला प्रोग्राम है वो भी फरमाइशी फिल्मी गीतों का ही कार्यक्रम है दोस्तों जो कि फेसबुक पर आधारित है। हमारे फेसबुक पेज पर जिन श्रोताओं ने अपनी फरमाइशें भेजी हैं उनकी फरमाइशों को हम पूरा करेंगे ठीक अगले प्रोग्राम में और इसी के साथ इस प्रोग्राम से इजाजत।

0: आकाशवाणी एट 90। श्रोताओं, भी आप सुने थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया अश्विनी कुमार शुक्ला जी ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जयंत पटेल। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। 1:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
3: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
2: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
3: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
2: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
3: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
2: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।

जी हाँ श्रोताओं, हाजिर हो गए आपके अपने प्रोग्राम कुछ तुमने कहा है में, और फेसबुक पेज हमने खोल लिया और आपकी फरमाइशें हमने देखनी शुरू कर दी हैं। आपके ही पसंद के गानों को आज शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में जो हमारे श्रोताओं ने फरमाइश की है, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नाम को हम पढ़ सकें। पहला संदेश हमें दिखाई पड़ रहा है जूही द्विवेदी का, सुहावल जिला अयोध्या से। राधा नामदेव जी का संदेश हम तक पहुंचा है सहारनपुर से, और गुंजन येले इन्होंने हमें संदेश भेजा है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ रहे इस प्रोग्राम में अटल रेडियो श्रोता संघ सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू जी, और संजय ढिंगिया का ये संदेश हम तक पहुंच रहा है बागपत उत्तर प्रदेश से। विजय सुरलकर का संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से, और अगला मैसेज हमारे पास है हिमकेश्वर साहू हिम जी का भाटापारा छत्तीसगढ़ से। शिव चौहान जी हमें लिख रहे हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से, और इसी गाने में शामिल हो रहे हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा जी नई दिल्ली टैगोर गार्डन से। इंजीनियर फैजल इमाम जी इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। इसी गाने को सुनेंगे रवि कुमार राहुल जी, और इनका एड्रेस इस पर इन्होंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अगली बार आप अपने मैसेज में अपना पता जरूर लिखें। दो ही चीजें आपको लिखनी हैं, अपना पता, अपने गीत और फिल्म का नाम, गीत के बोल, और अपना नाम आपके जो आईडी पर लिखा वो हम पढ़ते हैं। नरेश मल्होत्रा नेटू जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है खैल बाजार पानीपत से। अरुण कुमार मालवीय दर्द जी का संदेश

प्रोग्राम में अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं विक्रम मालवीय जी का। इन्होंने हमें ये संदेश भेजा है गुल बालोद तहसील आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। सुनील पाठक जी का संदेश हमें प्राप्त हो रहा है अनारकली बाजार जगराओं से। इसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं विष्णु टेलर जी दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से। और अगला गाना है किशोर कुमार की आवाज में जो आप सब सुनेंगे। योगेश सर्वा जी शामिल हो रहे हैं संदेश के जरिए और इन्होंने भी ऐसा ही गाना किशोर कुमार की आवाज में सुनना चाहा था लेकिन दूसरा गाना ये बज रहा है दूसरे श्रोता की हमारी पसंद पर। उरेटा डोंडी लोहारा जिला बालोद से आपका संदेश है। लाल गिरी गोस्वामी जी हमसे जुड़ रहे हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। और संदेश मिला है सुरेश गगनेजा जी का जलालाबाद वेस्ट से। इसी तरह से BIBL धाकड़ जी हमसे जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी जी का संदेश पहुंचा है ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से। कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में ओम प्रकाश राय जी शामिल हो रहे हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। निसार सलमानी जी जुड़ेंगे हमारे इस प्रोग्राम में आज धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। और मसरूर हसन जी का ये संदेश है सहारनपुर से। जाकिर मंसूरी जी जुड़ रहे हैं अभी इनका फोन भी देखिए जुड़ लगा था हमारे हेलो अयोध्या प्रोग्राम में और ये हमसे जुड़ रहे हैं बाजार रोड मुंगीसापुर से। बाबा राव वडोड़े इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं पुणे से।

रजाक मोहम्मद जी शामिल हो रहे हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। उत्तरा दिवाकर जी शामिल होंगे प्रोग्राम में पीपर पारा पालचुआ मुंगेड़ी छत्तीसगढ़ से। और एक और संदेश शामिल कर रहे हैं इस गाने से पहले राधे श्याम शर्मा जी को, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से।

0: पाव भर साहब, क्या हाल है
1: यार? हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
0: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
1: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है। आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
1: प्रोग्राम कुछ तुमने कहा में अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे मुकेश और कंचन की आवाज में। युगल सर होगा, कमल सावने शामिल हो रहे हैं नागपुर महाराष्ट्र से। नीलू मेघा जी का संदेश हम तक पहुंचा है फेसबुक पोस्ट के जरिए, राजधानी रायपुर से। और कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में उमा सिंह जी जुड़ रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से। मोहम्मद यासीन अंजान जी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी का संदेश हमें मिला है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। और इसी प्रोग्राम का हिस्सा है राजेश कुमार वर्मा जी।

पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से वेद प्रकाश मीणा जी हमसे जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में। नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से आफताब अंसारी जी का संदेश हमें मिला है। शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से प्रवीण श्री माली जी का संदेश हम शामिल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। कुंवर कॉलोनी बड़वाह से और फागू राम यादव जी को हम शामिल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। संबलपुर कांकेर से सतीश अनेजा जी शामिल होंगे हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में। और आपने चंडीगढ़ से ये संदेश हमको भेजा है। दिलशाद हुसैन जी शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में। ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से पुंजा जी नावाकर जी हमसे जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में। नालेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से विनोद वांडलकर जी का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है। रायपुर छत्तीसगढ़ से, तो लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर मुकेश और कंचन की आवाज में ये प्रोग्राम का अगला गाना।

भाई जेठ की दोपहरी चल रही है, गर्मियों का मौसम है। अगला गाना खुली नंबर वन से है, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं। पूर्णिमा और कुमार सानू की आवाज में आप सभी के संदेश शामिल कर रहे हैं इस गाने के साथ। रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। शहरून नूर अंसारी जी ग्रामा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से इस प्रोग्राम में शामिल हुए। राहुल मंडवार जी का ये संदेश हम तक पहुंचा है साहू नगर यवतमाल से। और जग मोहन सिंह प्रजापत का संदेश हम शामिल कर रहे हैं लोहोडडा जिला बागपत से। मोहम्मद सईद अब्बासी का ये संदेश ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से। इसी तरह से शुभ चंद्र बजाज जी शामिल हो रहे हैं कालका से। राजेश वर्मा जी का संदेश हमें मिला है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। और महेंद्र मोदी जी शामिल हो रहे हैं रामगढ़ कैंट से। दिनेश वर्मा जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ रिंगनी छत्तीसगढ़ से। बबलेश पवार जी का संदेश हमको मिल गया है, बबलेश पवार जी गांधी चौक बाड़मेर राज से हमसे जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में। फनेश चंदन जी का संदेश हम तक पहुंचा है सौंघा धमतरी छत्तीसगढ़ से, इसी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। जग्गर राम साहू जी इनके साथ छत्तीसगढ़ से ये भी शामिल हो रहे हैं राजनांदगांव से। फिर राजनांदगांव से हमारे कई सारे श्रोता जुड़ रहे हैं। रिजवान खान का ये संदेश है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से। कार्यक्रम में शंभु दयाल जी का ये संदेश हम तक पहुंचा है जाखोद से। तो लीजिए एक और शामिल कर ले रहे हैं मैसेज इस गाने से पहले। अशोक कुमार साहू जी इन्होंने हमें संदेश भेजा है लीलेश्वरी, माफ कीजिएगा, जिला कवर्धा।

भाई जेट का ये गाना बजा प्रोग्राम कुछ तुमने कहा है में, और ये प्रोग्राम साथियों बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही पॉपुलर है। आज बहुत ढेर सारे मैसेजेस हम तक पहुंचे हैं। फेसबुक पेज आकाशवाणी अयोध्या का आप सर्च करें, उसके कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी पसंद का गाना आप फरमाइश कर सकते हैं। आपके नाम के साथ ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम है। अगला गाना आधी फिल्म का ये मकबूल गीत होगा लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में, और जितने भी गाने बजे सब आप सबकी फरमाइश पर हैं। अगला संदेश है बाल करण वर्मा जी का, और ये शामिल हो रहे हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। विनायक बेंडे जी का संदेश हम तक पहुंचा है आकोट से, और हुकुम करमाकर जी शामिल हो रहे हैं इस प्रोग्राम में बेरड़ी मध्य प्रदेश से। दो दुनी चार फिल्म का गाना सुनना चाहता था इन्होंने, चलिए हम आपको ये आधी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। के आर साहू जी भाटापारा से, राजेश बनासिया जी का संदेश हमें मिला है भाऊखेड़ी जिला सीहोर मध्य प्रदेश से, ओम बगारिया जी का ये संदेश है कोई भी गीत सुनने के लिए गांव बंडी वाला फजिलका से, ज्ञान भूषण शर्मा जी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे रावर करनाल से। और इसी प्रोग्राम में हम और भी चंद श्रोताओं को शामिल कर रहे हैं, सुरेश जायसवाल जी जमनिया जिला दुर्ग से हमसे इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। तो लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर प्रोग्राम का ये आखिरी गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

भाई हमारे और श्रोताओं को भी शिकवा न रहे, कुछ और नामों को शामिल कर ले रहे हैं इसी गीत के साथ। ये आखिरी नगमा होगा आपके इस प्रोग्राम का। भुवन प्रकाश जी शामिल हो रहे हैं एटा रोड गुंज डुडवारा उत्तर प्रदेश।

एटा रोड गुंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से उत्तम कुमार भगत जी बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। मोहम्मद इंतजार शामिल हो रहे हैं भोजपुर तागा सहारनपुर से। दातर सिंह का संदेश हमें मिला गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। रमेश कुमार जी पटेल नगर मालोट से। मोहम्मद फारूक शेख शामिल हो रहे हैं इस प्रोग्राम में गणेशपुर एटा उत्तर प्रदेश से। राम कुमार रेवार जी का संदेश हम तक पहुंचा है। सैयद यूनुस का संदेश हमारे पास तक पहुंच गया है आष्टी जिला जालान मारवाड़ा से। और भी कुछ श्रोताओं को हम शामिल करेंगे। राघव बघेल जी हैं इस प्रोग्राम में लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। संतोष कुमार सोनार जी का संदेश हम तक पहुंचा है बहादुरपुर खानदेश से। अनोखे लाल जी का ये संदेश हम तक पहुंचा है पुराना शहर बरेली से। बिठल जी सुरेशे जी शामिल हो रहे हैं काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से। और इसी प्रोग्राम में आर कुमार जी का संदेश हमें मिला है बटिंडा खेड़ा पंजाब से। तो लीजिए आप सभी ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को इस आधे घंटे के प्रोग्राम में हमने शामिल करने की कोशिश की है। जिनके प्रोग्राम में संदेश नहीं शामिल हुए उनसे माफी चाहते हुए, क्योंकि 200 से ज्यादा संदेश इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश। और ये आखिरी गाना आप तक।

0: के अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
4: प्रोग्राम गीतांजलि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहला गीत सुनेंगे रूना लैला के स्वर में, और इस गीत को लिखा है नूर देवासी ने और कंपोजर हैं OP नैयर।

0: आंधी फिल्म के इस गीत के साथ समाप्त हो रहा है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम कुछ तुमने कहा। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। दिन के 2 बज चुके हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए

0: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044420।

0: 70 70।
1: सुनत हूँ सखी, सुनत हूँ कार्यक्रम अंगना माँ हो वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
0: प्रोग्राम गीतांजलि में आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में गाई ये गजल, तोड़ दो अहदे मोहब्बत। अहद मतलब कसम, मोहब्बत की कसम तोड़ दो।

मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुनी ये गजल प्रोग्राम गीतांजलि में। और आइए अब घूंघट एल्बम का ये गाना सुनते हैं, पंकज उदास के स्वर में। कलाम है जमीर काजमी का, ये गजल है प्यारी सी।

0: पंकज उदास के स्वर में गाए इसी गजल के साथ खत्म हो रहा है हमारा आज का ये प्रोग्राम गीतांजलि FM 101.9 MHz पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं। दोपहर के 2:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक

0: में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन ऑंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओमी नावलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को

0: और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ॉन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
1: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले, स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वैलोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती है। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह

0: हेलो हेलो, बात आ नहीं रही है, शायद कुछ और बात है। चलिए बहनों, हम लोग बात तो करेंगे, लेकिन मैं आज आपसे एक और बात करना चाहती हूँ इस विषय पे करने से पहले, और वो है आलू की बात। जी हाँ बहनों, आलू जो एक सब्जी है, क्योंकि आज है 30 मई और आज के दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। हेलो,
1: नमस्ते। मैं चांदनी
0: लीजिए
1: पांडे बोल
0: लीजिए।
1: रही हूँ, दत्तनगर जिला गोंडा से। जी
0: अच्छा, जिला गोंडा से शालिनी पांडे जी। चलिए पांडे जी, आपसे पहले बात करते हैं तो पहले ये बताइए कि आप जल संरक्षण, जो आज हमारा विषय है ना, बहनों की भूमिका, तो जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों हमें पानी बचाना चाहिए, इस बारे में कुछ आप बताएंगी?
1: मैम, इसके बारे में हम कहना चाहते हैं क्योंकि पानी तो बहुत है, लेकिन पीने योग्य पानी सिर्फ 2% है। क्योंकि जल संरक्षण इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि आने वाली पीढ़ी में जल के लिए बहुत ज्यादा ही समस्या खड़ी होने वाली है।
0: बहुत सुंदर बात आपने कही है, बहुत जागरूकता की, कि पानी तो बहुत है, इतने सारे मतलब 70% पानी है, लेकिन पीने योग्य पानी 1 से 2% ही है। तो ये बताएं कि आप घर में अपने रोज के काम के समय कैसे पानी हम लोग बचा सकते हैं, बताएं।
1: मैम, हम ये कहना चाहते हैं जैसे हम पानी का यूज करते हैं, अगर हम सब्जी धुल रहे हैं तो अगर हम वो पानी रख रहे हैं फिर हम उसे किसी और यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम वो पानी अगर पौधे में डाल देते हैं तो उससे
0: हाँ,
1: पौधे को पानी भी मिल जाएगा और जल भी बचा रहेगा।
0: बहुत सुंदर बात कही है। देखिए, जो
1: और
0: उसका है ना,
1: जैसे हम घर में सब्जी हुआ, चावल हुआ, या ऐसे बर्तन धुलते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं, अगर हम वो पानी इकट्ठा करके रखे रहेंगे तो अगर हम उसे पौधे में डालेंगे या किसी और चीज में प्रयोग करेंगे तो उससे पौधे को भी पानी मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा। अगर पौधे हैं तो हम पानी अवस्था से मिलेगा हमेशा।
0: बहुत सुंदर बात, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। आपने देखिए कितनी
1: और
0: हाँ
1: बारिश हो रही है तो हमें बारिश का भी पानी का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बारिश का पानी इकट्ठा करेंगे तो हमें वो बहुत से चीजों में काम आएगा। जैसे हम अगर हमारे पास खेत है तो अगर हम उसे खेत में यूज कर सकते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद शालिनी जी। देखिए कितनी सही बात इन्होंने बताई कि अगर पानी बरसात जब होती है ना, क्योंकि अब मौसम आने भी वाला है, तो जब पानी बरसता है तो हम उस पानी को भी कहीं इकट्ठा कर सकते हैं और बाद में प्रयोग कर सकते हैं। और हमें लग रहा है कोई और बहन भी लग रहा है जुड़ रही, क्या? नहीं, चलिए शालिनी, हम अपने बाकी बहनों की भी बातों का इंतजार करो। और बहनों, जो मैं एक बात कह रही थी ना कि आज है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, क्योंकि आज है 30 मई, और आपको मैं फटाफट बता दूं कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन को मनाना ही इसीलिए शुरू किया ताकि हम आलू के पौष्टिक महत्व, कृषि में इसकी भूमिका, और पूरे विश्व में भूख और गरीबी मिटाने में इसके योगदान को उजागर करते हैं। और बहनों, आ गई है लगता है हमारी किसी दूसरी बहन की कॉल, तो कर लेते हैं बात। हेलो हेलो हेलो, कोई बात नहीं है, लग रहा है कोई और है। चलिए हम लोग बात करते रहेंगे। तो बहनों, मैं आपको ये बता रही थी कि देखिए, हम लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में ये जो भोजन है, पानी है, ये इतना महत्वपूर्ण है, और हम जो महिलाएं हैं ना, इनके ऊपर विशेष जिम्मेदारी है कि हम इन सब के संरक्षण के लिए बात करें। तो देखिए, हेलो हेलो, लग रहा है आज हमारी कुछ फोन लाइन साथ नहीं दे रही है। हेलो, आज हमारा सिर्फ बहनों का ही कार्यक्रम है, तो हम चाहेंगे कि जिस भी परिवार में आज सुना जा रहा है कार्यक्रम, तो बहनें फोन करें ताकि हम उनसे बात कर सकें। तो बहनों, हम बात कर रहे हैं आज जल के महत्व की, जल संरक्षण में बहनों की भूमिका। हेलो हेलो, रेडियो को थोड़ा दूर करें, और आज हम सिर्फ बहनों से बात करेंगे। तो हाँ, आज हम सिर्फ बहनों से बात करेंगे, और हम चाहेंगे कि जब आप हमें फोन मिलाएं तो रेडियो सेट को थोड़ा दूर रखें ताकि हम आपकी आवाज भी क्लियर सुन सके, साफ सुन सके। तो बहनों, हम बात कर रहे थे कि जल का महत्व कैसे है। हेलो, जल का महत्व बहनों, देखिए हम लोग, जैसे अभी एक हमारी बहन ने बताया कि विश्व भर में 1 से 2% ही साफ पानी है जो कि पीने योग्य है, और इतनी बड़ी विश्व की जनसंख्या है, उसके अलावा हमारे जानवर हैं, हमारी खेती बाड़ी है, हर एक को पानी की जरूरत होती है। तो इसलिए, हेलो
1: हेलो।
0: हाँ नमस्कार, आपको आवाज आ रही है?
1: हाँ जी आ रही है।
0: बताएं अपना
1: और
0: शुभ नाम बताएं।
1: जी, मेरा नाम श्वेता।
0: हाँ, तो कहाँ से बोल रही हैं?
1: अयोध्या से।
0: अयोध्या से, तो नमस्कार, बताएं, आज हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग रोज

0: रोजमर्रा के जीवन में कम पानी का इस्तेमाल करके पानी कैसे बचा सकते हैं, बताएं आप क्या कहना चाहेंगे। हेलो
1: जी मैम,
0: हाँ बताएं क्या कहना चाहेंगे कि हम जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं, पानी कैसे बचा सकते हैं। लगता है कुछ सोच रही थी वो। कोई बात नहीं है बहनों, हम देखिए जितनी भी बहनों से जब जुड़ते हैं ना फोन के माध्यम से, जो भी बातें होती हैं तो एक हमारा पूरा एक एक से दूसरे से जुड़ाव होता है और हम सभी मिलकर किसी विषय के बारे में मंथन करते हैं। हेलो हेलो हेलो बहनों, आप लोग थोड़ी तैयारी से तब फोन करें ताकि हम जैसे ही आपसे हेलो कहें तो आप हमारे विषय के बारे में बात करें। हेलो हेलो, हमें लग रहा है या तो बहनों को हमारी आवाज नहीं मिल रही है, हमें बहनों की नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं बहनों, आप और मैं अपने जो भाई हैं उनसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगी कि आज का समय ना थोड़ा बहनों के लिए रहने दें। और हमारी फोन लाइन में एक बार फिर से बता देती हूँ, जो हमारी बहनें फोन करना चाहती हैं, नई श्रोता है हमारी, हमारा फोन नंबर है 7376804090 7376804090। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ हेलो नमस्कार, रेडियो सेट थोड़ा सा दूर रखें। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, रेडियो सेट अपना बंद कर दें आप, जो अगल आप बगल में आपके जो चल रहा है, और आप अपना नाम बताएं।
1: हाँ मैं रश्मि बोल रही
0: हूँ। राजश्री,
1: रश्मि अखबारा से।
0: अच्छा लक्ष्मी जी बोल रही हैं तो ये
1: रश्मि।
0: अच्छा रश्मि देखिए यही है ना, फोन सेट थोड़ा आपका रेडियो सेट थोड़ा दूर रहता है तो हमें आपकी आवाज साफ मिलती है। तो रश्मि जी आज के विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि जल संरक्षण में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है।
1: जैसे मैम हम चावल वगैरह धोते हैं, सब्जी इनका पानी पौधों में डालना चाहिए।
0: हाँ हाँ,
1: कपड़े धोते हैं, कपड़े का पानी भी जो बचता है उसे भी हमें किसी और जगह यूज करना चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। तो एक ही पानी को कपड़ा धोने बर्तन मांजने के बाद जो बच जाता है आप बता रही हैं, उसको दूसरी जगह पे हमें प्रयोग करना चाहिए। और बहनों ये बताइए कि आप जैसे नहाते वाते हैं तो नल खोल लेती हैं पूरा की बाल्टी और मग से आप काम को चलाती हैं?
1: नहीं, हम बाल्टी और मग से।
0: हाँ ये तो बहुत ही सुंदर बात है ना, क्योंकि देखिए कितना पानी बह जाता है अगर खुला छोटा। और घर में आपके मोटर है क्या पानी भरने के लिए, ऊपर की मंजिल पे चढ़ाने के लिए?
1: नहीं मैम मोटर नहीं है, नल है।
0: अच्छा अच्छा नल है, तो नल को आप कभी ऐसा तो नहीं होता कि चूता रह जाए उसमें पानी और मतलब व्यर्थ जाए, ऐसा तो नहीं होता? आप तुरंत बंद कर देती हैं काम के बाद?
1: हम आप तुरंत बंद कर देते हैं।
0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर, देखिए आप ऐसे जागरूक जो हमारे श्रोता है ना, हमें बड़ी खुशी होती है। तो आप ऐसा स्वयं भी करती हैं या घर के और सदस्यों को भी इसके लिए प्रेरित करती हैं?
1: और सबको भी बताते हैं कि फालतू काम में व्यस्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पानी की समस्या बहुत बड़ी हो।
0: बहुत नहीं नहीं बहुत सुंदर बात है, देखिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप
1: अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि ज्यादा पानी व्यस्त मत किया करो।
0: बहुत सुंदर, देखिए आपने बात कही ना, हमारी परंपरा में भी ये है कि महिलाएं हमेशा से जल संरक्षण से जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पीने के लिए 1% पानी है, 1 या 2%।
0: हाँ
1: और बाकी पानी पीने के लिए है नहीं।
0: देखिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी सारे श्रोता जो है मतलब जागरूक हैं, और आपको बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमारी बाकी जो भी सखियां सुन रही हैं वे सभी स्वयं भी ऐसा करें और दूसरी बहनों को भी और अपने परिवार के सदस्यों को भी प्रेरित करें, क्योंकि देखिए पानी है ना, कहते हैं पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और बिना पानी के तो सारा जीवन शून्य होगा। धन्यवाद आपको।
1: जीवन है ना।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com, ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: हेलो हेलो
6: हेलो,
5: हाँ नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
6: नीलिमा बोल रही हूँ, फैजाबाद से, घुसियाना से।
5: फैजाबाद घुसियाना से बोल रही हैं नीलिमा जी। नीलिमा जी, तो बताएं, आज हम लोग बात कर रहे हैं जल संरक्षण में बहनों की भूमिका, तो आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगी कि हम लोग कैसे पानी बचा सकते हैं, कैसे पर्यावरण की मदद कर सकते हैं।
6: जी, हम लोग को पानी ज्यादा बहाना नहीं चाहिए, पानी खर्चा करना चाहिए।
5: बहुत सुंदर। और ये जैसे आप ये बताएं कि घर में आप लोग आंगन धोती होंगी, अपना कमरे के कभी धुलाई करती होंगी, तो क्या करती हैं, पाइप से सीधे पानी का प्रयोग करती हैं कि बाल्टी मग से प्रयोग करती हैं?
6: बाल्टी मग से धोते हैं, चावल धोते हैं, सब्जी भी धोते हैं, उसका पानी बाल्टी में एक जगह बटोरे देते हैं, सब पौधे में डाल देते हैं।
5: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, रोजमर्रा की आपने बात बताई, तो ऐसा आप खुद ही करती हैं या घर और बच्चों को भी इसी तरह से आपने ट्रेनिंग दी हुई है?
6: हम अकेले हैं, नहीं करते हैं, मेरे घर में कोई नहीं है।
5: अच्छा, आप अकेले करती हैं, तो ये तो बहुत सुंदर बात है। तो और जैसे नल वगैरह को खुला छोटा हुआ कभी आप देख लें कि कहीं आप गए हैं कार्यक्रम में,
6: जी,
5: तो तब आप क्या करती
6: हैं? लड़की है, एक लड़का लड़की अगर

0: बहुत डांटते थे, नल नहीं खोलने देते ज्यादा।
1: बहुत सुंदर। और खुद भी आप कभी ऐसा देखें तो नल बंद कर दिया करिए, है ना। अगर कभी देखें भी कि किसी की गलती हो भी गई है तो। बहुत सुंदर नीलिमा जी, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी।
0: पानी पानी के लिए बहुत वो होता है, क्योंकि किसी देश में पानी नहीं होता तो हम लोग पीते हैं, तो वो पानी ज्यादा खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
1: बहुत बहुत जी जी, बहुत अच्छी बात कही है।
0: पानी पीने का चाहिए और लोग को पानी मतलब पीने को, और देश में पानी नहीं ना, किसी देश में देखो पानी कम है, अगर हम लोग पानी खराब करेंगे तो कितना दुख होगा उन लोग को भी। तो
1: बहुत बहुत बहुत जागरूकता वाली बात कही, बहुत धन्यवाद नीलिमा जी। और देखिए इन्होंने कहा कि हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हम महिलाओं में ना, कि आज हमारे पास पानी है लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके जो पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे देश में ही देखिए राजस्थान वगैरह के इलाके हैं जहाँ पे पानी जो है कम रहता है, और हम लोग पढ़ते भी हैं कि बहुत महिलाएं वहां पे कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं। तो आप ये समझिए कि अगर हमें पानी दिया है तो ये ईश्वर की नेमत है। बहुत धन्यवाद आपको।
0: वगैरह नहीं रहती तो लोग नल पानी भरते हैं तो उनको तकलीफ होती है, नल चलाते हाथ उठता है। और अच्छे पानी बचाओगी तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा, कम खर्चा करो ज्यादा बेहतर होगा।
1: हाँ ठीक ठीक, धन्यवाद आपको। और बहनों हम लोग अभी इसी विषय पर बात करें, हम चाहेंगे हमारी बाकी बहनें भी अपने विचार हमें दें, जल संरक्षण में बहनों की भूमिका। और अब बहनों एक चीज पे मैं और बताना चाहूंगी कि अब तो पानी समितियां और जल सहेलियां बन रही हैं, मतलब सरकारी प्रयास जो जल जीवन मिशन है उसकी भी बागडोर अब महिलाओं के हाथ में है। हेलो हेलो, हम आज फिर से कहेंगे कि आज हमारा जो कार्यक्रम है वो खास महिलाओं के लिए है, तो हम अपने पुरुष साथियों से कहेंगे कि हमारे जो विशेष कार्यक्रम हमारे रेडियो स्टेशन सेट अयोध्या से आते हैं उनमें आप फोन करें। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: अदिति।
1: अदिति जी ने कॉल किया है। अदिति जी बहुत धन्यवाद आपका, कहाँ से फोन किया है?
2: मैं फैजाबाद से कॉल कर रही हूँ।
1: फैजाबाद से कॉल कर रही हैं, कहाँ से? फैजाबाद में कहाँ से कॉल कर रही हैं?
2: हम फैजाबाद में रामनगर।
1: रामनगर से, चलिए। तो अदिति जी आपकी आवाज भी बहुत स्पष्ट है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप बताएं कि जल संरक्षण में महिलाओं की क्या और क्या भूमिका हो सकती है?
2: मैम देखिए, पानी की बर्बादी रोकना, उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना और भविष्य के लिए जल स्रोतों को सुरक्षित रखना महिलाओं की बुद्धिमानी है। हम सिर्फ महिलाओं की नहीं बाकी लोगों का भी यही कर्तव्य है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही कि जल स्रोतों की भी रखरखाव करना, जैसे कहीं पर अगर कहीं कुआं है तालाब है तो वर्षा जल से उसका संरक्षण भी जो है,
2: ये लीकेज ठीक करे, टपकते हुए नलों और पाइपलाइनों की तुरंत मरम्मत करवाए।
1: हाँ देखिए इन्होंने एक नई बात बताई कि अगर कहीं पाइपलाइन में कहीं लीकेज है तो आप तुरंत उसकी मरम्मत करवाएं, क्योंकि वो बूंद बूंद जो पानी होता है ना वो बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करता है। और क्या बताना, और क्या बताना चाहेंगे अदिति जी, कोई और खास?
2: वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर बारिश के पानी को बह जाने से बचाएं।
1: बहुत बहुत देखिए इन्होंने और अच्छी बात कही, क्योंकि अब तो गर्मी के बाद पानी ही बरसात का मौसम रहेगा, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और अब अगर किसी को नहीं जानकारी है तो वो आजकल तो इंटरनेट है और विभिन्न स्रोत है जहाँ से सीख भी सकते हैं। तो अदिति जी आप स्वयं इस सबको मतलब फॉलो करती हैं, सबको आप खुद भी करती हैं?
2: मैं सब कुछ फॉलो बचपन से करती आ रही हूँ, स्कूल में पढ़ाया जाता था तब से।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अदिति जी। तो छोटी छोटी आदतों और बड़ी आदतों के बारे में देखिए बताया।
2: थैंक यू मैम।
1: थैंक यू अदिति जी आपको, और हमारी बाकी बहनें भी हमें कॉल करें। हम एक बार फिर से नंबर बता रहे हैं ताकि हमारी नई बहनें, हमारी नई कॉलर्स भी जब आती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। 7376804090। और बहनों हम बात कर रहे हैं आज जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, और जैसा हमारी सभी बहनें बता रही हैं। हेलो
3: हेलो मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: सपना सिंह बात कर रही हूँ, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अयोध्या।
1: सपना सिंह जी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अयोध्या, सपना जी आपका स्वागत है। और आप
3: थैंक यू मैम।
1: हाँ बताएं कि क्या कहना चाहेंगी, जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका क्या हो सकती है, कैसे करना चाहिए?
3: इसके लिए यही कहूंगी मैम कि महिलाओं की मुख्य भूमिका होती है, सर्वश्रेष्ठ भूमिका महिलाओं की है, क्योंकि शुरुआत जो मॉर्निंग की होती है वो महिलाओं से होती है काम करने की।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो कैसे आप घर में भी और बाहर भी क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी, कैसे हम पानी?
3: मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी मैम, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, हर किसी को प्यास लगती है, पर कुछ लोगों की आदत होती है कि जितना पानी पीना उतना नहीं लेंगे, उससे अधिक पानी ले लेते हैं। और थोड़ा सा पिया और फेंक दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें।
1: बहुत सुंदर बात कही। देखिए कितने जानवर या मनुष्य जो इस समय कई बार प्यासे रहते हैं, उनको पानी मिलता नहीं है, और अब तो देखिए पानी खरीद के पीना पड़ रहा है ना।
3: हाँ,
1: जब सफर में जाते हैं हम। हाँ। तो आपने सुंदर बात कही कि उतना ही पानी लें जो आपके मतलब आपको जितनी प्यास लगी हो। और क्या कहना चाहेंगी?
3: बस इतना ही कहूंगी मैम, जैसे हर घर में आरओ लगा हुआ है ना, हर जगह अब तो लगा रहता है, जो उसका वेस्ट फिल्टर वाटर जो टपकता रहता है
1: उसको भी रिसाइकल,
3: उसको टब में या बाल्टी में इकट्ठा कर ले, और उसे घर की धुलाई हो गई या गाड़ियों को धुलना है या गार्डन में डालना है तो उसको यूज कर सकते हैं।
1: बहुत सुंदर, आरओ से निकलने वाले पानी को रिसाइकिल हम करें, आपने बहुत अच्छी तरफ ये बताया हमें, बहुत धन्यवाद आप।
3: आपका भी शुक्रिया।
1: और देखिए, और इसके अलावा जो एसी से भी जो पानी निकलता है ना, कई बार टपकता रहता है, तो उसको भी हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, है ना, जिसके भी घर में लगा है। चलिए बहुत धन्यवाद, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारी जितनी भी बहनें आ रही हैं, हमें देखिए वो लोग खुद भी कर रही हैं, और इन बातों के माध्यम से ना हम लोगों को अंदर एक जागरूकता, अगर कोई चीज भूल भी जाते हैं तो वो भी हमें याद रहता है। धन्यवाद आपको। और हमारी जितनी भी बहनें आ रही हैं उन सभी से हम यही कहेंगे, क्योंकि देखिए गर्मी का समय है, हमें सब हमको बहुत ही ये समझना चाहिए कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं अगर हमें मन भर के पानी मिल रहा है, नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, क्योंकि वाकई ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ एक एक बाल्टी पानी गिनकर मतलब बहुत परिश्रम से मिलता है। तो जैसे कहा भी गया है कि आज हम जो करेंगे वही हमको मिलेगा, अगर आप इस पे विश्वास रखती हैं तो अवश्य पानी को बचाएं, क्योंकि तभी पानी आपको मिलेगा। तो अभी हम बहनों से, अभी लाइन खुली हुई है बहनों, यद्यपि हमारा समय आगे बढ़ता जा रहा है तो हमारा स्वागत है, अभी भी बहनें हमसे अगर कोई भी अपना विचार व्यक्त करना चाहें 7376804090। और देखिए बहनों, हमारे देश में कहा है ना, जो पानी होता है वो जब इकट्ठा होता है गर्मी में, ऊपर जाता है पहाड़ों पर इकट्ठा होता है, और फिर हमारे देश की जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो भी जल लाती हैं। तो हम उन नदियों को, इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है कि नदियों को हम लोग माता की तरह पूजते हैं, क्योंकि वो ऐसा पानी देती हैं जो हमें जीवन देता है। तो बहनों चलिए हम लोग भी एक प्यारा सा गीत भी एक सुन लेते हैं, गीत संगीत के साथ, और बहनों को जागरूकता रहते हैं।

0: बहनों, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आप भी पानी बचाएं, हम भी पानी बचाएं, और सबके पास ढेर सारा पानी रहे, और उस पानी की हम रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। बहनों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। किसी और दिन किसी विषय पर फिर से मिलेगी आपकी सहेली ऋचा। तब तक के लिए फिर से प्यार भरा नमस्कार।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
5: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
4: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
5: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
4: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
5: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
4: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। आइए आपको ले चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, जहां आपसे लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों को।
1: इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना, आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस, पायल, श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी मीत, शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाजों में इंदिवर के बोल।

प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पी जी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: ओह, डॉक्टर रामदास। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग बेनी। गुड मॉर्निंग।
2: कोविड तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं। अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
3: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
3: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी

0: थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ।
1: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है,
0: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
1: अच्छा,
0: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
1: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
2: नमस्ते डॉक्टर।
1: ओ नमस्ते,
0: कहाँ गई थी तुम?
2: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
0: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
1: मेरी पत्नी जो ठहरी उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
0: हम दोनों के लिए।
2: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
0: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
1: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ हूं, फिर मिलेंगे।
0: अच्छा,
2: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते, हम ऐसे हम वैसे?
0: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना?
2: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
0: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
2: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: देजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ, शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ठीक, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ, आओ ना।
1: बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ले जाओ बेनी, ले जाओ ना तुम। अरे, तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिरी ना से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
0: ठीक जी।
1: बेनी, एक बात बताओ।
0: पूछो।
1: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
0: बताऊं? दोनों।
1: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
0: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: कलाकार भी
0: हैं? कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
1: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना?
0: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
2: हाँ, मैं लॉरेंस हूँ।
0: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका लॉरेंस।
2: मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
0: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
2: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
0: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
2: यही कोई 14 या 15 साल।
0: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
2: Exactly.
0: गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
1: आप आ गए हैं। तो लगता है जैसे
2: सब वो बातें रहने दीजिए।

0: अब बेनी पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
1: चेस्ट में पेन है।
0: हाँ हाँ।
1: दिल की तरफ भी पेन है।
0: वैसे
1: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
2: ये ठीक से नहीं बताते।
0: हुँ?
2: बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
0: हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
2: जी,
0: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
2: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
1: डेजी मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
0: बेनी तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
1: हाँ हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
0: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो हाँ। खैर जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
1: ओके बाय।
2: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
1: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
2: अरे बाबा मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा, मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
1: अरे गिरिजा तुम
2: आप यहाँ?
1: हाँ मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ, सीने में और दिल में दर्द है।
2: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
1: जरा शिष्टता से बात करो।
2: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
1: जरा आहिस्ता बोलो।
2: मुझे पहचान लिया आपने?
1: हाँ पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
2: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
1: तुम ऐसा सोचती हो?
2: सोचती नहीं बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
1: हाँ ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
2: हाँ आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी।
1: है?
2: इसका दर गिर तो नहीं गई हूँ?
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
2: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
1: क्या?
2: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
1: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
2: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे। टेरर?
1: मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है।
2: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
1: तमीज से बात करो, मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
2: अच्छा 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
1: देखो मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
2: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
1: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
2: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
3: मुझे कुछ नहीं कहना है।
1: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
3: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
1: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था, तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने

0: मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो यह मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
1: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
0: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
1: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
0: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
1: अच्छा।
0: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
1: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
0: कितने रुपए खर्च हुए?
1: करीब 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
0: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था, चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
0: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसीलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
1: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
0: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
2: गिरिजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
3: वो बेनी कहाँ है?
2: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
3: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
2: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
3: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल में गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
4: डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
3: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
4: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
3: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
4: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
3: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो, बेनी इस समय आ गए तो ये सब देख कर दुखी हो जाएंगे। अरे लो बेनी आ रहे हैं।
5: आइए आइए, कहाँ पे जाना?
6: ओ डॉक्टर
5: भाई, जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या है?
0: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
5: मेरी रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
0: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
5: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
0: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
5: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब। सी यू अगेन, बाय।
2: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
0: तुम्हारे लिए एक चीज है।
2: अच्छा, देखो तो।
0: लो

0: देख लो
1: साड़ी, ये अब काहे को, और यहाँ
0: मेरी ओर से प्रेजेंट।
1: प्रेजेंट?
0: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
1: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
0: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है। तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था। तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
1: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
0: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझ हो। तुम अगर ऐसे ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो, अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना। अच्छा, तो फिर हंस दो। देखो, ये ऐसे ऐसे।
1: अरे, क्या क्या हुआ आपको? बेनी, कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा। लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। साहस सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से धर गया।
2: Oh, no.
1: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
2: आखिर ये हुआ कैसे?
1: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। पांच बाद मुझे होश आया। मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे, मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
3: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
1: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
3: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
1: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।

ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे पेड़ी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करें।

0: तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
1: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। हर एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस विवाह सूत्र में बंध गए।
2: अच्छा?
1: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
3: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
4: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
5: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
4: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
6: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
4: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
6: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
4: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
7: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
8: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
7: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
9: थी धन्य जवानी जो शहीद।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम भरा
1: इनसे बातचीत कर रही है विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष है जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओ चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी,
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी।
0: हाँ।
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो विर्ज खिलाई, अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही
1: कर रही हैं
0: और गुंजा
1: करती रहूंगी।
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी। और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
0: अच्छा।
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी,
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ

0: नहीं आया शुरू में, तो जब शूटिंग खत्म हो गई मैंने कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई
1: अच्छा
0: आपने, तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
1: जी।
0: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
1: जी,
0: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
1: अरे वाह।
0: हाँ,
1: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी, आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी।
0: हाँ,
1: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
0: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
1: अच्छा।
0: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
1: जी,
0: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को। और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
1: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि हाँ, साधना गाओ। लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
0: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए।
1: क्या है ना।
0: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उस समय आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
1: उतनी बुलंद आवाज।
0: हाँ, बुलंद आवाज थी
1: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य अभिनय बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए हों।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा,
1: अब अफसोस की बात ये कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत तो दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की हैं उस जोगीरा में, हमने देखा
1: जोगीरा में मार खा के की हूं।
0: वो किस्सा भी जरा बता दे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था, मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में, एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते
0: लाठी के भूत,
1: लाठी के भूत। मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी।
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया,
1: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। मैं नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो हमें वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ।
0: हाँ,
1: तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा,
1: हाँ ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर। कैमरे की तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
0: अच्छा,
1: तो 2-3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है।
0: हाँ,
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती है। तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया
0: जी,
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए। तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया, कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने।

0: नहीं या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है. और माँ बाप साथ में नहीं होते फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
1: जी. तो थोड़ा सा खुद को परख के आए ऐसा आपका कहना है. हाँ. और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है. ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी. इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ.
0: हाँ,
1: एक
0: तो
1: ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है. तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना.
1: हाँ,
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
1: जी,
0: है ना. हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
1: जी.
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता. नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
1: जी,
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव, कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं
1: जी.
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है.
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है.
0: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ. ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ.
1: हाँ, जी जी. हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं. तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं.
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ.
1: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए.
0: अच्छा, ऐसा
1: जी. तो कोई गीत बता दीजिए जो
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं. तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं.
1: वो उसका संगीत कितना
0: खूबसूरत और जी, बहुत जी, मीठा संगीत है.
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं खूबसूरत सा नगमा.
2: कुछ दिल ने

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में। वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं, जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी
0: जी।
1: तो वो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी, और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है
0: जी, जी जी।
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में, और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी।
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा
0: जी, जी।
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नई
1: प्रोडक्शन में
0: जी, जी।
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है।
0: हाँ।
1: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
0: अच्छा।
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
0: जी।
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत
0: आदतन अनुसार आप लड़कियों से घिरी रहती थी।
1: हाँ, तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
0: जी।
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे।
0: हाँ। नहीं वैसे आप बहुत हॉट है। हाँ। शॉल की जरूरत। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद जी।
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
0: जी,
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकराभरणम फिल्म आई थी
0: जी,
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकराभरणम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
0: जी,
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
0: नीचे का जी।
1: लेकिन वो ले गए
0: जी
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म में उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना इस एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइक ही तो नहीं लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी लेकिन
0: बहुत प्यारी है।
1: हाँ, वो
0: बहुत अच्छी फिल्म जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी।
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो बाइयां आती थी उन सबसे तो
0: मतलब वो चाट और लस्सी खाते पीते
1: हाँ। क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
0: अच्छा।
1: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार खड़े हैं और
1: तो हमारे पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा।
1: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
0: जी,
1: हाँ ये काफी फर्क है
0: जी।
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है। हाँ। अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या।
0: अच्छा,
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, मुंजा को कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, वो गीत हम सुनाना चाहेंगे।
1: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते हैं
0: जी,
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी
0: जी।
1: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था चंदन चंदन ऐसा
0: बहुत,
1: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
0: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
1: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
0: रविंद्र जैन वहां पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा। कैसा कैसा एम्बियंस था?

0: कैसा लग रहा था सुनते
1: बहुत समय? अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप
0: जी बहुत खूबसूरत गीत है
1: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था। और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
0: जी।
1: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
0: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो।
1: बट जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे।
1: भैया मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था। उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने
1: में, और सुना रहे थे ये पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी माय गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख लेते थे
1: एक सेकंड में।
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 32 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार,
1: दादा कह रहे नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो उनसे
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए, जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता।
0: ये रविंद्र जी
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे, और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
0: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता होगा।
1: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है।
0: अच्छा,
1: तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई। अल्लड़पन कहते ना,
0: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई।
1: ये बात है, मैं दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते?
1: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला कि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, कि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अब शूटिंग भी करेगी। तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
0: अच्छा,
1: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो।
0: अरे वाह,
1: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
0: तो यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों चीज।
1: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
0: जी,
1: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहे
0: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है।

0: तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय की जगत में है?
1: नहीं नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है।
0: अच्छा,
1: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
0: जी।
1: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की है
0: जी।
1: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
0: जी,
1: अनुपम जी ने,
0: बहुत बढ़िया।
1: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
0: हाँ, तो उस समय वो चल,
1: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
0: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
1: नहीं, मैं कर

0: को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है.
1: हाँ.
0: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं. हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां हाँ. करती थी. सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको. आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया.
1: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है.
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए. नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी. अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है. तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद.
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद.
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत.

अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। हमारे युवा दोस्त प्रतीक्षा कर रहे होंगे अपने कार्यक्रम युवाड़ी का, तो आइए सुनते हैं आप ही का कार्यक्रम युवाड़ी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
4: आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपकी दोस्त मंजली सिंह लेकर आ चुकी है आपका पसंदीदा कार्यक्रम।

वाणी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज के कार्यक्रम में क्या कुछ है खास। आज चर्चा होगी गोवा राज्य स्थापना दिवस की, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की, और उसके बाद हमारी धरोहर सेगमेंट में है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। साथ ही है एक वार्ता जिसका विषय है युवाओं के लिए स्वस्थ जीवन शैली, जिसमें वार्ताकार है साक्षी दुबे, और आज के आर्थिक जगत में है मानव विकास सूचकांक। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा। दोस्तों जब भी मैं ना गोवा की बात सुनती हूँ तो मुझे याद आते हैं बीचेस, समुंदर और दोस्तों के साथ कैंसिल हुए प्लान्स। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो घूमने फिरने की नहीं है। आज है 30 मई यानी कि गोवा राज्य स्थापना दिवस। जी हाँ, आज ही के दिन 1987 में गोवा को भारत के 25वें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले गोवा और दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश थे। दोस्तों गोवा सिर्फ अपने बीचेस के लिए नहीं जाना जाता बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति, कोंकणी भाषा, संगीत, कार्निवल्स, चर्चेस और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। अच्छा, गोवा के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो सभी राज्य भी आजाद हो गए, पर ऐसा नहीं था। अंग्रेज तो चले गए लेकिन पुर्तगाली, जिनका शासन गोवा में था, वो भारत छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। साल 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा को पुर्तगालियों के 450 साल के राज से आजाद कराया। फिर आया वो ऐतिहासिक पल जो था गोवा लिबरेशन डे, 19 दिसंबर 1961 को, जब गोवा को आजादी मिली। इसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को मिला एक पूर्ण राज्य का दर्जा और गोवा बन गया भारत का 25वां पूर्ण राज्य। दोस्तों आज का दिन हमें याद दिलाता है कि विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। गोवा राज्य छोटा सा है लेकिन संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा और सौहार्द में बेहद विशाल मायने रखता है। दोस्तों यहाँ के बीचेस जैसे बागा, अंजुना सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि जिंदगी का जश्न है। यहाँ की संस्कृति जहाँ कोंकणी, मराठी और पुर्तगाली का प्रभाव अच्छे से देखने को मिलता है। और जब बात हो यहाँ के त्योहारों की तो गोवा कार्निवल्स में गोवा के रंगों, नृत्यों और संगीत की तो बौछार रहती है। तो दोस्तों आज गोवा राज्य की जो स्थापना दिवस पे, इस पे हम सिर्फ जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि जो भारत की विविधता में एकता है इसकी भावना को भी मना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ खत्म हुई हमारी चर्चा गोवा राज्य स्थापना दिवस की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी अगले चर्चा की। दोस्तों वैसे एक बात बताइए, फिल्म में अगर शाहरुख खान ना हो तो भी फिल्म चल जाती है, क्रिकेट में अगर धोनी ना खेले तो भी मैच हो जाते हैं, पर हमारी रसोई में वो कौन सा सुपरस्टार है जिसके बिना हर सब्जी अधूरी है, जो समोसे का दिल है, वड़ा पाव की जान है और फ्रेंच फ्राइज की शान है, तो बताइए वो कौन है श्रीमान? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, हम बात कर रहे हैं सब्जियों के राजा आलू की। और आज है 30 मई। 30 मई के दिन दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस यानी इंटरनेशनल पोटैटो डे। वैसे दोस्तों आलू की एक खूबी तो बहुत अच्छी है, ये हमें उससे सीखनी भी चाहिए, और वो है कि ये बहुत एडजस्टिंग है, हर जगह एकदम फिट इन हो जाता है। गोभी के साथ बना तो आलू गोभी, मटर के साथ बना तो आलू मटर, और कुछ नहीं रहा और अकेले ही रहा तो बन गया दम आलू या फ्रेंच फ्राइज। काश दोस्तों हम लोग भी ना इतने एडजस्टिंग हो जाते तो मजा आ जाता। वैसे दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आलू सिर्फ एक सब्जी नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। और आपको पता है आलू पैदाइशी हिंदुस्तानी भी नहीं है, इसका असली घर एंडीज माउंटेन पर है जहाँ हजारों साल पहले इसे उगाया गया और फिर धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया और करीब 400-500 साल पहले पुर्तगाली इसे भारत लेके आए। और आज भारत, चीन, रूस ऐसे देश बड़े उत्पादक हैं आलू के। साथ ही भारत में तो आलू के बिना हमारी रसोई अधूरी ही मानी जाती है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आलू दुनिया की पहली ऐसी सब्जी भी है जिसे स्पेस में उगाया गया। साल 1995 में नासा ने अंतरिक्ष में इसे उगाया। दोस्तों आलू सिर्फ स्वाद ही नहीं देता बल्कि विटामिन सी, पोटेशियम और ऊर्जा भी भरपूर रूप से देता है, और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन ने भी इस खास दिन को मनाने की शुरुआत की ताकि दुनिया को खाद्य सुरक्षा और पोषण के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। तो दोस्तों आज के दिन आपको करना है एक काम,
अपनी फेवरेट आलू की डिश तो जरूर बनानी है। तो दोस्तों यहाँ खत्म हुआ हमारा चर्चा सेगमेंट, तो चलिए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे

और बात कर लेते हैं सेगमेंट हमारी धरोहर की, जहां आज हम बात करने वाले हैं गोवा के चर्चेस और कॉन्वेंट की। तो दोस्तों, गोवा की सिटी लाइफ, बीचेस, पार्टीज, इनके अलावा एक शांत सदियों पुराना चेहरा भी है। और हम बात कर रहे हैं ओल्ड गोवा के उन ऐतिहासिक चर्च और कॉन्वेंट की, जो आज भी इतिहास की गवाही देते खड़े हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये वो धरोहर हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये धरोहर हमें 16वीं और 17वीं सदी के उस दौर में ले जाती हैं जब पुर्तगाली भारत आए और उन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया, और साथ ही यहाँ यूरोपीय वास्तुकला का अद्भुत विकास हुआ। चलिए बात कर लेते हैं इनमें से सबसे मशहूर जगह की, और ये सबसे मशहूर जगह है बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। ये चर्च बरोक वास्तुकला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, और यहाँ की सबसे खास बात है यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। ये दुनिया भर में अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसके ठीक सामने है से कैथेड्रल, जो एशिया की सबसे बड़ी चर्च में से एक है। इसकी गोल्डन बेल यानी सोने की घंटी की आवाज इतनी बुलंद है कि कभी इसकी आवाज पूरी गोवा को सुनाई देती थी। इन चर्चेस की दीवार पर की गई नक्काशी और पेंटिंग्स पुर्तगाली और भारतीय कला का एक अनूठा संगम है। अगले की बात करते हैं, और ये है चर्च ऑफ सेंट एगस्टाइन, जिसे द ब्रोकन टावर भी कहा जाता है। इसे 1602 में अगस्टीनियन फेरियर्स ने बनवाया था। ये कभी गोवा की सबसे भव्य चर्चों में से एक था, जिसमें 8 भव्य चैपल और एक विशाल कॉन्वेंट था। 1835 में इसका 46 मीटर ऊंचा हिस्सा ढह गया, इसीलिए अब ये ब्रोकन टावर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसिस।

0: कर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर मुस्कान असली नहीं होती है। अपने असली जिंदगी को महत्व दीजिए, परिवार के साथ बैठिए, दोस्तों से बात कीजिए, किताबें पढ़िए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करिए। मोबाइल को अपनी जरूरत बनाइए, अपनी जिंदगी नहीं। मानसिक स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो जीवन की कोई भी खुशी अच्छी नहीं लगेगी और ना ही हमारा किसी काम में मन लगेगा। आज कई युवा तनाव, चिंता और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस डर से चुप रहते हैं। मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है। अगर कभी मन परेशान हो तो अपने माता पिता से बात कीजिए, दोस्तों से दिल की बात साझा करिए, संगीत सुनिए, योग करिए या फिर ध्यान लगाइए। सकारात्मक सोच रखने से हमेशा खुद में मजबूती मिलती है और अपने आप से ये कहिए कि मैं मजबूत हूँ, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। नशे से दूरी बनाइए, जीवन से दोस्ती बढ़ाइए। आज कई युवा सिर्फ दिखावे या दोस्तों के दबाव में नशे की ओर बढ़ रहे हैं। सिगरेट, शराब, तंबाकू और ड्रग्स कुछ समय का झूठा आनंद तो दे देते हैं, लेकिन जिंदगी भर का दर्द भी देते हैं। नशा शरीर को कमजोर करता है, दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, परिवार और करियर दोनों को बर्बाद कर देता है। नशा छोड़ो, सपनों से रिश्ता जोड़ो। हमें समय का महत्व समझना चाहिए। जो युवा समय की कीमत समझते हैं वह जीवन में आगे बढ़ते हैं। सुबह जल्दी उठना, दिनचर्या बनाना, समय पर पढ़ाई करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, यही सफलता की पहचान है। समय कभी रुकता नहीं, इसीलिए सही समय पर सही कदम उठाइए। सकारात्मक सोच रखिए, आत्मविश्वास मजबूत करिए। जीवन के मुश्किलें सबके सामने आती हैं, लेकिन हार वही मानता है जो खुद पर विश्वास खो देता है। खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही खास हैं। खुद पर विश्वास रखिए, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। थोड़ा चलना, थोड़ा हंसना जीवन को आसान बनाता है। अच्छा खाना, योग अपनाना हर दिन में नई ऊर्जा लाता है। छोड़ के आलस, छोड़ के डर, आगे बढ़ना तुम सीखो। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन से अपना भविष्य लिखो तुम। स्वस्थ जीवन शैली कोई बोझ नहीं, बल्कि खुद से किया गया सबसे सुंदर वादा है। अगर युवा आज से ही अच्छा भोजन, नियमित व्यायाम, सकारात्मक सोच, अच्छी नींद और नशे से दूरी बना लें तो वे न केवल सफल बनेंगे बल्कि खुशहाल जीवन जी पाएंगे। स्वस्थ युवा ही मजबूत राष्ट्र की पहचान है।
1: दोस्तों, अभी हमने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था युवा के लिए स्वस्थ जीवन शैली, जिसमें वार्ताकार थी साक्षी दुबे। दोस्तों, अब वक्त हो चला है कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
3: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
4: सुनिए,
5: कहिए, कहिए,
4: सुनिए।
6: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया।

0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

0: हमारे युवा दोस्त सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युव वाणी। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम का पहला गीत बलराम यादव और साथियों की आवाज में एक सोहर।

जन जन तक आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या धारा रोड बेगमगंज गढ़ैया अयोध्या सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।

0: इसी लोक गीत के साथ ही हमारा आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 9161877347।
0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का बुलेटिन पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि

0: online to India in his current capacity. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Narendra Modi on Monday on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. He will also participate in a business forum. The Congress Legislature Party meeting is in progress at Karnataka Vidhan Sabha to elect their new leader after Siddaramaiah submitted his resignation to Governor Thavarchand Gehlot 2 days ago. The Congress Party has informed that AICC General Secretary Randeep Singh Surjewala will brief media persons after the meeting. Our correspondent reports that earlier in the day, D.K. Shivakumar met the governor twice and is likely to meet the governor again after he is elected as the CLP leader. The swearing-in date will be fixed thereafter. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh today launched the AI-enabled CP Gram's voice chatbot Samadhan Didi in New Delhi. Developed by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances in collaboration with Bhashini, Samadhan Didi is a voice-based multilingual grievance registration assistant with intelligent AI-based categorization that helps citizens to register public grievances through an interactive conversational interface. Electronic and IT Minister Ashwini Vaishnav today visited Loham in Surajpur and Greater Noida, which is producing sustainable critical minerals and advanced materials. Speaking to media, Mr. Vaishnav said lithium batteries and permanent magnets play a crucial role in several modern technologies, and Prime Minister Narendra Modi envisions that this should be manufactured in India and its technology should be developed domestically. Lieutenant General N.S. Raja Subramani will succeed Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, who bade farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. He also laid a wreath at the War Memorial. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvic Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the finals of the Singapore Open tournament. The Indian pair defeated world number one South Korea's duo Seo Seung-jae and Kim Won-ho 21-19-21-18 in the semi-final today. In the mixed doubles, India's Dhruv Kapila and Tanisha Krasto lost to Japan's Sayaka Hobara and Yuichi Shimogami 16-21-21-17-13-21 in the semi-final today. Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandavia and Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma today inaugurated the Integrated Hospitality and Sports Complex at JN Sports Complex in Polo, Shillong. And with that, we end this news bulletin.
1: समाचारों का बुलेटिन हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी।
2: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कंप्लीट हैं।
3: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें। गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध न करें।
2: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल न करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुनें।
3: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
2: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंकें, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
3: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
2: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
1: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम शाम सुहानी में आप सभी का स्वागत करता है आपका दोस्त गिरिजेश निषाद। कितनी आवाजें हैं, लोग हैं, बातें हैं, मगर जहन के पीछे किसी और ही सतह पे कहीं जैसे चुपचाप बरसता है तसव्वुर तेरा।

दोस्तों आपने सुना फिल्म सीकर के मायने में लता मंगेशकर को अगला और इस गाने को हमने सुनवाया फिल्म नसीब से कुमार सानू की आवाज में। और इसी के साथ हमारा आज का फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में समाचारों का बुलेटिन संस्कृत में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

0: परिकल्पनायाः अनुरूपं लोहं नामकेन समवायेन सफलतापूर्वकं जटिल प्रौद्योगिकी विकसिता।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: म्यांमारस्य राष्ट्रपति मिन आंग लाइंग इत्यसौ अद्य पञ्चदिवसीय भारत यात्रायै बिहारस्य गयां सम्प्राप्तः। तेन बोधगया स्थितस्य विश्व प्रसिद्धस्य महाबोधि मन्दिरस्य दर्शनं विहितम्। राष्ट्रपतिना तत्र बोधि वृक्षस्य अधः प्रार्थना अपि कृता। अत्रावसरे म्यांमारस्य राष्ट्रपतिना बकराउर स्थिते ऐतिहासिके सुजाता मन्दिरे शिरं नत्वा बोधगया स्थितस्य बर्मी मठस्य यात्रा कृता। राष्ट्रपतिना सह वरिष्ठाधिकारिणः, बौद्ध प्रतिनिधयः, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अपि अवर्तत। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् वायुमंडलीय परिस्थितिभिः अनुमीयते यत् दक्षिण पश्चिम प्राविट आगामिषु चतुष्पञ्च दिनेषु केरलस्य तमिलनाडोः च कतिपय भागेषु आगमिष्यति। अरब सागरे बंगाल खात्यां, लक्षद्वीपे कन्याकुमार्यां च प्राविट अग्रे समेधते। ऋतुविज्ञान विभागेन केरलस्य अष्टजनपदेषु अद्य प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं विधाय पीतवर्ण संचेतना प्रसारिता। ऋतोः प्रतिकूलता कारणेन जून मासस्य तृतीय दिनं यावत् मत्स्यजीविनः केरल लक्षद्वीप तटयोः समुद्रे उद्यमं न कुर्वन्तु इति परामर्शः अपि प्रदत्तः। सेनाप्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी अवोचत् यत् भारतीय सशस्त्र बलानि उच्चस्तरीय सतर्कतायां विद्यन्ते। आवश्यकता विद्यते सति ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इति सिंदूराभियानस्य द्वितीय चरणाय सन्नद्धानि सैन्यबलानि वर्तन्ते। पुणे नगरस्य खडकवासला स्थितायां राष्ट्रीय रक्षा अकादम्यां स्नातकान् सार्धैकशततमस्य दलस्य पासिंग आउट परेड इति प्रयाणं संबोधयता जनरल द्विवेदिना उक्तं यत् सिन्दूराभियाने दृढसंकल्पेन प्रत्युत्तर प्रदानस्य क्षमता प्रदर्शिता। तेनोक्तं यत् एतत् अभियानम् इदानीम् अपि सन्ततं प्रवर्तते। जनरल उवेदी अवोचत् यत् सिन्दूराभियाने भारतीय सैन्यबलानां मध्ये तारतम्यम् अवलोकितम्। सममेव वयं भविष्यकालाय आत्मानं सन्नद्धं कुर्महे। सेनाप्रमुखेण स्नातकाः व्यावसायिकनेतृत्वस्य, राष्ट्रसेवायाः च सर्वोच्चमानकान् यथावत् प्रवर्तितुम् आकारिताः।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनैः साकं स्वविचारान् प्रकटयिष्यति। कार्यक्रमोऽयं मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य 34th प्रभागः वर्तते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः अन्तर्जालीय पटले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालीय वेबफलकं समेत्य न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप इति तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। प्रमुखः रक्षाध्यक्षः जनरल अनिल चौहानः अद्य नवदिल्लीस्थे राष्ट्रिय समर स्मारके सैन्यत्रयेण प्रदत्तेन गॉड ऑफ ऑनर इति सम्मानेन सह सैन्यसेवाभ्यः निवृत्तिं स्व्यकरोत्। अयं समारोहः देशस्य सर्वोच्च सैन्याधिकारी रूपेण तदीय विशिष्ट कार्यकालस्य समापनस्य प्रतीकः अवर्तत। समर स्मारकी पुष्पांजलि समर्प्य जनरल चौहानेन उक्तम यत् सैन्यत्रयस्य गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानेन सह सेवानिवृत्ति ही तस्मै अत्यंत

0: सम्मानप्रदं वर्तते। जनरल चौहानः गतशताब्दस्य एकाशीतितमे वर्षे भारतीयसेनायां सेवाम् अवाप्य चत्वारिंशदधिकवर्षेषु देशसेवायां महत्वपूर्णपदेषु कार्यम् अकरोत्। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यः जनरल अनिल चौहानस्य स्थानं स्वीकरिष्यति। अमेरिकायाः रक्षामन्त्री पीट हेग्सेथ इत्यसौ अवोचत् यत् यदि संधेः प्रयासाः विफलाः भविष्यन्ति चेत् अमेरिकायाः सेना ईरानं विरुध्य सैन्यकार्याचरणं विधातुं पूर्णरूपेण सन्नद्धा वर्तते। अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू अद्य सूचितवान् यत् प्रथमवारं भारतीय हज मिशन संस्थया हज समन्वयस्य संचारस्य च उत्कृष्टतायै सऊदी हज उमराह मंत्रालययोः प्रतिष्ठितौ लाबाट्यूम पुरस्कारो प्राप्तौ। सामाजिक संचार माध्यमेन श्री रिजिजू अकथयत् यत् 26,000 हज यात्रायाः मुख्य चरणस्य सफलता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयस्य भारतीय हज समित्याः सऊदी अरब देशे भारतीय राजदूतस्य नेतृत्वे भारतीय हज मिशन इत्यस्य जेद्दाह नगरस्य महाव्यवस्थापकस्य च मध्ये अविच्छिन्न समन्वयं प्रतिबिम्बयति। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी चिराग सेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपांत्य चक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडायां अद्य भारत इंग्लैंड दलयोः द्वितीया 20-प्रति-20 स्पर्धा भविष्यति। इयं स्पर्धा ब्रिस्टल नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण सायं 7 स्पर्धा आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: समाचारों का बुलेटिन संस्कृत में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596-2442-04 और 7800-37-2222।
1: कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, एक बधाई गीत सूरज नारायण लाल और साथियों की आवाज।

0: सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: आइए सुनते हैं एक श्रम गीत अवधराज मौर्य और साथियों की आवाज में।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आइए सुनते हैं एक देवी गीत, विमला कठेरिया और सखियों की आवाज।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजी स्वर गांव के। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: पंचो जय हिंद।
7: ओम भैया।
6: हाँ मनोज भैया, का हालचाल है?
7: हालचाल भैया बढ़िया है। और सब मिला के एक चीज अगर कही जाए ना कि अपने आसो पास अगर सब कुछ बढ़िया रहे तो हमें लागत है वो ज्यादा निक लागत है। और बात हम यानी इशारा हमारे पर्यावरण संरक्षण के उपाय की तरफ है।
6: भाई देखो, पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। आवाज पर्यावरण के ही ये प्रभाव है कि गर्मी परत रही है। देखो कितनी तेज गर्मी वहीं तक हुआ है। अब यहाँ 2 रोज का छोड़ दो 3 दिन के कि मौसम कुछ ठीक है।
7: हाँ।
6: लेकिन यही मौसम में देखो कितना उथल पथल है। कहूँ बहुत तेज आंधी आ रही है तो कहूँ बहुत तेज पाथर गिरे लागत है कबों का, और फिर गर्मी हुए लागत है।
7: बिल्कुल।
6: और देखो तापमान बढ़ते या हर साल अपन नवे रिकॉर्ड बनावट जाते है।
7: बिल्कुल सही कहो भैया। ये लिए पंचो अपने सब कहूं न कहूं कोनो हद तक कुछ यश करते ही जोने की वजह से ई जो तापक्रम है साल दर साल बढ़त चला जाता है। का ये सपने सबका करे के आवश्यकता

0: है जो उन्हें से आवे वाली पीढ़ी और अपने सब खुद सुरक्षित रही और संरक्षित रही एकरे बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाव जरूरी है, सोचब जरूरी है। पर्यावरण के दुई शब्द से मिलके बना है, परिधन आवरण, यानी ये कई मतलब हुआ था अपने आसपास जौन कुछ अपनी जिंदगी का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रभावित करत है वो पर्यावरण है। अब वहां गर्मी सर्दी पेड़ पौधा और पशु पक्षी सब जितना है वो प्रभावित करत है कौन कौन हद तक।
1: और पेड़ पौधा की बात क्यों ना, पेड़ पौधा पशु पक्षी हमें सबका बचाव की जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: और पेड़ पौधा हमें ज्यादा से ज्यादा लगावे की जरूरत है। भाई देखो आज जब घाम निकलत है तो पेड़ के नीचे जाके राहत मिलत है,
0: राहत मिलत है। और जौन प्राकृतिक वातावरण पेड़ के नीचे जौन शांति मिलत है ओम भैया ना, वो शांति अपने पंखा के नीचे तो हमें कभी ना मिली,
1: कभी नहीं मिलत है।
0: हाँ।
1: दूसरी चीज और हम बताइए कि हर क्यों देखो सबके यहाँ पता है एसी लागी जाते हैं।
0: हाँ।
1: जिके यहाँ एक ठू मोटरसाइकिल चाहिए कि यहाँ तीन ठू मोटरसाइकिल होगी, सबके घरे चार चक्का हो जाते हैं। और एक अलावा हम अपने खेतों में देखो कितना दवाई खाद और खरपतवार नाशी डारत जा रहा है, ये मृदा प्रदूषण तो हो रहा है।
0: हाँ, यानी देखो पंचो सोचे जरूरत यह है कि छोट की दूरी अपने सबका 100 मीटर जाए का है, लेकिन गाड़ी से जाब चार पहिया गाड़ी से जाब पैदल ना चल सके, वो न केवल अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि व्यापक रूप से अगर सोचा जाए तो हर क्यों गेद गेदहरा के जो स्वास्थ्य है वो का प्रभावित करता है, वो का नुकसान पहुंचा होता है। और हम सभी इस दिशा में जाता है जहां एक स्थिति ऐसा आई जाए जब यही पूरे पर्यावरण का अपने सब असहाय स्थिति में देखब और कुछ न कह पाओ।
1: और देखो एक जितना प्रभाव है कि तरह तरह के बीमारी होन जाते है,
0: वो है भाई
1: है ना।
0: हाँ।
1: हम यूं तक नहीं सोची थे, चाहे अपने खाए खातिर हुए सब्जी बोई थे, सब्जी में लोग बगैर रसायन डारे किरौना तनी भी कहूं देखा नहीं कि रसायन डाल,
0: बिल्कुल
1: वह का हम देसी तरीका से भी ठीक कह सके थे। और जब हम कम से कम थोड़े थोड़े आगे हम बढ़ाई और देसी तरीके से प्राकृतिक खेती कह के हम आगे अपने खेती का बढ़ा सके थे और अपने खाए स्वास्थ्य के लिए और लोगन के स्वास्थ्य की चिंता कर सके थे।
0: बिल्कुल। तो भैया उम्मीद करी थे कि आप सभी प्राकृतिक खेती की तरफ अपन तैयारी करवो इशारा करवो, लेकिन एक आवश्यक वक्त ही अपने बीच में है खरीफ में सब्जी उत्पादन हेतु तैयारी, एकरे बारे में बताओ थे अपने डॉक्टर आशीष कुमार सिंह भैया, इनसे बातचीत करता है आलोक कुमार गुप्ता भैया। तो आओ यह जानकारी के ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए।
2: पंचों जैसन अभी आप सुनिन अपने सबके बीच में डॉक्टर आशीष कुमार सिंह भैया आवा हैं, आप सहायक प्राध्यापक सब्जी विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर भैया आपके स्वागत करी थे अपने पंचायती में, खरीफ के सब्जी के उन्नत खेती और प्रबंधन विषय पर आज अपने पंचन के साथ बतकही होए के, तो सबसे पहले बतावत चले कि खरीफ फसल के लिए कौन मेर के सुझाव के जरूरत है अपने पंचन का।
3: खरीफ फसलें यानी कि सबसे पहले अगर हम खरीफ फसलों में बात करेंगे तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको हम बुआई के लिए खरीफ फसल में प्रयुक्त करें। तो सबसे पहले हम जब भी चयन करते हैं सब्जियों का उसके लिए हमें पहले बाजार में जाना होता है और देखना होता है कि किसकी मांग सबसे ज्यादा है, उस हिसाब से किसानों को फसल का चुनाव करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी है वो किस रंग की है, क्या उसमें उपयुक्त पदार्थ हैं, उसकी भी हमें जांच करके ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि हमें जिन सब्जियों को लेना है, जिनकी बुआई करनी है, जिनको हमें उत्पादन लेना है, उसमें हमारी मिट्टी की दशा क्या है। तो अगर हम फल वाली सब्जियों की बात करेंगे तो इसमें टमाटर बैंगन भिंडी करेला लौकी नेनुआ तुरई खीरा आदि सब्जियां सम्मिलित हैं। और पत्तेदार सब्जियों में हम खरीफ सीजन में चौलाई लगाते हैं, और वहीं कंद वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें शकरकंद है, कशावा है, कोलोकेसिया है और सूरन, इसका हम उपयोग कर सकते हैं।
2: लेकिन चयन हो गए तो ओके बुआई के स्थिति का भी जानना जरूरी है,
3: यानी कि समय जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है उसी समय को हम सेलेक्ट करते हैं, खास करके खरीफ सीजन की मानसून आने के पहले ही। और हम ज्यादा देर बुआई नहीं करेंगे, अगर हम ज्यादा देरी करते हैं बुआई में तो हमारी जो उत्पादन क्षमता है सब्जियों की वो प्रतिदिन गिरती जाती है,
2: माने कि अपने सबका समय से बुआई कर देख है, जो ना आप बतायो कि मानसून के जो शुरुआत हो वही के साथ बुआई
3: करना चाहिए
2: है ना, और उन्नत

0: के प्रयोग कैसे कहीं जाए उमन।
1: किसी भी प्रमाणित संस्था से बीज का चयन करना चाहिए, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या कोई संस्था हो जहां से हमको बीज जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें किसान भाई विशेष सावधानी रखें, खास करके अगर हम बीज का चयन ब्रीडर सीड करते हैं तो वहां पे टैग जरूर देखें, और इसके टैग का कलर होता है गोल्डन येलो। फाउंडेशन सीड अगर हम बुआई के लिए यूज करते हैं तो उसका जो टैग का कलर होता है वो व्हाइट कलर में होता है, तो इसके बेसिस पे हम सीड का चयन कर सकते हैं। और जो किसानों को उपलब्ध होता है बीज वो है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड का जो कलर होता है वो एज्योर ब्लू कलर का होता है, और साथ ही साथ ओपल ग्रीन कलर होता है। जो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होते हैं उसके बेसिस यानी कि कलर के बेसिस पे हम सीड का चयन कर सकते हैं कि ये हमारी प्रमाणित संस्था द्वारा संस्तुत है।
0: खेत के तैयारी की भी स्थिति का जानना जरूरी है।
1: खेत की तैयारी की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि खरीफ सीजन में हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम मिट्टी की प्रॉपर जुताई कर देना चाहिए। अभी का जो टेम्परेचर है वो सबसे उपयुक्त है। अगर इसमें हम गहरी जुताई कर देते हैं तो जो मिट्टी में उपलब्ध हमारे हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही मानसून स्टार्ट हो जाए फिर हमको 2-3 बार कल्टीवेटर चला करके मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी बना लेनी चाहिए।
0: उर्वरक भी प्रबंधन करना बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: है ना,
1: हम मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए जो है हमको जो वेल रॉटन FYM होता है यानी कि गोबर की खाद, इसका चुनाव करते समय हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि कभी भी हमें कच्चा गोबर खाद नहीं यूज करना है। सब्जी की खेती हम कर रहे हैं तो जो भी हमारे वेल रॉटन यानी कि पूरी तरीके से डिकम्पोज्ड जो FYM है, पूरी तरीके से सड़ी गली जो खाद है उसका हमको चयन करना चाहिए। फसल के लिए सबसे उपयोगी उर्वरक है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसकी मात्रा बिल्कुल कम नहीं होने देना है। उसके साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम भी महत्वपूर्ण होते हैं।
0: खरपतवार के नियंत्रण भी करब बहुत जरूरी है।
1: सबसे ज्यादा हमको जो है खरपतवार को मैनेज करना किसानों के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम खरपतवार का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, इसलिए जो है समय समय पर हमको निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ जो है पेंडीमेथालीन है, एलाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर है, ये हमारे जो हर्बिसाइड्स हैं इनका हमको एप्लीकेशन करना चाहिए। चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है तो उसमें आइसोप्रोट्यूरान का आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज जो है हम पेंडीमेथालीन का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
0: कीट और रोग के भी प्रबंधन करना जरूरी है।
1: फसल की निगरानी के लिए कीट और रोग हमारे लिए फसल होते हैं उनको बहुत हानि पहुंचाते हैं, इसके लिए हमको जो है IPM सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लाना चाहिए। हमको केवल केमिकल पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हम केवल केमिकल लाएं मार्केट से और उसका स्प्रे कर दें तो वो जो है जहरीला बन जाता है। तो अगर हम IPM यूज करते हैं यानी कि उसको जो है भौतिक रूप से हम जैसे कि अभी बताया कि जो है गहरी जुताई करके और उसके अलावा फसल चक्र अपना करके इन चीजों को अगर हम सम्मिलित करेंगे अपने IPM में तो हम ज्यादा से ज्यादा लाभ पा सकते हैं, और साथ ही साथ जो केमिकल है उस पे पेस्टिसाइड है उस पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाती है।
0: बिल्कुल, जल प्रबंधन की व्यवस्था कैसे बनावा जाए डॉक्टर साहब?
1: सब्जियां जिनमें 90% हम कह सकते हैं कि पानी ही होता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए सिंचाई हमको रेगुलर इंटरवल पे करते रहना चाहिए।
0: फसल चक्र के अपनावे के बारे में देखो आप सब अपने पंचन का बताओ तो कुछ ये तरह के फसल चक्र अपनावा जाए जिससे अपने सबका फुरहार लाभ मिले।
1: एक ही फील्ड में एक ही क्षेत्र में लगातार हमको एक ही फसल नहीं उगानी चाहिए, उससे हमारी उर्वरक क्षमता घट जाती है, उसमें लगने वाले जो भी कीट होते हैं या फिर बीमारियां होती हैं उनका लोड बढ़ जाता है, इसलिए उनकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। फसल चक्र में खास करके दलहनी फलों का उपयोग जरूर करना चाहिए।
0: लेकिन नर्सरी प्रबंधन के भी सुझाव बहुत जरूरी है।
1: जी, जो हमारे स्मॉल सीड होते हैं जिनके बीज का आकार बहुत छोटा होता है उनके लिए नर्सरी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, आने वाला सीजन जो है वो खरीफ का है, तो उसके लिए हमें नर्सरी किस तरीके से तैयार करनी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मई जून के ही महीने में यानी कि जो अभी टाइम चल रहा है वो सबसे उपयुक्त है, हमको गहरी जुताई कर लेनी है। 10 दिन बाद हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा उसको भुरभुरा बनाने के लिए मिट्टी को हमको कल्टीवेटर चलाने देना चाहिए, और साथ ही साथ हमको बेड बना लेना चाहिए। बेड की जो आकार होगा वो 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और लगभग 15 सेंटीमीटर हाइट देकर के बेड बनाना चाहिए।
0: इसे क्या लाभ हुए डॉक्टर भैया?
1: जी, उससे लाभ ये होगा कि जो पानी होगा जब हम सिंचाई करेंगे तो उसमें वो रुकेगा नहीं।

पानी जो है वो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब इनमें बात आती है हम उपयुक्त सब्जियों की किस्मों का चयन। तो इसमें जैसे टमाटर है, इसमें काशी अमन है, काशी चयन है, और काशी अमूल है, काशी विशेष, जिसका फल जो है काफी हार्ड होता है और इसकी जो लेयर होती है वो थिक होती है काशी विशेष की, तो उसको हम लंबे समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। उसके अलावा काशी अमृत है, काशी हेमंत है, काशी अनुपम वेराइटी है। हमारे यहाँ आचार्य नरेंद्र देव से भी विकसित कुछ प्रजातियां हैं, जैसे NDT3 है, NDT5 है। उसके अलावा हिसार अनमोल है, पंजाब चुहारा, ये हमारी उन्नत प्रजाति है टमाटर के लिए। अगर हम बात करें बैगन की, तो इसमें काशी कोमल है, काशी प्रकाश है, काशी तरु आज के समय में काफी ज्यादा उपयोग की जा रही है, पूसा पर्पल क्लस्टर है, पूसा पर्पल राउंड है।

0: उपयोग की जा रही है। पूसा पर्पल क्लस्टर है, पूसा पर्पल राउंड है, पंत सम्राट है, पंत ऋतुराज जो कि गोल वाली लौकी जो भरता बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, उसका चयन हम करते हैं तो पंत ऋतुराज हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। सब्जी की अगर हम बात करें, पंत सम्राट जो है जिसकी जिसके फल की जो साइज होती है वो सिलेंडिकल शेप होती है, लंबे होते हैं, गुच्छे में फलते हैं। वहीं अगर हम मिर्च की बात करें तो काशी अर्ली वैरायटी है, काशी सुर्ख है, काशी अनमोल है, बहुत अच्छी किस्म है, काशी गौरव है, काशी सिंधूरी है, पंत सीवन इम्पॉर्टेंट वैरायटी है और काफ़ी किसान इसको जो है उगाते हैं। भिंडी की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में विकसित प्रजाति है काशी पराक्रम, काशी प्रगति, परभनी क्रांति, अर्का अनामिका, पूसा सावनी, काशी क्रांति, वर्षा उपहार। वहीं अगर हम लौकी की बात करें तो काशी शुभ्रा, काशी कीर्ति, काशी कुंदल, काशी किरण, काशी गंगा, नरेंद्र रश्मि, नरेंद्र माधुरी, नरेंद्र शिवानी, जिसका फल नरेंद्र शिवानी की अगर हम बात करें तो इसके फल की जो लेंथ होती है वो लगभग 6 फीट तक होती है, यानी कि हमारे आपके बराबर हाइट का इसका फल होता है। नरेंद्र शिशिर है, नरेंद्र धारीदार है, ये लौकी की संस्तुत प्रजातियां हैं। उसके अलावा करेला है, इसमें काशी प्रतिष्ठा है, काशी मयूरी है। तुरई की अगर हम बात करेंगे तो काशी नंदा, काशी शिवानी, नेनुआ में पूसा चिकनी, काशी निर्झरा, अर्का सुमित, खीरा अगर किसान उपयोग करते हैं तो काशी नूतन, पूसा उदय, पूसा संयोग, कद्दू में काशी बसंत, काशी हरित, काशी शिशिर, लोबिया में काशी निधि और काशी कंचन। चौलाई की अगर हम बात करेंगे तो पूसा लाल चौलाई, शकरकंद की अगर हम बात करें तो राजेंद्र शकरकंद 5/35, श्री नंदनी, श्री वर्धनी, कसावा में श्री हर्षा, श्री प्रकाश, कोलोकेशिया में श्री पल्लवी, श्री रश्मि और सूरन, सूरन में गजेंद्रा, NDA 5 और NDA 9, ये सबसे उन्नतशील हमारी प्रजातियां हैं जिनसे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं।
1: तो और बीज दर और उर्वरक प्रबंधन भी सबसे ज्यादा जरूरी है, यह के लिए क्या कहा चाहिए?
0: टमाटर है तो इसमें हमें 250 से 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर यूज करना चाहिए, साथ ही साथ गोबर की खाद 20 से 25 टन और रासायनिक उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जिसकी मात्रा हमको 120 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 60 किलोग्राम के उपयोग करना चाहिए। साथ ही अगर बैगन है तो 400 से 500 ग्राम इसके लिए बीज पर्याप्त होता है, 20 से 25 टन गोबर की खाद और रासायनिक खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 150-50 के रेशियो में देना चाहिए। मिर्च है तो इसके लिए सीड थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, 600 से 700 ग्राम, 20 से 25 टन FYM और 120 से 60-60 के अनुपात में हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देना चाहिए। भिंडी खरीफ सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम और अगर हम समर सीजन में यही भिंडी लगाते हैं तो लगभग 18 से 20 किलोग्राम सीड की जरूरत होती है। गोबर की खाद इसमें 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास हमको यूज करना चाहिए। लौकी है तो 3 से 5 किलोग्राम सीड, करेला है तो 4 से 5 किलोग्राम सीड, तुरई के लिए 4 से 5 किलोग्राम सीड, नेनुआ है तो 4 से 5 किलोग्राम सीड, खीरा के लिए 2 से 3 किलोग्राम सीड और इनके लिए जब हम FYM की बात करेंगे तो 15 से 20 टन जो है पर्याप्त होता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की अगर हम बात करेंगे तो 120-50-50 की मात्रा से हमको एप्लीकेशन करना चाहिए। लोबिया है तो इसमें हमको ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है, बीज दर इसका 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसान भाई यूज कर सकते हैं और 25 किलोग्राम केवल नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटासियम का एप्लीकेशन करना चाहिए। शकरकंद जो कि ट्यूबर क्रॉप, ये कंद वाली फसलें होती हैं, इनकी अगर हम बुआई करेंगे तो इसमें हमको थोड़ा सा ज्यादा सीड की मात्रा चाहिए होती है तो इसके लिए हमको 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कंद का, छोटे छोटे कंद होते हैं उनका एप्लीकेशन करना चाहिए। गोबर की खाद 10 टन और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 40-40-60 के अनुपात में देनी चाहिए। वहीं पे कसावा नाम की सब्जी होती है, ये भी जो है हमारे कंद वाली सब्जियों में उपयुक्त की जाती है। इनको इनका हम प्रोपागेशन हम कटिंग से करते हैं न कि सीड से, तो 20 से 25 सेंटीमीटर लेंथ की जो कटिंग होती है उसको हम जो एक साल पुरानी होती है हमारी पौध उनसे लेना चाहिए। साथ ही साथ इसमें भी हमें 10 टन FYM, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास यूज करना चाहिए। उसके अलावा कोलोकेशिया है तो इसमें 1 टन सीड पर्याप्त होता है। 10 से 15 टन हमको एफवाईएम यूज करना चाहिए। 80-80-120 के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यूज करना चाहिए। आज के समय में किसान सूरन का भी काफी बुआई में यूज करते हैं। इसके लिए हमको 12 से 20 टन सीड जो है बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर

0: उपयोगी होता है। जो हम कंद का सिलेक्शन करें वो 500 से लेकर के 750 ग्राम का होना चाहिए। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास अपेक्षा में नाइट्रोजन और पोटाश ज्यादा यूज करना चाहिए, लगभग 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं फास्फोरस जो है वो 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमको एप्लीकेशन करना चाहिए।
1: अपने सबका अगर कोनो संशय रह जाते अपने पंचे भाई बुआई करते तो अपने सबके लगा आप सबके देखो एक सुझाव है नंबर रहा है अपने पंचे पूछ भी सकते हैं कि भाई कोने मात्रा में कोने चीज की अपने सबका बुआई करे क्या। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव अपने पंचन का आप दे चलो।
0: किसान को कुछ जगह पे जैसे गोबर की खाद की हमने बात किया तो गोबर की खाद में कभी भी कच्चे गोबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी हमें यूज करना है वो जो हमारी गोबर की सड़ी हुई खाद है उनका हमको एप्लीकेशन करना चाहिए। इससे हमारा जो फसल होगा वो ज्यादा उपजाऊ बनेगा और साथ ही साथ कीट भी उसमें कम आएंगे। नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक हमने जो भी नाइट्रोजन के डोजेज बनाए उनको एक ही बार में एप्लीकेशन नहीं करें, क्योंकि हमको उससे पूरा प्रॉफिट एक ही बार में नहीं होगा। हम आप हैं तो एक बार सुबह खाते हैं, फिर दोपहर में खाते हैं, शाम को खाते हैं, तो इसी तरीके से हमको स्प्लिट कर देना चाहिए। नाइट्रोजन को 2 से 3 बार एप्लीकेशन करना चाहिए, उसकी आधी मात्रा जैसे हम खेत तैयारी करते हैं उस समय करना चाहिए और बाकी जो आधी मात्रा होती है वो 2 से 3 बार एप्लीकेशन करना चाहिए। ड्रिप सिंचाई भी किसान आजकल यूज करते हैं तो फर्टिलाइजर से मिक्स करके भी हम यूज कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में हमको जल निकास का प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है, तो इन चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए खरीफ फसलों की तैयारी करनी है।
1: बताई गई बात से तो निश्चित है कि अपने पंचे जब सुनी है अमल में लगी है तो डॉक्टर आशीष कुमार सिंह भैया, आप सहायक प्राध्यापक सब्जी विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से आए के इतना बढ़िया बात कही के माध्यम से अपने पंचन के जौन मार्गदर्शन की है इसके लिए आकाशवाणी के वारी से हम आपका दई थे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हैं? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: मनोज भैया।
6: हाँ भैया।
5: देख कितना बढ़िया डॉक्टर भैया बताएं सब्जी के खेती कैसे की जाए और उम्मीद के से पंच का भी निकला।
6: बिल्कुल भैया, लेकिन ये है इतनी बड़ी यहाँ वक्त है कि बाद अब हमारा मन दूसरी बार जात है, यानी कुछ मन साइन हो जाए
5: तो हो जाए भैया।
6: तो चलो सुना जाए अंजू मिश्रा उनके सखियन की आवाज में एक गौनई और झमाझमे का पूरा आनंद ले जाए।

0: ओम भैया।
1: हाँ मनोज भैया,
0: देखा इगो नहीं अपने सब सुनागा, तबीयत खुश होगी, मजा आएगा, उम्मीद करी थे पंचनों के।
1: लेकिन पंच का अब बता दें जाए बाजार भाव और मौसम के हाल, तो पहले मौसम के हाल।
0: बिल्कुल,
1: जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से मौसम के हाल मिला है। आज के अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस, जो उनकी सामान्य से 3.5 डिग्री कम रहा, और न्यूनतम रहा 24 डिग्री सेल्सियस, यह सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता रही 81% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता रही 46%। हवा के गति रही 5.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दिशा रही
0: दक्षिणी पूर्वी। वर्षा शून्य रही पंचो पिछले 24 घंटा में। पूर्वानुमान ये है कि आने वाले 24 घंटा में फिलहाल हल्का फुल्का बादल छावा रहे, कहूं कहूं बूंदा बांदी गरज चमक के साथ हुए की संभावना बनती है। हवा सामान्य गति से पूर्ववत चले, यह संभावना दिखाई पड़ती है। साथ ही जोन बाजार भाव है अयोध्या मंडी के, यो जान ली जाए। पिछले जोन अयोध्या मंडी से का बाजार भाव मिला है पंचो, वह हम से चाउर कामन रहा 3,050 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं दाड़ा भाव रहा 2,585 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का पीली एक भाव रहा 2,350 रुपये क्विंटल, उड़द दाल काली 9,200 रुपया, चना देसी भाव रहा 6,400, मसूर रही 7,125 रुपया, और अरहर के दाल के भाव रहा 10,900 रुपये प्रति क्विंटल।
1: आलू सफेद रहा 695 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज लाल 1,200 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1,195 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन 6,995, तरोई 1,600 रुपया, लौकी 1,600 रुपया, करेला 1,400 रुपया, बैंगन 2,100।

0: रुपया प्रति क्विंटल रहा।
1: हरी मिर्च भाव रहा 5,300 रुपया प्रति क्विंटल, अदरक रही 7,000 रुपया क्विंटल, कद्दू यानी कोहड़ा 1,400 रुपया, शिमला मिर्च भाव रहा 2,570 रुपया प्रति क्विंटल, भिंडी रही 1,680 रुपया, केला पका एक भाव रहा 2,785 रुपया प्रति क्विंटल, नींबू रहा 7,200 रुपया, पपीता 2,750, सेब के भाव रहा 11,570 रुपया प्रति क्विंटल, अनार रहा 7,500, गुड़ बट्टी भाव रहा 5,090 रुपया प्रति क्विंटल और चीनी भाव रहा 4,120 रुपया प्रति क्विंटल।
0: तो ये तो रहा बाजार भाव और मौसम के हाल। और कल पंच अपने कार्यक्रम में सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम हुई अपने एमन और लेकिन अब देखा यह एक साथ घड़ी सारा करते कि पंचन से अनुमत लिया जाए तो पंचो ओम
1: और मनोज भैया का जयंती जय हिंद।
2: किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम आपको बता दें, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से हम सुनवाएंगे 8:15 से, महफिल ए गजल कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 9:15 से, और सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या का प्रसारण किया जाएगा 9:30 से 10:30 तक। और अब कल के कार्यक्रम विवरण। कल प्रातः 7:15 से बताया जाएगा दिन भर के कार्यक्रमों का विवरण। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुन सकेंगे 7:30 से, और सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम सुनवाया जाएगा 8:15 से। कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में प्रातः 8:30 से सुना जा सकता है आज की बात। विषय होगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। डॉक्टर महेश सुरतानी जी भेंटवार्ता के माध्यम से बताएंगे बच्चों में गर्मी के मौसम में होने वाली आम बीमारियों के बारे में, और समाचार पत्रों से जान सकेंगे ताजा जानकारियां। व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत आपके संदेश आपके गीत हम सुनवाएंगे 9:00 से। बातें आसपास की सुनवाया जाएगा 9:30 से। विषय होगा जल जंगल और जमीन जीवन के आधार। कल 11:00 से अनुप्रसारित किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से मन की बात, पुनः इसे संस्कृत में सुनाया जाएगा 11:30 से। लोक रंग कार्यक्रम सुना जा सकता है 12:30 से, और सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या प्रसारित किया जाएगा 1:00 से। फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कुछ तुमने कहा सुन सकेंगे 1:30 से। गीतांजलि कार्यक्रम सुना जा सकता है 2:00 से, और 2:30 से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम बाल जगत, जिसमें चर्चा के विषय होंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस और ग्रामीण स्थलों का

0: रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
1: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। यह उद्यम लिथियम आयन बैटरी, महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करता है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि उनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक एक जटिल तकनीक विकसित की है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितेन्द्र प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 2026 आयोजित होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की CCTV से निगरानी की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में सम्पन्न होगी। इसी क्रम में अमरोहा की अपर जिलाधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि BEd प्रवेश परीक्षा जनपद में 6 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी।
2: जिले में BEd प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग सभी सेंटर्स तय हो चुके हैं। उस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और परीक्षा के पेपर्स के संबंध में सभी चीजें लगभग तैयार कर ली गई हैं। जिले में जितने भी सेंटर्स हैं, बच्चों को वहां पे पर्याप्त सुविधा भी मिल पाए, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। क्लॉक रूम की भी व्यवस्था कर ली गई है।
0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय किया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
3: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।

0: आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुँच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
0: प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक स्वदेशी विकास है, प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
3: प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र और सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
4: सबसे पहली फिल्म मैंने श्याम बेनेगल साहब के साथ की थी। फिल्म का नाम था आरोहण। आरोहण की शूटिंग करने के लिए हम कलकत्ते से तकरीबन 200 किलोमीटर आगे गए। फिल्म में एक सीन था जिसमें गांव में बाढ़ आ गई है और बाढ़ आने की वजह से मैं वहां काम करता हूं और लोगों को मदद करने की कोशिश करता हूं। तो ये सीन फिल्माने के लिए श्याम बेनेगल साहब ने वहां पे एक डैम था उसको खुलवाने के लिए कहा। वो नदी तकरीबन हमेशा सूखी रहती है, लेकिन डैम खुल जाने की वजह से, डैम के वो लोहे के दरवाजे जो होते हैं वो खुल जाने की वजह से तकरीबन 1.5 घंटे के लिए कुछ पानी उस सूखी जगह पर आ जाएगा जिसे हम बाढ़ का इफेक्ट दे सकते थे। तो साहब हमने वो सीन शूट करना शुरू किया। लोहे के दरवाजे खुले, गांव के ही कुछ 200-300 लोग थे जो हमारी मदद कर रहे थे ये सीन शूट करने में। तो सीन ये था कि मैं और ओमपुरी साहब जो उस फिल्म के हीरो थे, हम दोनों इन गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं, इन्हें इस बाढ़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो साहब 1.5 घंटे में ये सीन शूट हो गया, 2 कैमरे लगे हुए थे। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं और ओमपुरी साहब उसी पानी में तैरते रहे काफी देर तक। अचानक तैरते तैरते हमें लगा कि अब हमें बाहर किनारे की तरफ जाना चाहिए, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, तो मैंने तैरना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पानी का बहाव उल्टा है। मैं किनारे की तरफ तैरने की कोशिश कर रहा था लेकिन पानी मुझे पीछे की तरफ खींच रहा था। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे वो लोहे के दरवाजे दिखाई दिए जहां से पानी गिर के नीचे आता था। तो मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। मैं चिल्लाया तो वहां आसपास जो लोग खड़े थे उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं शायद। एक सेकंड में बिजली की तरह मेरे दिमाग से यह ख्याल गुजरा कि अगर मैं इस वक्त किनारे पर नहीं पहुंचता हूं तो यह पानी मुझे खींचकर उन लोहे के दरवाजों के पास ले जाएगा, मैं उससे टकराऊंगा और डूब जाऊंगा। तो साहब 3-4 बार चिल्लाने के बाद कोई 1-2 लोगों ने मेरी तरफ गौर किया, एक आध शख्स कूदा भी और उन्होंने मुझे वहां से बाहर निकाल लिया। तो फौजी भाइयों, कहने का मतलब यह है कि जिस तरह आपको अपनी जिंदगी में जोखिम उठाना पड़ता है, वैसे ही हमारे काम में भी, एक्टिंग में काम करते हुए बड़े बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। तो फौजी भाइयों, अपने वादे के मुताबिक मैंने आपको बोर तो किया, लेकिन दूसरे वादे के मुताबिक आपको गीत सुनवाना अभी बाकी है। तो लीजिए ये गीत सुनते हैं।

0: सॉरी भाइयों, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे याद रखेंगे, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।
1: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज कपूर। ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी विविध भारती के संग्रहालय से।

0: जय माला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
1: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ, अमिताभ बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
0: मीना कुमारी।
2: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी।
0: जीवन।
3: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
0: दीप आनंद।
4: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
0: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला। आप है विविध भारती के संग।

जिज्ञासा। जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मई का दिन पूरी दुनिया में नो टोबैको डे यानी तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने सन 1987 में तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों और मौतों की ओर सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। सबसे पहले 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया था। बाद में 1989 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया संकल्प पारित किया और हमेशा के लिए 31 मई को नो टोबैको डे के रूप में घोषित कर दिया गया। बस 1988-89 से हर साल इस दिन के लिए एक थीम तय की जाती है जो तंबाकू नियंत्रण के किसी एक पहलू पर फोकस करती है। पहले साल की थीम थी तंबाकू या स्वास्थ्य, इसमें से स्वास्थ्य को चुने। साल 2026 यानी इस बरस विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना, अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। दरअसल तंबाकू और निकोटीन इंडस्ट्री युवाओं को लुभाने के लिए अपनी मार्केटिंग में तरह तरह के आकर्षणों को शामिल करती है और युवा तंबाकू की चपेट में आते जा रहे हैं। तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल तकरीबन 95 लाख और भारत में तकरीबन 13.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। दुनिया भर में तकरीबन 1.2 अरब लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में ये तादाद 26 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं, उन्हें जागरूक बनाएं और दुनिया को तंबाकू मुक्त बनाएं। तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से हर साल 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है और 2030 तक ये संख्या बढ़कर 80 लाख हो सकती है। अब दिक्कत ये है कि तंबाकू से होने वाली इतनी सारी बीमारियां हैं कि इन आंकड़ों को सही सही हासिल करना बड़ा ही मुश्किल काम है। एक औसत व्यक्ति जो धूम्रपान करता है वो सिगरेट पर तकरीबन 3.3 लाख रुपए सालाना खर्च कर देता है। कल्पना कीजिए कि इतने पैसों से आप जीवन के कितने बेहतरीन काम कर सकते थे। छुट्टियों का आनंद ले सकते थे, त्योहारों का आनंद ले सकते थे, अपने घर को बेहतर बना सकते थे, अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे। कुछ आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। 1.2 अरब यानी 120 करोड़ लोग दुनिया भर में किसी न किसी तरह से तंबाकू का सेवन करते हैं। 80 लाख लोगों की मौत होती है तंबाकू से और पैसिव स्मोकिंग की

की वजह से 16 लाख ऐसे लोग होते हैं जो धूम्रपान खुद नहीं करते हैं पर दूसरों के धुएं के संपर्क में आने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये बहुत ही खौफनाक है। भारत में 26.7 करोड़ वयस्क लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और दुनिया में तंबाकू के सेवन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। भारत में सिगरेट या बीड़ी की बजाय गुटखा, खैनी और जर्दा का चलन बहुत ज्यादा है और वयस्कों में इसका इस्तेमाल करने वालों का प्रतिशत है 21.4%, जबकि 10 करोड़ से ज्यादा लोग बीड़ी या सिगरेट पीते हैं। ये बहुत खतरनाक है। तंबाकू में 2500 से ज्यादा केमिकल तत्व होते हैं जिनमें निकोटीन के अलावा कई कैंसरकारी यानी कार्सिनोजेनिक तत्व शामिल हैं। कैंसर तंबाकू से होने वाली सबसे बड़ी बीमारी है। 45% कैंसर पुरुषों में और 20% महिलाओं में तंबाकू की वजह से होता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़े की बीमारी तो बहुत ज्यादा तंबाकू की वजह से होती है। विश्व धूम्रपान दिवस कल है 31 मई को और हम आप सभी को ये कह रहे हैं कि अपने परिवार में, अपने दोस्तों मित्रों में जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उन्हें इसके खतरों से आगाह करवाइए और उन्हें इस बात की कसम दिलवाइए कि वो तंबाकू

गर्मी के मौसम में तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा गर्मी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। गर्मी की वजह से पानी की कमी या डिहाइड्रेशन हो सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण हल्के लगते हैं, लेकिन अगर नजरअंदाज किए जाएं तो हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जब मौसम बहुत गर्म और उमस भरा होता है तब शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा पसीना निकालता है। पसीने के साथ शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं और अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में ना पिए तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। बच्चों और बुजुर्गों और धूप में काम करने वाले लोगों और लंबे समय तक बाहर घूमने वाले लोगों में डिहाइड्रेशन अक्सर देखा जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से पेशाब कम आने लगता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगना, मुंह सूखना, होंठ फटना, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, थकान, ड्राई स्किन और गहरे रंग की पेशाब, ये लक्षण है डिहाइड्रेशन के। डिहाइड्रेशन अगर वक्त पर इस पर ध्यान न दिया जाए तो गंभीर हो सकता है। लंबे समय तक पानी की कमी रहने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ सकता है और इसका असर कई अंगों पर पड़ सकता है। इससे हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हीट एग्जॉस्टन यानी गर्मी से अत्यधिक थकावट, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर, पसीना, सिर दर्द और बेचैनी महसूस होने लगती है और अगर तुरंत आराम और पानी नहीं दिया तो ये स्थिति हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो गर्मी की सबसे खतरनाक बीमारी है। इसमें शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता, जिससे तेज बुखार, दिल की तेज धड़कन, उल्टी, बेचैनी, बेहोशी और सांस लेने में दिक्कत शामिल है। इससे दिल, दिमाग और किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गर्मी का स्किन पर भी बहुत बुरी तरह से असर पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी और पानी की कमी की वजह से स्किन में सूखापन आ जाता है। सनबर्न, जलन और होंठ फटना भी बहुत ही नॉर्मल है। कई बार त्वचा की समस्या शरीर में पानी की कमी का संकेत होती है। गर्मी में पाचन से यानी हाजमे से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अपच, गैस, एसिडिटी, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग बढ़ जाता है। दरअसल लाइफस्टाइल की वजह से डिहाइड्रेशन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कई लोग लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं, ट्रैफिक में सफर करते हैं, काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि समय पर पानी पीना भूल जाते हैं। कई लोग पानी की जगह चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और शरीर को सही तरीके से हाइड्रेशन नहीं मिल पाता है। गर्मी के मौसम में पानी पीने के लिए प्यास का इंतजार नहीं करना चाहिए, नियमित रूप से पानी पीना जरूरी है। एक वयस्क इंसान को दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी 3-3.5 लीटर पानी दिन भर में होना चाहिए। सुबह से ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा

पानी एकदम से तेजी से नहीं पीना चाहिए बल्कि एक एक घूंट पीना चाहिए। गर्मी में बहुत अधिक चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे कैफीन और इसमें जो चीनी है वो शरीर में पानी को बाहर निकाल देती है। नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ, ये बहुत अच्छे उपाय हैं पानी शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने के लिए। इसके अलावा तरबूज, खीरा, ककड़ी और संतरे जैसे ऐसे फल और सब्जियां जिनमें पानी बड़ी मात्रा में है, ये आपको जरूरी तौर पर लेना चाहिए। हल्का भोजन होना चाहिए और वो भी ताजा। थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहना चाहिए, जरूरत न होने पर धूप में नहीं निकलना चाहिए। सूती कपड़े, ढीले कपड़े पहने, सिर को ढककर रखें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। ये तमाम चीजें करें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, सुरक्षित रहें। खेलों की दुनिया से खबर यह है कि 25 साल के गुरिंदर वीर सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 100 मीटर की रेस 10.09 सेकंड में दौड़कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने अनिमेश कुजूर को पीछे छोड़ दिया। बीते शनिवार गुरविंदर सिंह ने राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के ऐतिहासिक दूसरे दिन पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में कमाल का प्रदर्शन किया और केवल 10.09 सेकंड में ये रेस पूरी कर ली। एशिया में इस सत्र का ये दूसरा सबसे तेज समय है। ये प्रतियोगिता गुरिंदर वीर और पूर्व राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अनिमेश के बीच 100 मीटर की दौड़ में सबसे तेज भारतीय धावक बनने का मुकाबला करने के लिए याद रखी जाएगी। अनिमेश पिछले साल बनाए गए 10.18 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ इस प्रतियोगिता के दावेदार थे, पर शुक्रवार को गुरविंदर वीर ने 10.1 सेकंड का रिकॉर्ड निकाला। अब दूसरे सेमीफाइनल में अनिमेश ने 10.15 सेकंड का समय निकाला और रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर दिया। इसके आगे ये हुआ, गुरविंदर वीर ने फाइनल में जीत हासिल की और 10.10 सेकंड का समय निकाला और सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले भारतीय धावक बन गए। 10.09 सेकंड इस समय इस सत्र में अब तक किसी एशियाई द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज समय है। मई में 19 वर्षीय जापानी धावक फुकुतो कोमोरो ने 10.08 सेकंड का रिकॉर्ड निकाला है। आपको बता दें कि 0.01 सेकंड का ही डिफरेंस है गुरिंदर वीर और फुकुतो कोमोरो के रिकॉर्ड में। ये कमाल की बात है। गुरविंदर वीर पंजाब से आते हैं, भारत के एलीट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं और फास्टेस्ट

1920 को उदंत मारतंड नाम का अखबार निकला था और भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। हालांकि ये अखबार 6 महीने में बंद हो गया था, लेकिन हिंदी के पहले अखबार के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है और इसलिए 30 मई का दिन भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उदंत मारतंड शब्द का अर्थ है समाचार सूर्य या बाल सूर्य। 30 मई 1826 को कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में उदंत मारतंड शुरू हुआ था। इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने निकाला था। आगे चलकर ये अखबार बंद हो गया, लेकिन सबसे जरूरी बात ये हुई कि इसने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी थी। आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। जिज्ञासा।

जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो

0: यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते बिना हेलमेट, तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो राइट? तो ने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। हवा महल के अंतर्गत श्रृंखला सुनो कहानी में आज आपको सुनाता हूं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी प्रेम का मूल्य। बृहस्पति छोटे देवताओं का गुरु था। उसने अपने बेटे कच्छ को संसार में भेजा कि शंकराचार्य से अमर जीवन का रहस्य मालूम करे। कच्छ शिक्षा प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाने के लिए तैयार था। उस समय वह अपने गुरु की पुत्री देवयानी से विदा लेने के लिए आया। कच्छ ने कहा, देवयानी, मैं विदा लेने आया हूं। तुम्हारे पिता के चरण कमलों में मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है, कृपा कर मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दो। देवयानी ने कहा, तुम्हारी कामना पूर्ण हुई। जीवन के अमृतत्व का वो रहस्य तुम्हें ज्ञात हो चुका है जिसकी देवताओं को सर्वदा इच्छा रही है। किंतु तनिक विचार तो करो, क्या कोई और ऐसी वस्तु शेष नहीं जिसकी तुम इच्छा कर सको? कच्छ ने कहा, कोई नहीं। देवयानी बोली, बिल्कुल नहीं। तनिक अपने हृदय को टटोलो और देखो, संभवतः कोई छोटी बड़ी इच्छा कहीं दबी पड़ी हो। कच्छ ने फिर कहा, मेरे उषाकालीन जीवन का सूर्य अब ठीक प्रकाश पर आ गया है। उसके प्रकाश से तारों का प्रकाश मध्यम पड़ चुका है। मुझे अब वह रहस्य ज्ञात हो गया है जो जीवन का अमृतत्व है। देवयानी ने कहा, तब तो संपूर्ण संसार में तुमसे अधिक कोई भी व्यक्ति प्रसन्न न होगा। खेद है कि आज पहली बार मैं यह अनुभव कर रही हूं कि एक अपरिचित देश में विश्राम करना तुम्हारे लिए कितना कष्टप्रद था। यद्यपि यह सत्य है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो हमारे मस्तिष्क में थी तुमको भेंट कर दी गई है, इसका तनिक भी विचार न करो और हर्ष सहित मुझे जाने की आज्ञा दो। कच्छ ने कहा, देवयानी ने कहा, तुम्हारे लिए इस वन को छोड़ना बहुत सरल है। यह वही वन है जिसने इतने वर्षों तक तुम्हें अपनी छाया में रखा, तुम्हें लोरियां दे देकर थपथपाता रहा। तुम्हें अनुभव नहीं होता कि आज वायु किस प्रकार क्रंदन कर रही है? देखो देखो, वृक्षों की हिलती हुई छाया को देखो, उनके कोमल पल्लवों को निहारो। वे वायु में घूम नहीं रहे बल्कि किसी खोई हुई आशा की भांति भटके भटके फिर रहे हैं। एक तुम हो कि तुम्हारे होष्ठों पर हंसी खेल रही है, प्रसन्नता के साथ तुम विदा हो रहे हो। कच्छ ने कहा, मैं इस वन को किसी प्रकार मातृभूमि से कम नहीं समझता, क्योंकि यहां ही मैं वास्तव में आरंभ से जन्मा हूं। इसके प्रति मेरा स्नेह कभी कम ना होगा। सच कहता हूं देवयानी, कभी कम ना होगा। देवयानी ने कहा, वह देखो देखो, सामने बड़ का वृक्ष है जिसने दिन के घोर ताप में, जबकि तुमने पशुओं को हरियाली में चरने के लिए छोड़ दिया था, तुम पर प्रेम से छाया।

कच्छ ने कहा, ए वन के स्वामी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। जब और विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्ति हेतु आए और शहद की मक्खियों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ साथ तेरी छाया में बैठकर अपना पाठ दोहराएं, तो मुझे भी स्मरण रखना, देवयानी ने कहा। और हां, तनिक वनमती का भी तो ध्यान करो, जिसके निर्मल और तीव्र प्रवाह का जल प्रेम संगीत की एक लहर के समान है। कच्छ बोला, आह, उसको बिल्कुल नहीं भूल सकता, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। देवयानी बोली, किंतु प्रिय सखा, तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूं कि तुम्हारा और भी कोई साथी था, जिसने बेहद प्रयत्न किया कि तुम इस निर्धनता के दुख से भरे जीवन के प्रभाव से प्रभावित ना हो। ये दूसरी बात है कि प्रयत्न व्यर्थ हुआ, उसकी स्मृति तो जीवन का एक अंग बन चुकी है देवयानी। देवयानी ने फिर कहा, मुझे वे दिन स्मरण है जब तुम पहली बार यहां आए थे। उस समय तुम्हारी आयु किशोर अवस्था से कुछ ही अधिक थी, तुम्हारे नेत्र मुस्कुरा रहे थे, तुम उस समय उधर वहां वाटिका की बाढ़ के समीप खड़े थे। हाँ, उस समय तुम्हारे शरीर पर श्वेत वस्त्र थे, हाँ? ऐसा दिखाई देता था जैसे उषा ने अपने प्रकाश में स्नान किया है। तुम्हें संभवतः स्मरण होगा, मैंने कहा था यदि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। देवयानी ने कहा, स्मरण क्यों नहीं है? मैंने आश्चर्य से तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, और तुमने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया था कि मैं इंद्र की सभा के प्रसिद्ध गुरु बृहस्पति का सुपुत्र हूं। फिर तुमने बताया कि तुम मेरे पिता से वो रहस्य मालूम करना चाहते हो जिससे मुर्दे जीवित हो सकते हैं। कच्छ ने कहा, मुझे संदेह था कि संभव है तुम्हारे पिता मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार न करें। देवयानी फिर बोली, किंतु जब मैंने तुम्हारी स्वीकृति के लिए समर्थन किया तो वो इस विनती को अस्वीकार न कर सके। उनको अपनी पुत्री से इतना अधिक स्नेह है कि वो उसकी बात टाल ही नहीं सकते। कच्छ बोला, और जब मैं 3 बार विपक्षियों के हाथों मारा गया तो तुम्ही ने अपने पिता को बाध्य किया था कि मुझे दोबारा जीवित करें। मैं इस उपकार को बिल्कुल नहीं विस्मृत कर सकता। देवयानी बोली, उपकार? उपकार? यदि तुम उसको विस्मृत कर दोगे तो मुझे बिल्कुल दुख ना होगा। क्या तुम्हारी स्मृति केवल लाभ पर ही दृष्टि रखती है? यदि यही बात है तो उसका विस्मृत हो जाना ही अच्छा है। कच्छ ने कहा, बहुत सी वस्तुएं हैं जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं हो सकती। हाँ, मैं जानती हूं, देवयानी बोली, मेरे प्रेम से तुम्हारे हृदय का एक एक अणु छिद चुका है, और यही कारण है कि मैं बिना संकोच के इस सत्य को प्रकट कर रही हूं कि तुम्हारी सुरक्षा और कम बोलना मुझे पसंद नहीं। तुम्हें मुझसे अलग होना अच्छा नहीं, यहीं विश्राम करो। कोई ख्याति ही हर्ष का साधन नहीं है। अब तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हारा रहस्य मुझ पर खुल चुका है। नहीं नहीं देवयानी, नहीं, ऐसा ना कहो। देवयानी ने कहा, क्या कहा? नहीं, मुझसे क्यों झूठ बोलते हो? प्रेम की दृष्टि छिपी नहीं रहती। प्रतिदिन तुम्हारे सिर के तनिक से हिलने से, तुम्हारे हाथों के कंपन से तुम्हारा हृदय तुम्हारी इच्छा मुझ पर प्रकट करता है। जिस प्रकार सागर अपनी तरंगों द्वारा काम करता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय ने तुम्हारी भाव भंगिमा द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाया। सहसा

मेरी आवाज सुनकर तुम तिलमिला उठते थे। क्या तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी उस दशा का अनुभव नहीं हुआ? मैं तुमको भली भांति जानती हूं, इसीलिए अब तुम सर्वदा मेरे हो। तुम्हारे देवताओं का राजा भी इस संबंध को तोड़ नहीं सकता। कच्छ ने कहा, किंतु देवयानी तुम्हें हो, क्या इतने वर्ष अपने घर और घर वालों से अलग रहकर मैंने इसीलिए परिश्रम किया था? देवयानी बोली, क्यों नहीं, क्या तुम समझते हो कि संसार में शिक्षा का मूल्य है और प्रेम का मूल्य ही नहीं? समय नष्ट मत करो, साहस से काम लो, ये प्रतिज्ञा करो, शक्ति शिक्षा ख्याति की प्राप्ति के लिए मनुष्य तपस्या और इंद्रियों का दमन करता है। एक स्त्री के सामने इन सब का कोई मूल्य नहीं है। कच्छ ने कहा, तुम जानती हो कि मैंने सच्चे हृदय से देवताओं से प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन के अमृतत्व का रहस्य प्राप्त करके आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। देवयानी ने कहा, परंतु क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे नेत्रों ने पुस्तकों के अतिरिक्त और किसी वस्तु पर दृष्टि नहीं डाली? क्या तुम ये कह सकते हो कि मुझे पुष्प भेंट करने के लिए तुमने कभी अपनी पुस्तक को नहीं छोड़ा? क्या तुम्हें कभी ऐसे अवसर की खोज नहीं रही कि संध्या काल मेरी पुष्प वाटिका के पुष्पों पर जल छिड़क सको? संध्या समय जब नदी पर अंधकार का वितान तन जाता था तो मानो प्रेम अपने दुखित मन पर मौन छा जाता। तुम घास पर मेरे बराबर बैठकर मुझे अपने स्वर्गिक गीत गाकर क्यों सुनाते थे? क्या यह सब काम उन षड्यंत्रों से भरी हुई चालाकियों का एक भाग नहीं जो तुम्हारे स्वर्ग में क्षम्य है? क्या इन कृत्रिम युक्तियों से तुमने मेरे पिता को अपना न बनाना चाहा था? अब विदाई।

8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशा भोसले जी महान संगीतकार और रंगकर्मी दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री हैं। जी दोस्तों, बहन लता मंगेशकर की तरह आशा जी ने भी संगीत को अपना जीवन बना दिया। कहा जाता है कुछ आवाजें उम्र की मोहताज नहीं होती, वो हर दौर में दिलों पर राज करती हैं। आशा जी की आवाज भी ऐसी ही रही। उन्होंने गजल, पॉप, कव्वाली, भजन, लोकगीत और क्लब सॉन्ग हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाई। अब आइए सुनते हैं अगला गीत उन्हीं की आवाज में, फिल्म मेरा नाम जोकर से।

0: दोस्तों 1950 और 60 के दशक में आशा भोसले जी को असली पहचान मिली संगीतकार ओपी नैयर के साथ। दोनों की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट गीत दिए। फिर आया वो दौर जब आर डी बर्मन और आशा जी की जोड़ी ने संगीत को आधुनिक रंग दे दिया। इनकी आवाज युवाओं की धड़कन बन गई। अब आइए सुनते हैं उन्हीं का गाया गीत फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना आवाज आशा भोसले की।
1: जैसवाल तुम्हारे पिता नहीं?
2: बहुत नाम है उनका।
1: और बीरा तुम्हारी माँ का नाम?
2: मेरी माँ मर चुकी है और मेरे पिता भी। अब तुम जाओ यहाँ से।
1: जलवीर
2: छोड़ दो मुझे।
1: मुझे कुछ याद करो। कुछ याद आ रहा है तुम्हें?
2: जीने तो मुझे, मैं जीना चाहती हूँ, जिंदा रहना चाहती हूँ। जसवीर कब के

0: कुछ और बातें, कुछ और गीत, फिलहाल एक अंतराल।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

एक बार फिर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम एक ही कलाकार से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और आज हम बात कर रहे हैं गायिका आशा भोसले की। दोस्तों, आशा जी की गायकी की सबसे बड़ी खूबी रही उनका प्रयोग धर्मी अंदाज। उन्होंने हिंदी नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, भोजपुरी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में गीत गाए। ऐसे मौके पर एक शेर याद आता है, सुरों की दुनिया में ऐसा मुकाम पाया है, हर दिल ने उनकी आवाज को अपनाया है।

फिल्म उमराव जान के गीतों ने ये साबित कर दिया कि आशा जी सिर्फ चुलबुले गीतों की ही नहीं बल्कि गहरी संवेदनाओं और गजलों की भी बेमिसाल गायिका हैं। उनकी आवाज में दर्द भी था और नजाकत भी। आशा भोसले जी को उनके अद्भुत योगदान के लिए पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के सम्मान के साथ बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्होंने हजारों गीत गाकर संगीत जगत में एक ऐसा इतिहास रचा जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं है। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में अगला गीत

अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। बेशक आशा जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हर पीढ़ी के दिलों में बसती है। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत और सुनते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की।

और दोस्तों अंततः 11 अप्रैल 2026 को भोसले को थकावट और फेफड़ों के संक्रमण के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी

0: दोस्तों इसी गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से अब समाप्त होता है।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।

0: My number is
1: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का बुलेटिन समाचार संध्या प्रसारित किया जाएगा। प्रतीक्षा करें।

0: क्या समाचारों की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और

0: किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर

0: के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय

ये हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 175,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का

0: In badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open. And in women's cricket, England set a target of 169 runs for India in the second T20 International in Bristol. That is all in the news at 9. Good night.
1: समाचारों का बुलेटिन हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल ए गजल।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती, पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: कार्यक्रम की पहली गजल रूना लैला की आवाज में, कलाम नूर देवासी का और संगीत ओपी नैयर का।

0: रेडियो की खास बात यही तो है दोस्तों, अजनबी भी अपने से लगने लगते हैं। और देखिए हमारे एक श्रोता लाइन पर आ चुके हैं, इनसे देखते हैं, बातचीत करते हैं। और हेलो।
1: हेलो, हाँ जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आप अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं अजीत शर्मा, ग्राम नंगला काचान, पोस्ट औरंगाबाद, जिले पाटली में स्थित है।
0: जी अजीत जी, आप अक्सर फोन करते हैं और आपकी कॉल लग भी जाती है।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अब थोड़ा सा अपने आसपास के इस समय का एटमॉस्फेयर बता दीजिए, कैसा है मौसम वहाँ का?
1: अभी अभी अभी तुरंत बारिश हो रही है यहाँ पर।
0: बारिश हो रही है?
1: हाँ बारिश हो रही है, थोड़ी सी आंधी थोड़ी बहुत आई थी और बारिश हो गई अभी।
0: तब तो मौसम काफी ठंडा हो गया होगा।
1: हाँ ठंडा मौसम है।
0: तो इतनी गर्मी जिस तरह से जिस कदर पड़ी है, तो हमें लगता है कि आप लोगों को काफी सुकून महसूस हो रहा होगा।
1: हाँ अभी तो मौसम बढ़िया, गर्मी तो दिन में तो बहुत गर्मी थी।
0: और गाना आज आपको कौन सा सुनवा दें?
1: बटवारा फिल्म का।
0: कौन सा गाना?
1: सारे वास्ते ऐसी कुछ बोले,
0: अलका याग्निक की आवाज में।
1: हाँ जी
0: ठीक है, आपकी पसंद का गाना हमने पहुंचा दिया आप तक। अजीत जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक

0: आम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपने संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: जी हाँ दोस्तों, कहते हैं हौसले बुलंद हों तो मंजिले हासिल हो ही जाती हैं, और लगातार कोशिश करते रहने से आपकी कॉल हमारे पास पहुंच जाती है और हम कहते हैं हेलो।
4: हेलो सर
3: जी, नमस्कार।
4: नमस्कार सर, नमस्कार
3: जी, आपका शुभ नाम?
4: मनोज कुमार शर्मा, मदा के और आके बोल रहे हैं सर।
3: जी, काफी करीब से हैं आप, प्रोग्राम सुनते हैं बराबर?
4: तीन बैंड का रेडियो खिलिसरा सर लगा देते हैं, सब्जी की दुकान है तो चलता रहता है सर।
3: और फोन इन प्रोग्राम आपको ज्यादा अच्छा लगता होगा? ये
4: प्रोग्राम सर सब अच्छा लगता है,
3: सब अच्छे लगते हैं।
4: रेडियो चला देते हैं जो है, सब्जी तोलते हैं, नापते हैं, रेडियो सुनते सुना करते हैं सर।
3: जी बिल्कुल, आप सभी लोगों के लिए रेडियो बहुत ही सुलभ साधन है कि आप मनोरंजन भी करिए और जानकारियां भी हासिल करिए, क्योंकि इसमें आप के कब किसी काम में
4: रेडियो सर 1 बजे चला देते हैं, 11 बजे रात में बंद होती है।
3: हम समझ सकते हैं, आपके काम में व्यवधान नहीं आता और आप रेडियो सुनते रहते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं। तो आज गाना आपको सुनवा दें, कौन सा
4: सर? वही सुनवा दीजिए, बाजीगर का बाजीगर को बताए थे, वही बाजीगर का सुनवा दीजिए सर।
3: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में।
4: जी
3: जी, आपकी पसंद का ये गाना हमने पहुंचा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर फोन करिएगा, फिर बातें होंगी।

0: आवाज अगर सच्ची हो तो असर छोड़ ही जाती है। फोन इनकी हर कॉल एक कहानी बन जाती है और हमारे एक श्रोता ऐसे भी हैं जो कोशिश करते हैं जब हम आते हैं, तो देखते हैं वो श्रोता हैं भी या जा चुके हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए।
1: निशांत पाठक बोल रहे हैं सर, बारूण बाजार अयोध्या से।
0: जी जी निशांत जी, हमारी आपसे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, कैसे हैं?
1: सर हम अच्छे हैं सर, और आप कैसे सर?
0: बिल्कुल ठीक हैं
1: सर। मैं बहुत देर से फोन कर रहा हूँ ट्राई, लेकिन अभी कहीं जाकर हमारे फोन लगा है और मैं सर ट्राई करता रहा हूँ तो अभी कहीं जाकर फोन आपसे बात हो रही है। मुझे तो सर लग ही नहीं पाएगा क्योंकि काफी लोग एक समय में लगाते रहते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, कोशिशें लोग करते रहते हैं और इत्तेफाक होता है कौन सी कॉल उठ जाए तो।
1: जी और सर आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी कभी यही सोचता हूँ सर, हमारी आपकी बातें ऐसे ही चलती रहे, मेरे अंदर बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन उतने दिनों में मैं बोल नहीं पाऊंगा जितना।
0: नहीं नहीं, आप बोलिए,
1: बात करना है,
0: आप बोलिए। आपको कोई जानकारी हो, कुछ आप कहना चाहते हो तो कहिए, जो बातें वास्तव में सभी सुनने वालों के हित में हो।
1: जी जी हाँ। बाकी सर मैं कभी आकाशवाणी आऊंगा तब आपसे मुलाकात होगी, तब तो आपसे दिल खोल कर बात होगी क्योंकि सर आप मेरे बहुत पसंद सर एंकर हैं सर।
0: जी शुक्रिया निशांत जी, अच्छा लगा ये जानकर, और आप लोगों की इस तरह की हौसला अफजाई से हम लोगों को बड़ी ताकत मिलती है। खैर
1: जी जी,
0: गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
1: और सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, मुझे आकाशवाणी से बहुत दिन से मैं सुन रहा हूँ लगभग, जब मैं छोटा था सर लगभग मैं तब से मुझे याद है कि मैं तब से मैं रेडियो जब हुआ करता था तब जब से मैं लगाया तो उसमें सुनता था, अब तो सर फोन में अच्छा हो गया है ना तो मैं फोन में ही सुन लेता हूँ सर।
0: हाँ हाँ, ये सुविधा तो बहुत सारे लोगों को हो गई है कि AIR नेट पर भी वो सुन लेते हैं और
1: ना बैटरी लगाने का झंझट ना कुछ सर, तब तक हम आपसे फोन अपना।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, जहाँ रहो सर।
0: निशांत जी समय क्या कर रहे हैं आप?
1: सर मैं सर यही रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ।
0: हाँ हाँ हाँ जी बिल्कुल, आपने ये बहुत पहले ये

0: बात बताई थी कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ परीक्षाएं वगैरह दी आपने?
1: जी अभी तो एक परीक्षा तो अभी है, अभी जल्दी में है, लखनऊ जाना है, सब सेंटर है।
0: अच्छा, वहाँ पर चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, कोशिश करते रहिए। और
1: सर आज दोपहर में भी सर मैं सुनी रहा था आकाशवाणी में सर, ये दोपहर में सर सदक सर का ड्यूटी लगा था सर, वो कार्यक्रम कर रहे थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो गाना बता दीजिए आज
1: सर। गाना हमें सुना दीजिए, दुल्हन हम ले जाएंगे, तेरे पल्लू रखा जाए।
0: हाँ, और ये गाना आपके रेडियो सेट पर पहुंच चुका है, तो निशान जी, जी फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर फोन करिएगा।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद, शुक्रिया।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

0: जी हाँ दोस्तों, सजीव फोनी कार्यक्रम हेलो अयोध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हमारे एक श्रोता लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, आपका शुभ नाम?
1: जी मेरा शुभ नाम है राजन सिंह।
0: जी राजन जी, कहाँ से फोन किया आपने?
1: मैं आजमगढ़ से फोन किया है।
0: अच्छा, तो आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं?
1: कभी कभार सुनते हैं, टाइम नहीं मिलता है।
0: अच्छा, रेडियो
1: जब टाइम मिलता है तो टाइम मिलता है कभी तो फोन लगाते हैं, फोन नहीं मिलता है।
0: चलिए, ये आपने कोशिश की है और आपकी कॉल लग गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, रेडियो का शौक
1: आज लग गई है सर फोन।
0: राजन जी, रेडियो का शौक आपको कब से है?
1: शौक तो मैं बचपन से ही है, तो उस टाइम हम सुनते थे तो आपने को तो मिलता नहीं था, लेकिन हमारे जो पिताजी थे बड़े शौकीन थे, तो ज्यादा न्यूज वगैरह समाचार आता था रेडियो पे।
0: जी जी जी,
1: तो वो सुनते थे तो आप लोग भी कान लगा के सुनते थे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे 30-40 साल पहले रेडियो ही एक माध्यम था जिससे आप समाचार सुन सकते थे, मनोरंजन कर सकते थे, और वही एक माध्यम था जिससे आप वास्तव में कुछ जान समझ सकते थे। बाकी तो कुछ था नहीं, है ना?
1: कुछ नहीं था सर, पहले तो रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था कि सब कुछ रेडियो से ही सुनते थे, चाहे मैं

0: मोबाइल दुनिया भर का चल गया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो एक बार फिर से वापस आ चुका है आप लोगों के बीच, और भरपूर मनोरंजन साथ ही जानकारियां भी लेकर। तो ऐसे में कैसा अनुभव कर रहे हैं आप लोग?
0: सर बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
1: जी, रेडियो ने अपने सफर को 90 साल पूरे कर लिए हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी
1: जी,
0: मुझे पता है कि 90 साल रेडियो ने अपना जो है पूरा कर लिया है।
1: जी जी जी, और ऐसे ही कोशिश रहेगी हम सब की। तो फिलहाल आज गाना आपको कौन सा सुनवा दें? गाना पुराना पसंद करते हैं या नया?
0: अब कोई सर पुराना गाना देशभक्ति का गाना सुना दीजिए।
1: पुराना गाना किशोर कुमार की आवाज में है हमारे पास, और देशभक्ति गाना हमें अब निकालने में वक्त लगेगा, है ना? तो फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं पुराना ही गाना किशोर कुमार की आवाज में। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी हाँ दोस्तों, सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहा है हमारे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और हमारे एक श्रोता लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो।
1: हाय सर।
0: जी
1: सर, मेरा रेडियो चल रहा है।
0: हाँ, आपका शुभ नाम जी, अपना नाम बता दीजिए। हेलो,
1: इनका नाम पूरा पश्चिम है सर।
0: हाँ ठीक है, आपका शुभ नाम?
1: मंजरी मिश्रा।
0: मंजरी जी, मंजरी जी, हमारी आपसे पहले कभी बात नहीं हुई है शायद।
1: जी हाँ, आप दो मरतबा मेरा फोन लग चुका है सर।
0: हाँ, ये तो अच्छी बात है कि दो बार लग चुका है और आज तीसरी बार आपकी कॉल लगी है, तो रेडियो आप सुनती हाँ। रहती हैं?
1: आपकी कॉल लगती नहीं सर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
0: स्वाभाविक है, अगर जल्दी से हर किसी की कॉल लग जाएगी तो इसकी अहमियत खत्म हो जाएगी।
1: हाँ, हमेशा व्यस्त रहता है।
0: जी जी, तो मंजरी जी, हम आज आपको गाना कौन सा सुनवा दें?
1: पूरा पश्चिम का गाना सुनवाइए सर, पूरा सुहानी आई रे।
0: जी बिल्कुल, लगता है आपको पुराने गाने ज्यादा पसंद हैं।
1: जी हाँ।
0: आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ शौक भी है गाने के या गीत संगीत के प्रति?
1: सर, मैं गाना सुनती रहती हूँ, मुझे पसंद आता है। गाना आपके रेडियो के प्रोग्राम में मुझे पसंद आते हैं।
0: गाने सुनना आपको
1: पसंद है? उमंग सुनती हूँ मैं।
0: जी जी जी, तो ठीक है, आपकी पसंद का गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और फिल्म पूरब पश्चिम से।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: दोस्तों, अगर आप भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम आपको बता देते हैं 73-76-80-40-90। ये है आकाशवाणी अयोध्या के सजीव फोन इन कार्यक्रम का नंबर, और ये नंबर मिलाकर कोई आ चुका है हमारे पास, तो बातें कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: जी सर नमस्कार, मैं ग्राम डोरेल खीरा तहसील बल्लोगढ़ जिला टीकमगढ़ से अनिल यादव बात कर रहा हूँ।
0: अनिल यादव जी,
1: जी
0: जनपद क्या है आपका?
1: तहसील बल्लोगढ़ जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश सर।
0: टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। तो जी, आप जी, हमारे कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी सब कार्यक्रम सुनते हैं। हेलो फैम आज वाले जी, सुबह का, दोपहर का और शाम का।
0: ये रेडियो का शौक आपको कब से है?
1: जी
0: रेडियो सुनने का शौक आपको कब से है?
1: रेडियो तो बचपन से है सर।
0: बचपन से है,
1: 2005 से सुन रहा है रेडियो सर।
0: और
1: अयोध्या तो सर अभी सुना है मैंने, 2-3 महीना से।
0: अच्छा अच्छा, तो 2-3 महीने से आप प्रोग्राम अयोध्या के सुन रहे हैं, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं?
1: जी।
0: और इस समय मौसम कैसे हैं आपकी तरफ?
1: मौसम सर कल गया था पानी।
0: तो
1: आज ठंडा के कारण आज तो मौसम सही है।
0: मौसम सही है, गर्मी कम हो गई है।
1: जी
0: बहुत अच्छी बात है। वाकई गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई थी और लोगों को बड़ी तकलीफें हो रही थी, ऐसे में बारिश का होना, अच्छी हवाओं का चलना तो लोगों को अच्छा एहसास दे रहा है। और गाना कौन सा सुनवा दें अनिल जी?
1: बॉबी फिल्म का।
0: बॉबी फिल्म का कौन सा गाना?
1: रोड बोले का हुआ काटे।
0: जी लता मंगेशकर और शैलेंद्र जी की आवाज में।
1: जी
0: जी, आपकी पसंद का गाना हमने पहुंचा दिया आप तक। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम का समय मात्र अब 15 मिनट शेष है। जल्दी से नंबर मिलाइए 7376804090 और हमसे करें बातें।

0: दोस्तों हमारे पास दो कॉल आई और दोनों कॉल कट गई। वो कॉलें किसकी थी? एक शारदा जी की सादतगंज से, एक अर्जुन सोनकर जी की। फिलहाल एक श्रोता और लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो।
1: हाँ भैया
0: जी, नमस्कार।
1: हाँ नमस्ते भैया।
0: आपके पीछे रेडियो बज रहा है
1: जी? हाँ बज रहा है।
0: बज रहा है ना
1: जी।
0: और आप लोगों को हम लोग हमेशा बताते रहते हैं कि अपने पीछे रेडियो ना बजाया करिए, इससे बहुत दिक्कतें आती हैं, रेडियो पर आवाज साफ नहीं आती।
1: हाँ बोलिए।
0: हम तो बोल ही रहे हैं। आप
1: पिक्चर लगाई सन्नासी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, आप हमारी बात सुनना पसंद नहीं किए?

0: जी हाँ दोस्तों, समय तो हमारे पास मात्र 9 मिनट बचे हैं, लेकिन कॉलें बराबर आ रही हैं और कट भी रही हैं। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
2: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
3: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
2: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
3: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
2: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
3: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
2: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल,
5: आज भी बॉस है।
0: जी हाँ दोस्तों, हमारे वो श्रोता जो लाइन पर मौजूद है, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो।
6: हेलो सर, नमस्ते।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए।
6: अर्जुन कुमार सोनकर, मोहल्ला छोटा रंडा, देवकाली रोड, अयोध्या।
0: जी आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है अर्जुन जी। अब तो हम लोगों से
6: दया है सर, बस
0: हम लोगों से ज्यादा आपको लोग जानने लगे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता हमारा ही नाम नहीं जानते।
6: हाँ बिल्कुल सर,
0: आप भी नहीं जानते होंगे। बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
6: लोफर
0: का गाना कौन सा?
6: हाँ, आज मौसम बड़ा

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम तो।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

क्या मैं? अरे बोल कन्हैया,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का बुलेटिन पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी

0: तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।